मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 101.9 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 ज्येष्ठ मास की 17वीं तिथि तदनुसार 7 जून 2026 है। सवेरे के 5:56 हो चुके हैं। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी उदयपुर है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माय भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को यह मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
1: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: Realize the full potential of our ties.
0: गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्षों के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल

0: में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्षों के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री की अफवाहों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा कि ये विद्यार्थियों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। न्यू चंडीगढ़ में कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। और एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुके सागर जगलान और किशोर काजल धोचक ने अपने अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर मंगोलिया में आयोजित उलान बतोर ओपन कुश्ती टूर्नामेंट में भारत को 6 और पदक दिलाए। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान में 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी उदयपुर है। सवेरे के 6:05 हुए हैं। ये समय है प्रभु वंदन आराधन का। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

जब प्रार्थना आंखों से निकलने लगे तो समझ लेना दिल से भगवान को पुकारा गया है, क्योंकि शब्दों से की गई प्रार्थना भगवान सुनते हैं और आंसुओं से की गई प्रार्थना भगवान महसूस करते हैं।

प्रभु के ज्ञान तक न रुक के प्रभु को अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ आपका दिन मंगलमय हो। दीजिए इजाजत कार्यक्रम वंदना से, आंचल को अनुमति। नमस्कार।

भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना अभी आपने सुना। ये आकाशवाणी उदयपुर है। श्रोताओं, अब नजर डालते हैं हमारी आज की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर।

सवेरे 6:40 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान सतीश भाटिया का संगीत निर्देशन में। 6:50 का समय रहेगा कार्यक्रम खेती में आज। सदाबहार नगमे आप सुन सकेंगे सवेरे 7 बजे और 7:45 का समय रहेगा सुगम संगीत का। सवेरे 8:00 आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज़।

ज्ञान और मनोरंजन से भरा कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर आप सुनेंगे 8:30 पर हमारे दोनों ही चैनल यानी आकाशवाणी उदयपुर और FM रेडियो लेक सिटी पर एक साथ। हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे सवेरे 9 बजे आकाशवाणी जयपुर से। 9:30 का समय रहेगा सुगम संगीत का और 10 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत पुरानी फिल्मों से।

राजस्थानी गीतों से सजा कार्यक्रम गोखड़ा का समय रहेगा सवेरे 11 बजे और 11 बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। दोपहर 12 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम बगिया के फूल। फिल्म संगीत का समय रहेगा 12 बजकर 30 मिनट पर। दोपहर 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से। महिलाएं सुनेंगी उनका अपना कार्यक्रम महिला जगत दोपहर 1 बजकर 5 मिनट पर और दोपहर 1 बजकर 45 मिनट का समय रहेगा फिल्म संगीत और साथ ही देंगे विकास चर्चा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम योजना पर। दिल्ली केंद्र से सुनेंगे आप दोपहर समाचार दिन में 2:15 पर। किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम कृषि जगत दोपहर 2:30 पर। हिंदी में समाचार का समय रहेगा दोपहर 3 बजे और 3:05 पर। हमारी प्रातःकालीन सभा का

6:05 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत। शाम को 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 6:40 पर आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आप सुन सकेंगे 6:45 पर। ये तीनों कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर से। कार्यक्रम खेती घर आप सुनेंगे शाम को 7:00, रात्रि 8:00 का समय रहेगा फिल्म संगीत का। रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या, न्यूज़ एट 9 आप सुनेंगे रात्रि 9:00 और 9:15 का समय रहेगा सुगम संगीत का। फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे रविवासरी संगीत सभा। 11:00 का समय रहेगा हिंदी में समाचारों का और अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे 11:05 पर।

तो श्रोताओं, ये थी हमारी दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी उदयपुर है, मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर। आइए अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरितमानस गान, संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का।

श्री राम के विनय भरे मधुर वचन सुनकर भी ऋषि परशुराम का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्हें लगा कि शिव का धनुष तोड़ने का अपराधी होकर भी वो उन्हें ही ज्ञान सिखा रहे हैं। उनकी ये धारणा भी पक्की हो गई कि राम की सहमति से ही उनका छोटा भाई कटु वचन बोल रहा है। श्री राम ने मन ही मन में सोचा कि दोष तो लक्ष्मण का है और मुनि का क्रोध अब उनकी ओर बढ़ रहा है। सच ही तो है कि कभी कभी सीधापन भी भ्रामक होता है, तभी तो लोग टेढ़े लोगों की वंदना करते हैं। किंतु प्रकट रूप में राम ने परशुराम के कुठार के आगे अपना सिर झुका दिया। बोले, स्वामी, जिस प्रकार भी आपका क्रोध शांत हो आप वही कीजिए, भला स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। सच तो ये है कि मुनिवर का वीरों का सा वेश देखकर लक्ष्मण ने कुछ कह डाला। वैसे वास्तव में दोष लक्ष्मण का भी नहीं, उसने उनका नाम तो सुना था किंतु पहचानने में भूल हो गई। यदि वो मुनि के वेश में आते तो लक्ष्मण ने उनकी चरण धूली ले ली होती।

0: सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। ये आकाशवाणी उदयपुर है, सवेरे के 6:50 हुए हैं। आइए अब आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती में आज, प्रस्तुति है नरेश नागदा की।
1: खेती में आज हुणो वाला हंगले किसान भाई बहना ने नंदू भाई रो राम राम सा। देखो किसान भाई बहनों, जून महीनो चाल रो है और जून में कृषि रे क्षेत्र में खरीफ री फसलां री बुआई रे वाते तैयारियां शुरू हुई जावे सा। यो समय मानसून आवाऊ पहली और वंडे तुरंत बाद वे वैसा। किसान भाई बहनों, अरहर री बात करा तो अरहर री फसल रे वाते अशी मिट्टी आवश्यक है जणी में जल री निकास री सही व्यवस्था हो। खेत में पानी भरवारी स्थिति पर फसल ने भारी नुकसान वे सके सा। मिट्टी रो पीएच मान जो है 5.5-8 रे बच्चे बहनों चावे। अरहर में मृदा जनित रोगा रे बचाव रे वाते एक ही खेत में लगातार कई वर्षा तक अरहर री खेती अपने नहीं करनी चाहवा सा। और बुआई करवाऊ पहली अपने खेत री एक बार गहरी जुताई करीन 2-3 बार हैरो चलाइन मिट्टी ने भुरभुरी अपने करनी पड़ेगा सा। अंडे बाद खेत में बुआई रे वाते खेत तैयार भई जावे और बुआई रे समय खेत में सही नमीरो वेणो बहुत ही जरूरी वे वैसा। अबे आप ही बुआई रो समय री बात करा तो देखो अरहर खरीफ रे मौसम में उगाई जावे वाली दलहनी फसल है। अरहर री खेती अगेती और पछेती फसल रे रूप में करा हासा और सिंचित क्षेत्र में अरहर जो है अगेती री बुआई जो है मध्य जून पलेवा रे लारे अपने जरूर कर देनी है सा। मेड़ा पर बोवाऊ अच्छी उपज अपने मले। बुआई रे टेम पे पंक्तियां रो अंतर जो है 30-45 सेंटीमीटर और पौधों पौधा रो अंतर 5-10 सेंटीमीटर उचित रहेगा। और खरीफ री बुआई रे वाते 15-18 किलोग्राम प्रति हेक्टर रे दरु बीज अपने पर्याप्त रहेगा सा। बीजा ने अपने 4-5 सेंटीमीटर गहराई में अपने बोना चावा सा। अबे आपी बुआई री विधि री बात करा तो देखो प्रयोग रे आधार पर यो साबित हो चुक्यो है कि मेढ़ा पर अगर आपी अरहर री बुआई करा तो यो न केवल पैदावार में बढ़ोतरी करे बल्कि अणी तकनीक ने अपनावाऊ जल भराव रे नुकसानों भी आपी वंची सका सा। एक लारे कवक जनित रोगारो प्रकोप भी अणियों कम बेवेसा। अरहर री उन्नत प्रजातियां री बात करा तो पूसा 16, पूसा 991, पूसा 992, पूसा 2001, पूसा 2002, पूसा 33, पूसा 855, पूसा 9, उपास 120, प्रभात, बहार और टाइप 21 शीघ्र पकव वाली और अरहर 291, मानक, अमर, नरेंद्र अरहर 1, नरेंद्र अरहर 2, नरेंद्र अरहर 3 आदि जी फसलां है भी देर

वाली प्रमुख है सा। अब आपी बीजोपचार की बात करा तो मिट्टी और बीज जनित कई कवक और जीवाणु जनित रोग जो है मिट्टी अंकुरण रे टेम पे और अंडे बाद बीजा ने काफी नुकसान पहुंचावे सा। बीजा रे अच्छे अंकुरण और स्वास्थ्य रे पौधा रे वास्ते पर्याप्त संख्या में आपने कवक नाशी बीज उपचारी सलाह दी जावे सा। अंडे वास्ते आपने प्रति किलोग्राम बीज ने 2-2.5 किलोग्राम थीरम और 1 ग्राम कार्बेंडाजियम उपचार करीन पचे आपने राइजोबियम कल्चर बीजोपचार करनो चावे सा। हाउ पैदावार रे वास्ते प्रति इकाई क्षेत्र में पौधारी निर्धारित संख्या अनिवार्य है। कम पौधारी स्थिति में खरपतवार रो जमाव और विकास ज्यादा वेगा और उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ेगा सा। अब आपी पोषण तत्व प्रबंधन री बात करा तो देखो हाउ उत्पादन रे वास्ते संतुलित उर्वरक रो प्रयोग करना जरूरी है और उर्वरक रो प्रयोग जो है आपने मिट्टी रे परीक्षण री जो संस्तुति आई है वनडे आधार पर इस करनो चावे सा। अरहर री अच्छी उपज लेवारे वास्ते आपने 10-15 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40-50 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टर री आवश्यकता वेगा सा। अरहर री ज्यादा ज्यादा उपज रे वास्ते फास्फोरस युक्त उर्वरक जैसे कि सिंगल सुपर फास्फेट 250 किलोग्राम प्रति हेक्टर या 100 किलोग्राम प्रति हेक्टर डीएपी या 20 किलोग्राम सल्फर पंक्तियों में बुआई रे टेम पे आपने पोरा या नायरी सहायता देना चाहवा सा। जनियों कहिए कि उर्वरक बीज रे संपर्क में नहीं आवे सा। भरपूर उत्पादन रे वास्ते संतुलित उर्वरक रो प्रयोग आपने करनो है। कुछ क्षेत्र में जस्ता या जिंक री कमीरी अवस्था में 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर दर आपने प्रयोग करनो चावे सा। अबे किसान भाई बहनों आपी सूरजमुखी री बात करा तो सूरजमुखी री उन्नत संकुल प्रजातियां री बात करा तो सूर्या मार्डन DRSF 108 को 5 फूले रविराज और संकर प्रजातियां री बात करा तो KVSH1 SH3222 प्रमुख है सा। किसान भाई बहनों बीज दर बुआई और दूरी खरपतवार नियंत्रण री बात करा तो देखो संकर प्रजातियां रो 7-8 किलोग्राम और संकुल प्रजातियां रो 12-15 किलोग्राम बीज जो है 1 हेक्टर बुआई रे वास्ते पर्याप्त व्यवस्था। संकर प्रजातियां री बुआई 60x12 सेंटीमीटर और संकुल प्रजातियां री बुआई 45x20 सेंटीमीटर पर आपने करनी चावे सा। सूरजमुखी री बुआई रे वास्ते 15-20 दिन बाद आपने खेत में अवांछित पौधा ने निकालीन पौधों पौधा री दूरी 20 सेंटीमीटर राखनी है। रासायनिक खरपतवार नियंत्रण रे वास्ते पेंडी मेथिलीन 30 EC 3.3 लीटर प्रति हेक्टर दर 800 लीटर पानी में गोल बनाई बुआई रे बाद एवं जमाऊ पहली छिड़काव करनो है सा। पोषक तत्व प्रबंधन री बात करा तो उर्वरक रो प्रयोग मृदा परीक्षण रे आधार पर करनो चावे। मृदा परीक्षण ने व्यवहारी दशा में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन 60 किलोग्राम फास्फोरस 40 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टर दर बुआई रे टेम पे आपने प्रयोग करनो है सा। खरपतवार री रोकथाम रे वास्ते प्री इमरजेंस फ्लूर क्लोरीन रो 2 लीटर प्रति हेक्टर दर बीज री बुआई रे 4-5 दिन बाद आपने छिड़काव करनो है और दोबारा 30-35 दिन रे बाद हाथों वंचिया थका खरपतवार ने उखाड़ देनो है सा। किसान भाई बहनों अब आपी कपास री बात करा तो देखो सिंचाई री अच्छी व्यवस्था वेवे तो मई जून में भी आपी अंडी बुआई कर सका सा। बुआई रे वास्ते सीड कम फर्टी ड्रिल या प्लांटर रो आपने प्रयोग करनो है। कपास रे वाते रेतीली लवणी और सेम वाली मिट्टी ने छोड़ीन सभी प्रकार री मिट्टी में बुआई आपी कर सका सा। बुआ पहली बीज ने प्रति किलोग्राम 2-5 ग्राम कार्बेंडाजियम या कैप्टन दवाओं उपचारित करनो है सा। इमिडा क्लोरोपीट 7 ग्राम कार्बोसल्फान 20 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज उपचारित करीन बुआ पहली फसल ने 40-60 दिन तक रस चूसक कीटों सुरक्षा मिलेगा सा। दीमक को बचाव रे वास्ते 10 लीटर पानी में 10 मिलीलीटर क्लोरोपाइरिफास मिलाइन बीज पर छिड़क देनो है और 30-40 मिनट छाया में सुखाइन बुआई करनी है सा। कपास री संकर प्रजाति री बात करा तो देखो लक्ष्मी HS 45 HS 6 LH 144 HL 1556 ई जो है प्रजातियां बढ़िया है सा। देशी प्रजाति री बात करा तो देखो H 777 HD 1 HD 107 और LD 327 उगाई सका सा। अमेरिकन देशी और संकर कपास रो क्रमशः 15-20 10-20 और 4-5 किलोग्राम हेक्टर
प्रति बीज आपने पर्याप्त रहेगा सा। देसी कपास या अमेरिकन रेवाते 60x30 cm और संकर किस्म रेवाते 90x40 cm पंक्तियों पंक्तियां और पौधों पौधारी बीच में दूरी राखनी है सा। पोषक तत्व प्रबंधन री बात करा तो उर्वरक रो प्रयोग जो है मिट्टी रे परीक्षण री संस्तुति रे आधार पर ही सा करना चाहवा सा। कपास

0: श्री देसी किस्मा रवाते 50-70, नाइट्रोजन 20-30 किलोग्राम और फास्फोरस अमेरिकन एवं देसी किस्मा रवाते 60-80 किलोग्राम, नाइट्रोजन 30 किलोग्राम, फास्फोरस 20-30 किलोग्राम, पोटाश और संकर किस्मा रवाते 150-60 किलोग्राम नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटाश प्रति हेक्टर की आवश्यकता अपने पड़ेगा सा। अंडे अलावा 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर जिंक रो भी अपने प्रयोग लाभदायक रहेगा सा। अब आप रोग और कीट प्रबंधन की बात करा तो कपास में बैक्टीरियल झुलसा रोग और फफूंद जनित रोग लागे अंडे बचाव रे वास्ते जून में 1.25 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, 50% घुलनशील चूर्ण और 50 ग्राम एग्रीमाइसिन प्रति हेक्टर दर 500-600 लीटर पानी में गोलिन दो छिड़काव करीन 20-25 दिन अंतराल पर अपने करनो है सा। या तो किसान भाई बहना अभी बात की दी कि अनी टाइम पे अपने कशा कशा कृषि कार्य करना है सा, अब घड़ियाड़ी देखा तो माने चाल बारो टाइम भी रो है सा। तो नंदू भाई ने आज्ञा दो सा, राम राम सा।
1: कार्यक्रम खेती में आज अभी आपने सुना, प्रस्तुति थी नरेश नागदा की, ये आकाशवाणी उदयपुर है।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: मीडियम वेव 266.6 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी उदयपुर है। सवेरे के 7 बजे है, प्रस्तुत है सदाबहार नगमे। सदाबहार नगमों की पहली पेशकश फिल्म आनंद से, आवाज है मुकेश की।
2: मैंने

कलाकार फिल्म से अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार को और अगला गाना हमने लिया है फिल्म जूली से, आवाज किशोर कुमार की।

अनुरोध फिल्म से अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार को। अगला गीत हमने चुना है फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

0: 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
1: आरबीआई कहता है,
2: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

हेमलता और जसपाल सिंह के युगल स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म नदिया के पार से। ये खूबसूरत सा गीत और फिल्म संगीत का आखिरी नगमा फिल्म सरस्वती चंद्र से आवाज़ है लता मंगेशकर की।

लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही सदाबहार नगमे अब यहीं समाप्त होते हैं। ये आकाशवाणी उदयपुर है, आइए सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत की पहली पेशकश जगजीत सिंह की आवाज़ में।

आशा भोसले की गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी उदयपुर है, मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 8 बजने को है, कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, तत्पश्चात मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से।

0: कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
4: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
3: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। एनटीए ने उम्मीदवारों

अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए यूपीआई समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल

0: दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए यूपीआई समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी लंबी और विशिष्ट रूप से खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग करते हैं और दोनों देश हमेशा आवश्यकता के समय एक दूसरे के साथ खड़े हैं।
1: Collaborate closely to maintain security.
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: Full potential of our time.
0: नेपाल के विदेश मंत्री श्री शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत केवल दो देश नहीं बल्कि एक गौरवशाली प्राचीन सभ्यता के साझेदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में 2044 तक भारतीय यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है।
3: अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष शेल्डन ही ने कल ब्राजील में बताया कि भारत पिछले कई वर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते घरेलू नागर विमानन बाजारों में से एक है। श्री शेल्डन ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5 से 10 वर्षों में मजबूत वृद्धि हुई है और भविष्य में भी इसके मजबूत बने रहने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ 370 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है या वैश्विक हवाई यातायात का लगभग 85% हिस्सा है। 82वीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन 6 से 8 जून तक ब्राजील में आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है, साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। श्री अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस शासन की सरकार ने विकास के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रूपये की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रूपये से बढ़कर 942 रूपये हो जाएगी। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास के इलाकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने लेनिनग्राद क्षेत्र के आसपास 140 से अधिक ड्रोन मार गिराए गए।
4: गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोजडेंको ने निवासियों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। श्री ड्रोजडेंको ने कहा है कि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है, हालांकि कई जिलों में ड्रोन का मलबा गिरने की सूचना मिली है। इससे आवासीय भवनों को मामूली नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोनों ने सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक की दूरी तय की और दुश्मन नौसेना के शस्त्रागार और क्रोनस्टेड में एक अड्डे को निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की के आज ब्रिटेन का दौरा करने और यूक्रेन के निकट यूरोपीय सहयोगियों प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत की आशा है। समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीणा।
0: इसराइल के हमले में 2 महिलाओं सहित कम से 7 फलस्तीनी मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कल काहिरा में मध्यस्थों ने हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू की। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गजा के आधे से अधिक हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियानो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में कल भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड छठी बार खिताब अपने नाम किया।

0: सात साल बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की है। एक रिपोर्ट।
1: गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड छठी बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को फिर अपने कब्जे में लिया। खिताबी मुकाबले की शुरुआत में ही दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। पहले हाफ में भारत की ओर से प्यारी झाकसा गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। पहले हाफ की समाप्ति तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी। दूसरे हाफ में भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आई। संफिदा ने शानदार गोल कर भारत को फिर बढ़त दिलाई, जबकि लिंडा कॉम ने तीसरी गोल दागकर जीत पर मुहर लगा दी। इसके बाद बांग्लादेश की टीम वापसी नहीं कर सकी और भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में भी अपना दबदबा कायम रखा और ब्लू टाइग्रेस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
0: और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं वीरेंद्र कौशिक।
2: भारत एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के साथ नया चंडीगढ़ में आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। कप्तान गिल 103 रन और ऋषभ पंत अर्धशतक बनाकर क्रीज पर हैं। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। ये एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कल इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। हॉकी में जापान के काका मिगाहारा में भारत की अंडर-18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया।
0: केरलम के 7 जिलों त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के शेष 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
3: केरलम में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी केरलम में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। खराब मौसम और ऊंची समुद्री लहरों को देखते हुए केरलम के तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एम पुलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: विभाग ने कर्नाटक के तटीय इलाकों माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, कोंकण तथा गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, हिमालय के तटीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ हिस्सों में भी आज वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर आज गरज के साथ बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के भाग और ओडिशा के कुछ हिस्सों में आज लू चलने की संभावना है। ओडिशा में आज रात गर्म मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक रफ्तार को तेज करने की खबरें सभी अखबारों में हैं। लोक सत्य की सुर्खी है, आर्थिक मोर्चे पर निपटने के लिए बनाई गई रणनीति। पत्र ने इसी विषय पर डील, मौसम और चुनौतियां शीर्षक देकर संपादकीय में लिखा है कि सवाल केवल तेल का नहीं, बाकी बहुत सी चीजें हैं जिन पर भारत निर्यात में अग्रणी है। पत्र आगे लिखता है, मॉनसून अच्छा रहे, युद्ध के बादल छट जाएं, इससे बड़ा सुकून भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और क्या हो सकता है। अमर उजाला की खबर है, नेपाल की नई सरकार के साथ नई गर्माहट। नेपाल के विदेश मंत्री बोले, भारत के साथ संबंध सर्वोच्च प्राथमिकता। पत्र ने इस खबर को शीर्षक दिया है, अतीत का कोई भी बोझ भारत से रिश्तों में बाधा नहीं। दिल्ली से सिलीगुड़ी तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 6 घंटे में ही तय हो जाएगा सफर। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय का असर रेल परियोजनाओं पर दिखने लगा है। राजस्थान पत्रिका की खबर है, भारत में छोटे परिवार की चाहत से बूढ़ा हो रहा युवा भारत। पत्र ने ढलान पर जन्मदर की खतरे की घंटी बताते हुए लिखा है कि अगले 20-30 साल बाद युवा कामगारों की संख्या घटेगी। अखबारों ने खेल जगत की 3 महत्वपूर्ण खबरों को एक साथ दिया है। नवभारत टाइम्स ने प्रज्ञान नंदा के नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने, वैभव सूर्यवंशी के सबसे कम उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने और रूस की 19 वर्षीय मीरा आंद्रीवा के फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीतने की खबरें एक साथ दी हैं। दैनिक ट्रिब्यून कहता है, खेलों का शानदार शनिवार, हॉकी से शतरंज तक युवाओं की बिसात।

0: सपनों की उड़ान आसमान तक ले जाएगी, मेहनत की रोशनी हर अंधेरा मिटाएगी, हर सुबह विश्वास जगाकर आगे बढ़ो, क्योंकि मेहनत ही मंजिल दिलाएगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा है आप सभी स्वस्थ, मस्त और खुश होंगे। तो आपकी खुशी को बरकरार रखने के लिए लेकर हाजिर हैं हर रोज़ हर सुबह ठीक 8:30 पर मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार उदयपुर, लेकर जहां होता है ज्ञान और मनोरंजन का संगम। तो चलिए बताते हैं आज के इस प्यारे से सफ़र पर आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त परवीन और मेरे साथ हैं
1: आंचल।
0: तो कबूल कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।
1: बिल्कुल परवीन, आज है नमस्कार उदयपुर का संडे स्पॉटलाइट। तो संडे स्पॉटलाइट में हम करने वाले सप्ताह की प्रमुख खबरों की बातें, साथ ही विश्व खाद्य सुरक्षा पर हम चर्चा करेंगे। हिस्टोरिकल फैक्ट में आज हम करेंगे मेवाड़ के प्रमुख आश्रय स्थल और पहाड़ी दुर्ग की बात, और जानकारी और मनोरंजन पर हम बात करेंगे पॉडकास्ट के बढ़ते चलन की।
0: और आंचल, आज है संडे और आज स्पेशल रहता है हमारा कि व्हाट्सएप से हमारे श्रोता हमसे जुड़ेंगे, अपने विचार हमसे साझा करेंगे, हमारा प्रोग्राम उन्हें क्यों और कैसे और कितना अच्छा लगता है या क्या जानकारी उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। तो श्रोताओं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, और हमारे नंबर आज जो रहने वाले हैं वो है 9462697568।
1: एक बार फिर बता दें, 9462697568।

0: श्रोता सुन रहे कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर आकाशवाणी उदयपुर और एफएम रेडियो लेक सिटी पर एक साथ। परवीन, आज है संडे स्पॉटलाइट।
1: बिल्कुल।
0: तो आज हम बात करते हैं सप्ताह की प्रमुख खबरों की। तो सबसे पहले, राज्य सरकार ने बालिकाओं के समग्र विकास और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने वाली लाडो प्रोत्साहन योजना की संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है। योजना में 4 बड़े तकनीकी और व्यवहारिक सुधार हुए हैं। योजना में तीसरी और उसके आगे की किश्तों का लाभ लेने के लिए संख्या की सीमा का कोई बंधन नहीं होगा। तीसरी से छठी किश्त के लिए माता पिता को कोई नया फॉर्म नहीं भरना होगा। जन्म के समय PCTSI यानी यूनिक ID के माध्यम से पोर्टल पर छात्रा का डेटा खुद ट्रैक किया जाएगा। यदि किसी बालिका ने पहली 2 किश्तों का लाभ लिया है और बीच में किसी चरण की किश्त छूट गई है तो भी पात्रता पूरी करने पर उसे अगली किश्त का लाभ मिलेगा। योजना के सभी लाभ केवल राजस्थान जन आधार कार्ड के जरिए दे होगा। जन आधार के साथ पासबुक की कॉपी स्कूल में जमा करानी होगी।
1: बिल्कुल लांचल, बात करते हैं सप्ताह भर की खबरों की। तो आज हम एक और खबर बताएंगे हमारे लिसनर्स को। सांस्कृतिक स्रोत और प्रशिक्षण केंद्र CCRT क्षेत्रीय केंद्र की ओर से समेकित शिक्षा के प्रसार के उद्देश्य से आयोजित 12 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर इंद्रधनुष 2026 का शनिवार को दीक्षांत समारोह के साथ समापन हुआ। और इस कैंप में बताते हैं कि 5 से 12 तक के कुल 143 छात्र छात्राओं ने विभिन्न पारंपरिक कलाओं और शिल्पों का हुनर सीखा। समापन के मौके पर बच्चों द्वारा तैयार कलाकृतियों की एक भव्य प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसे देखकर अभिभावक और अतिथि मंत्रमुग्ध हो गए। शिविर के दौरान बच्चों को कला जगत के नामचीन विशेषज्ञों और शिल्पकारों ने प्रशिक्षित किया।
0: एक अच्छी खबर, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से अब शिल्पग्राम की तर्ज पर बागोर की हवेली में भी रोजाना लोक संगीत और लोक नृत्य की प्रस्तुतियां देखने को मिलेगी। केंद्र की इस अनूठी पहल से हवेली की थड़ों और चबूतरों पर कलाकार लाइव परफॉर्म कर

0: नजर आएंगे। बागौर की हवेली में आने वाले पर्यटकों के लिए दिन के समय में अब तक केवल म्यूजियम देखने का ही विकल्प था। दिन में सांस्कृतिक गतिविधियों की कमी को दूर करने और पर्यटकों के आकर्षण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र ने यह योजना लागू की है। इससे पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के दोनों प्रमुख पर्यटन स्थलों पर ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रीय कलाकारों को रोजगार और पहचान मिल सकेगी।
1: ये तो बड़ी अच्छी बात है। आंचल, और बात करते हैं प्रशासनिक और विकास कार्य की। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल की अध्यक्षता और जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी की मौजूदगी में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की 12वीं बैठक हुई और इसमें जिला अस्पताल में नई MRI मशीन स्थापित करने और लंबित विकास कार्यों को जल्द पूरा करने की मंजूरी भी दी गई। औद्योगिक भूखंड अगर आवंटन की बात की जाए तो रीको द्वारा औद्योगिक भूखंडों के सीधे आवंटन का 11वां चरण शुरू हो चुका है, जिसके तहत दो औद्योगिक क्षेत्रों में भूखंडों की दरों को 40% तक कम कर दिया है।
0: बिल्कुल। एक और खबर, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रति स्कूली बच्चों को जागरूक करने के लिए देश की प्रतिष्ठित संस्था द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट की ओर से इस वर्ष ग्रीन ओलंपियाड 2026 का आयोजन किया जा रहा है। यह ओलंपियाड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार के मिशन लाइफ और सतत विकास लक्ष्य के सिद्धांतों के तहत आयोजित किया जा रहा है। यह परीक्षा पूरी तरह से स्कूल परिसर के भीतर आयोजित होगी। यह प्रतियोगिता 4 लेवल में होगी। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेवल 1 में कक्षा 4 और 5 के विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। लेवल 2 में क्लास 6 to 8, लेवल 3 में कक्षा 9 से 10 और लेवल 4 में 11वीं और 12वीं के छात्र सम्मिलित होंगे। इस ओलंपियाड के लिए 31 जुलाई तक स्कूल अपना पंजीकरण करा सकते हैं। परीक्षा इसी साल 8 अक्टूबर से 18 नवंबर को होगी। रजिस्ट्रेशन फीस ₹250 तय है।
1: आंचल, 5 जून को MB अस्पताल के बाल चिकित्सालय परिसर में थैलेसीमिया और सिकल सेल रोगियों के लिए विशेष जांच शिविर का आयोजन किया गया। इसमें आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त बोन मेरो ट्रांसप्लांट के लिए मरीजों की HLA मैचिंग जांच पूरी तरह निःशुल्क की गई और ये बड़ी ही अच्छी खबर है। बात करें विश्व पर्यावरण दिवस की तो 5 जून को पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ जिला कलेक्टर ने रन फॉर एनवायरमेंट दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था।

0: परवीन, आज है 7 जून और आज के दिन विशेष की अगर हम बात करें तो प्रतिवर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है।
1: बिल्कुल,
0: यह दिन लोगों को खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस दिन का आयोजन WHO और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है।
1: बिल्कुल आंचल, सुरक्षित पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। आइए खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और अन्न की बर्बादी रोकने का संकल्प लें ताकि स्वस्थ और कुपोषण से मुक्त समाज का निर्माण हो सके। बात करते हैं हम इसके मुख्य उद्देश्य की तो खाद्य जनित बीमारियों, दूषित भोजन से होने वाली बीमारियों जैसे बहुत सी ऐसी केसेस में होता है जहां हम समझ नहीं पाते हैं, तो सबसे पहले आंचल हमें इसे समझने की ज़रूरत है।
0: बिल्कुल, खाद्य सुरक्षा का मतलब जो भोजन हम खा रहे हैं वह सुरक्षित, स्वच्छ और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो। भोजन में किसी प्रकार के हानिकारक तत्व, बैक्टीरिया और रसायन नहीं होने चाहिए। तो इस दिवस का मुख्य उद्देश्य हमें खाद्य जनित बीमारियों से बचाना और सुरक्षित भोजन के प्रति जागरूक करना है।
1: बिल्कुल आंचल, हर साल दुनिया भर में लाखों लोग दूषित भोजन के कारण बीमार होते हैं और बीमारियों के इस बोझ को कम करने और व्यवहारिक समाधान अपनाने पर जोर देते हैं। हर जगह सुरक्षित भोजन का मतलब है कि खेत से लेकर उपभोक्ताओं की थाली तक खाद्य श्रृंखला से जुड़े हर व्यक्ति की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए।
0: बिल्कुल परवीन, खाद्य सुरक्षा के उपायों की अगर हम बात करें तो हमें हमेशा ताजा और स्वच्छ भोजन का सेवन करना चाहिए। खाना बनाने से पहले और खाने से पहले हाथों की अच्छी तरह धोना चाहिए। साफ बर्तन का उपयोग कर भोजन को सही तापमान पर रखना जरूरी है। साथ ही फलों और सब्जियों को अच्छी तरह धोकर ही उपयोग करना चाहिए।
1: पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित भोजन की उपलब्धता जीवन को बनाए रखने और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। आंचल, भोजन से होने वाली बीमारियां आम तौर पर संक्रामक या वैशिली होती है और अक्सर आंखों से दिखाई नहीं देती। ये दूषित भोजन या पानी के माध्यम से शरीर में प्रवेश करने वाले बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी या रासायनिक पदार्थों के कारण होती है। तो खाद्य सुरक्षा यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि खाद्य श्रृंखला के हर चरण में भोजन सुरक्षित रहे। उत्पादन से लेकर कटाई, प्रसंस्करण, भंडारण, वितरण, तैयारी और उपभोग तक।
0: बिल्कुल, पैकेट वाले खाद्य पदार्थ खरीदते वक्त हमें उसकी एक्सपायरी डेट अवश्य देखनी चाहिए। और परवीन, खाने को वेस्ट होने से बचाना भी तो खाद्य सुरक्षा का एक उपाय हो सकता है। अगर हमारे यहाँ खाना ज़्यादा है तो किसी ज़रूरतमंद तक उसे पहुँचाकर उसका सही उपयोग भी खाद्य सुरक्षा ही है। साथ ही अगर हम कोल्ड स्टोरेज की बात करें तो कोल्ड स्टोरेज भी खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ये भोजन की शेल्फ लाइफ बढ़ाता है, इससे खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता और स्वाद भी सुरक्षित रहता है। यह बैक्टीरिया की वृद्धि को धीमा करता है, तो ऐसे में जो चीज़ सीजन की नहीं है उसे हम वहाँ रख

0: कर उसका स्वाद ले सकते हैं।
1: चल 7 जून को, यानी कि आज के दिन हम मना रहे हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि खाद्य जनित जोखिमों की रोकथाम, पहचान और प्रबंधन में सहायता के लिए जागरूकता बढ़ाने और कार्रवाई को प्रेरित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है, जिससे खाद्य सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि, कृषि बाजार पहुँच, पर्यटन और सतत विकास में योगदान मिलता है।
0: बिल्कुल, स्वस्थ जीवन का आधार सुरक्षित भोजन है। यदि हम खाद्य सुरक्षा के नियमों का पालन करें तो हम बीमारियों से बच सकते हैं और एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं।

0: परवीन, आज डिजिटल युग में संचार के साधनों में तेजी से बदलाव आया है। इंटरनेट और स्मार्टफोन के बढ़ते उपयोग के कारण नई नई तकनीकों का विकास हुआ है, जिनमें पॉडकास्ट का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरा है। यह लोगों के जीवन का एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है। तो संडे स्पॉटलाइट के जानकारी और मनोरंजन के सेगमेंट में आज हम चर्चा कर रहे हैं पॉडकास्ट के बढ़ते चलन की।
1: बिल्कुल आंचल, पॉडकास्ट एक डिजिटल ऑडियो या वीडियो प्रोग्राम है जिसे इंटरनेट के माध्यम से कभी

0: भी और कहीं भी सुना या देखा जा सकता है। यह रेडियो की तरह होता है, लेकिन इसे अपनी सुविधा के अनुसार एपिसोड दर एपिसोड डाउनलोड या स्ट्रीम किया जा सकता है।
1: बिल्कुल, और इसमें किसी भी विषय पर चर्चा, कहानी, साक्षात्कार, समाचार और शिक्षा से जुड़ी जानकारी प्रस्तुत की जाती है। इसके बढ़ते चलन के पीछे कई कारण हैं। सबसे पहले कारण की अगर हम बात करें तो हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन और इंटरनेट है, तो इसकी इजी अवेलेबिलिटी है। इसका दूसरा रीज़न है मल्टीटास्किंग। हम इसे किसी भी वक्त, जैसा आपने बताया, कहीं भी और कभी भी, तो काम करते समय, यात्रा के दौरान, व्यायाम या कहीं भी हम इसे सुन सकते हैं। इससे टाइम भी हमारा बचता है।
0: बिल्कुल आंचल, पॉडकास्ट का अगर बढ़ते चलन की हम बात कर ही रहे हैं तो स्थानीय भाषा यानी कि रीजनल जो लैंग्वेजेस होती है, लोकल भाषा हमारी होती है, कंटेंट होता है, क्योंकि अंग्रेजी के अलावा हिंदी, तमिल और बंगला जैसे स्थानीय भाषाओं में बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध होने से आम जनता तक इसकी पहुंच बड़ी है। और अगर हम बात करें छोटे वीडियो के विपरीत, पॉडकास्ट में किसी विषय पर खुलकर और गहराई से चर्चा होती है, जो कि बड़ी ही ज्ञानवर्धक होती है।
1: बिल्कुल, पॉडकास्ट ज्ञान बढ़ाने का एक सरल और प्रभावी माध्यम है। विद्यार्थी हुए, पेशेवर हुए या आम लोग इससे नई नई जानकारियां ले सकते हैं और सुनने वाले को ऐसा लगता है जैसे कोई सीधे उससे बात कर रहा हो। परवीन, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर इसके नेगेटिव पहलू की बात करें तो कई बार गलत जानकारी का खतरा भी हमें इससे मिल सकता है और ज़्यादा समय सुनने से हमारा ध्यान भी भटक सकता है।
0: बिल्कुल आंचल, इसलिए हम कहेंगे आवाज़ आपकी, अल्फाज हमारे, मिलकर बदलेंगे विचार सारे, दिल की बात शब्दों के साथ, सुनिए हर जज्बात। जब शब्द थम जाते हैं तब आवाज़ें दिलों को छू जाती है, लिखना हमारी आदत है और सुनाना हमारी चाहत।
1: बिल्कुल, पॉडकास्ट आज के समय का एक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय माध्यम बन चुका है। आने वाले समय में इसका महत्व और अधिक बढ़ेगा, विशेषकर शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में। यह न केवल ज्ञान का प्रसार करता है, साथ ही हमें नए विचारों से भी जोड़ता है।

0: तो आंचल हमारी श्रोता हमें सुन रहे हैं नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम के माध्यम से, और आज है संडे स्पॉटलाइट। तो आज हमारे श्रोता हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू और हमें अपने विचार साझा कर सकते हैं। तो हमारे श्रोताओं को बताते हैं हमारे नंबर 9462697568।
1: और इसी के साथ परवीन समय हो चला हिंदी में प्रादेशिक समाचारों का, लेकिन कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर जारी रहेगा। 9:10 पर हम आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। अब तक चलते हैं अपन जयपुर अजमेर केंद्र की ओर।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। एनटीए ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र के कथित रूप से लीक और बिक्री से संबंधित अफवाहों का खंडन किया है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने सुरक्षा के मद्देनजर सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आज। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सभी से सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की अपील की। और संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम के तहत आज प्रदेश में कई स्थानों पर साइकिल रैली के माध्यम से फिट रहने का संदेश दिया गया। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफार्म पर प्रसारित हो रही नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र के कथित रूप से लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री से संबंधित अफवाहों का खंडन किया है। एजेंसी ने कहा है कि ये विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एनटीए ने जोर देकर कहा कि परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पूरी तरह बनी हुई है। निष्पक्ष और सुरक्षित परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय किए गए हैं। उम्मीदवारों और अभिभावकों को अनजान स्रोत से प्राप्त किसी भी संदेश को नहीं मानने और किसी तरह का भुगतान नहीं करने की सलाह दी गई है। गौरतलब है कि ये परीक्षा 21 जून को आयोजित होनी है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने सुरक्षा के मद्देनजर सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। श्री शर्मा कल जोधपुर रेंज कार्यालय में अधिकारियों के साथ अपराध समीक्षा तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा को लेकर बैठक कर रहे थे। पुलिस महानिदेशक ने इन क्षेत्रों में कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देकर अपराधियों, अवैध गतिविधियों और अवैध घुसपैठ पर पूरी तरह से रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने संगठित अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। श्री शर्मा नए आपराधिक कानूनों का प्रयोग कर पुलिस के ध्येय वाक्य आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय की दिशा में काम करने की बात कही।
1: जो ड्रग माफिया हैं, उनके संपत्तियों को नष्ट करने की, जब्त करने की कार्रवाई भी प्रारंभ की गई है। आज की भी बैठक में ड्रग्स के खिलाफ और किस तरह से प्रभावी कार्रवाई हमें करनी है, इस पे विशेष रूप से चर्चा। राजस्थान में एक साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की भी स्थापना हो रही है, जिसके लिए भी हम लोग कोशिश में हैं कि वो जल्दी ही क्रियाशील हो। इसके अतिरिक्त मुख्यालय स्तर पे हमारी जो निगरानी है साइबर क्राइम में, उसको हमने बढ़ाया है।
0: बैठक में जोधपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सत्येंद्र सिंह सहित जोधपुर ग्रामीण, फलौदी, बालोतरा, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही और जालौर जिलों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। जैसलमेर के सरहदी गांव में वाइब्रेंट विलेज

0: योजना 2 के तहत विभिन्न विकास कार्य कराए जाएंगे। भारत पाक सीमा से सटे 30 गांवों में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जाएगा। जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य सीमावर्ती गांवों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना, पलायन रोकना और ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
1: वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फेज 2, ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा ये योजना का संचालन होता है। इसमें इस बार टोटल 184 विलेजेस लिए गए हैं। इसमें से जैसलमेर जिले के 30 विलेजेस को आइडेंटिफाई करा है। बेसिकली जो सरकार चाह रही है कि उसमें जो हमारे कुछ बेसिक पैरामीटर्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, सड़क हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गया, 4G कनेक्टिविटी हो गया, दूरभाष कनेक्शन हो गया, टीवी कनेक्टिविटी हो गया, तो इन पैरामीटर्स में सभी चयनित गांवों का सैचुरेशन हो।
0: मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा है कि बजट घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन

0: बेसिक पैरामीटर्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, सड़क हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गया, 4G कनेक्टिविटी हो गया, दूरभाष कनेक्शन हो गया, टीवी कनेक्टिविटी हो गया, तो इन पैरामीटर्स में सभी चयनित गांवों का सैचुरेशन हो।
1: मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा है कि बजट घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। वे कल जयपुर में राजस्व और उपनिवेशन विभाग की बैठक में भूमि आवंटन से संबंधित बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने सभी संबंधित विभागों से आपसी तालमेल के साथ लंबित मामलों का निराकरण करने और हर प्रकरण की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा। मुख्य सचिव ने भूमि उपलब्धता से जुड़ी बाधाओं को दूर कर बजट घोषणाओं को समयबद्ध रूप से धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। स्वस्थ और सुरक्षित समाज के निर्माण के लिए खाद्य पदार्थों की शुद्धता, गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये दिन हर साल 7 जून को मनाया जाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने सोशल मीडिया संदेश में श्री शर्मा ने सभी से सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की अपील की है, साथ ही स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने का संकल्प लेने को कहा है। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए प्रदेश भर में काउंटडाउन कार्यक्रम हो रहे हैं। इनके माध्यम से प्रदेश के विभिन्न शहरों, पार्कों, स्टेडियमों और योग संस्थाओं में सामूहिक योगाभ्यास किया जा रहा है। इसी कड़ी में स्वर्ण नगरी जैसलमेर में भी लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। व्यास बगीची में लोगों ने अनेक आसनों के जरिए नियमित रूप से योग करने का संदेश दिया। योग दिवस की इस बार की थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग रखी गई है। इस बीच अहमदाबाद में चल रही विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत के रोहन तायडे ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने ये उपलब्धि लड़कों की सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल प्रतियोगिता में हासिल की। चैंपियनशिप में भारत अब तक 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है। भारत पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है। फिट इंडिया मिशन के संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम के तहत आज प्रदेश में स्वस्थ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में साइकिल रैली निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में साइकिल सवारों ने भाग लिया। पाली में पुलिसकर्मियों ने रैली निकालकर लोगों को सेहत के प्रति जागरूक रहने और नियमित व्यायाम और फिटनेस का संदेश दिया। अजमेर में राजस्थान पुलिस और 11 राज यूनिट एनसीसी की ओर से साइकिल रैली निकाली गई। इस दौरान यूनिट के सीओ कर्नल अजय दाधीच ने दैनिक जीवन में साइकिल के प्रयोग को बढ़ावा देने का आह्वान किया।
2: साइकिल चलाने से हम सिर्फ पोल्यूशन का ही नहीं कर रहे, बहुत सारी चीजें हैं हम अपनी सेहत के ऊपर सबसे ज्यादा कर रहे हैं। इफ यू वांट टू फिट योरसेल्फ, एक बार संडे को नहीं तो कभी भी छुट्टी पे, और जैसे बच्चों की तो गर्मी की छुट्टियां होती हैं, उसमें साइकिल का ग्रुप बना के आराम से कहीं ना कहीं इवेंट रखना चाहिए कि आज यहाँ जा रहे हैं, कभी इस फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं, आप फिट रहेंगे।
1: राज्य में सक्रिय परिसंचरण तंत्र के असर से कल कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बरसात हुई। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी जयपुर सहित करीब 13 शहरों में बारिश हुई। इसके साथ ही बीकानेर के लूणकरणसर में ओले गिरने के भी समाचार हैं। आंधी बारिश की गतिविधियों से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ज्यादातर स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 44.3 डिग्री सेल्सियस तापमान श्रीगंगानगर में रिकॉर्ड किया गया। इस बीच रात का न्यूनतम तापमान भी 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। विभाग ने आज भरतपुर, जयपुर और बीकानेर संभाग में बरसात की संभावना व्यक्त की है। आंधी बारिश की गतिविधियों में कल से कमी आने और तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के आसार हैं। कल से पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। भारत की पुरुष अंडर 18 हॉकी टीम ने एशिया कप टूर्नामेंट जीत लिया।

0: है। जापान के काकामिगाहारा में हुए फाइनल मुकाबले में भारत ने जापान को 4-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं महिला हॉकी टीम ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने टीमों को बधाई देते हुए कहा कि ये खिलाड़ी भविष्य में भी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का गौरव बढ़ाते रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनटीए ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र के कथित रूप से लीक और बिक्री से संबंधित अफवाहों का खंडन किया है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने सुरक्षा के मद्देनजर सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आज। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी से सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की अपील की। और संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम के तहत आज प्रदेश में कई स्थानों पर साइकिल रैली के माध्यम से फिट रहने का संदेश दिया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी उदयपुर है। पुनः स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर में।
2: बिल्कुल आंचल, बहुत अच्छे से हमने हमारे श्रोताओं का स्वागत किया है। और हमारे श्रोताओं को हम बता दें, आप कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर सुन रहे हैं और आज है संडे स्पॉटलाइट। और संडे स्पॉटलाइट में आज हम साझा करते हैं आपके विचार। आप क्या सोचते हैं हमारे प्रोग्राम को लेकर, आपके जहन में क्या चल रहा है, तो बिल्कुल आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू बता सकते हैं। हमारे नंबर है 9462697568।
1: एक बार फिर से बता देते हैं 9462697568।

0: आंचल गाना बड़ा ही अच्छा प्ले किया तुमने, पधारो नी मारे देश। जी हाँ, क्योंकि अब हम जो बात करने वाले हैं हिस्टोरिकल फैक्ट में, तो मेवाड़ के प्रमुख आश्रय स्थल और पहाड़ी दुर्ग की ही बात करेंगे। क्योंकि राजस्थान की अगर बात करते हैं, मेवाड़ की अगर बात करते हैं, तो वहाँ के दुर्ग या फिर अगर हम वहाँ के किलों की बात ना करें तो ये जानकारी थोड़ी अधूरी सी रह जाती है।
1: बिल्कुल परवीन, कुछ आश्रय दुर्ग, कुछ आश्रय स्थल जो ऊँची पहाड़ियों, जंगलों और गुफाओं में बने होते थे और जो युद्ध के समय शरण यानी आश्रय और सुरक्षा के लिए उपयोगी माने जाते थे, खास तौर पर महाराणा प्रताप के संघर्ष काल की अगर हम बात करें, तो कुछ दुर्ग और कुछ गुफाओं के बारे में हम आज चर्चा करें।

0: बिल्कुल। हाँ, चल बात करते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग जो कि राजसमंद जिले में है, मेवाड़ के राजाओं की संकटकालीन शरण स्थली। आश्रय स्थल के रूप में अगर इसके महत्व की बात की जाए तो यह किला मेवाड़ राजवंश का सबसे सुरक्षित आश्रय स्थल माना जाता है। जब भी चित्तौड़गढ़ पर कोई संकट आता था ना आंचल, तो मेवाड़ के राजा यहीं पर आकर शरण लेते थे। और यहाँ की ऐतिहासिक घटना की अगर बात की जाए तो दासी पुत्र बनवीर से बचाकर पन्नाधाय ने राजकुमार उदय सिंह को इसी किले में छिपाया था, जहाँ उनका राज्याभिषेक भी हुआ और यहाँ महान योद्धा महाराणा प्रताप की जन्मस्थली भी है। बात की जाए यहाँ की विशेषता की तो इस दुर्ग के भीतर स्थित कटारगढ़ को मेवाड़ की आँख कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से पूरे मेवाड़ पर नजर रखी जाती थी। और इसकी 36 किलोमीटर लंबी दीवार चीन की दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है।
1: बिल्कुल, दूसरे दुर्ग यानी गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया। बात करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की, जिसे मालवा का प्रवेश द्वार, चित्रकूट दुर्ग, खिजराबाद, किलो का सिरमौर, राजस्थान का गौरव और सबसे बड़े लिविंग फोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस दुर्ग का निर्माण 8वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य ने मेसा के पठार पर गंभीरी और बेड़श नदी के किनारे पर कराया था। इस दुर्ग पर अधिकांश निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाए, इसलिए महाराणा कुंभा को चित्तौड़गढ़ का आधुनिक निर्माता कहते हैं।
0: बिल्कुल। आज चल बात करें चावंड यानी कि महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी की, तो हल्दीघाटी युद्ध के बाद जब अकबर ने मेवाड़ के कई दुर्गों पर नियंत्रण कर लिया था, तब महाराणा प्रताप ने अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित चावंड को अपनी नई संकटकालीन राजधानी और आश्रय स्थल बनाया था। यहाँ से महाराणा प्रताप ने मुगलों के खिलाफ अपना छापामार युद्ध जारी रखा और मेवाड़ के अधिकांश हिस्सों को वापस स्वतंत्र कराया।
1: एक और दुर्ग आवरगढ़ फोर्ट उदयपुर की पहाड़ियों में स्थित महाराणा प्रताप के प्रमुख आश्रय स्थलों में से एक है ये, जो चारों ओर घने जंगलों ऊंची पहाड़ियों पर बसा है। छापामार युद्ध के लिए यह भी उपयुक्त स्थान रहा है।
0: आजल बात करें हम सराड़ा का किला। जी हाँ, सलुम्बर में ये स्थित है। मेवाड़ का काला पानी इस नाम से इसको सभी जानते हैं। यह किला ऐतिहासिक रूप से एक मजबूत सैन्य चौकी और कारागार के रूप में प्रसिद्ध है। आश्रय और नज़रबंदी का इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल है। आधुनिक इतिहास में मेवाड़ प्रजा मंडल आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी भूरेलाल बयां को इसी किले में नज़रबंद करके रखा गया था, जिसके कारण इसे मेवाड़ का काला पानी भी कहा जाता है।
1: अब बात करते हैं मायरा की गुफा, जो अरावली पर्वतमाला में स्थित एक प्राकृतिक गुफा है, जिसे महाराणा प्रताप का शास्त्रागार यानी हथियार रखने का स्थान माना जाता है। युद्ध के समय यहाँ से रणनीति बनाई जाती थी और यहाँ गुफा मुगलों से बचने के लिए सुरक्षित आश्रय स्थल थी।
0: तो देखा ना आंचल, कितनी सारी ऐसी हमारे पहाड़ी दुर्ग और बहुत सारे किले मौजूद है, गढ़ मौजूद है, जहाँ पर हमारे जो पुराने राजा महाराजा थे, जिन्होंने अपना संकट काल में आश्रय बनाया था, अपनी प्रजा को वहाँ पर रखा था, अपने फैमिली को वहाँ पर रखा था। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो हमारे लिसनर से आज हमने की।

0: तो आंचल फाइनली हमारे लिसनर्स के नाम बताए जाएं और उन्होंने हमसे क्या साझा किया वो भी उनको भी बताया जाएं और हमारे दूसरे लिसनर्स को भी हम बिल्कुल बताएंगे। प्रोग्राम पेशकर्ता को प्यार भरा नमस्कार। ये लिखते हैं सुरेंद्र संधू पंजाब से, इनके साथ है अनीता संधू, रोहित संधू, रितेश संधू, शिखा, प्रतीक्षा और मैक्स संधू। ये लिखते हैं इनको हमारे प्रोग्राम्स हमेशा बहुत अच्छे लगते हैं और ये हमारे हमेशा सुनने वाले लिसनर्स हैं।
1: बिल्कुल परवीन, एक मैसेज श्रोता संवाद में हमारे साथ जुड़े हैं विक्रम जी, इन्होंने लिखा है राजस्थान मेवाड़ की आन बान शान, मेवाड़ के किले और शास्त्रकारों की जानकारी इन्हें हमसे बहुत अच्छी लगी।
0: आंचल एक मैसेज और आया है किरण जी का, लिखती हैं खम्मागणी, प्रवीण जी, आंचल जी, आप हमेशा हमारा प्रोग्राम सुनती हैं। सबसे पहले तो आंचल हमारे जितने भी लिसनर्स हमसे रूबरू होते हैं प्रोग्राम्स के माध्यम से हमें मैसेज करते हैं उनको सबसे पहले तो हम धन्यवाद करते हैं, थैंक यू करते हैं कि आप अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे प्रोग्राम को सुनते हैं और मैसेज करते हैं। तो किरण जी कहती है नमस्कार उदयपुर, ये जो प्रोग्राम है ये हमेशा सुनती है, इन्हें अच्छा लगता है, इसमें जो भी जानकारी हम देते हैं उन्हें पसंद आती है और आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की इन्होंने हम सभी को बधाइयाँ दी है, शुभकामनाएँ दी है। स्वस्थ जीवन के लिए हमको ताज़ा खाना खाना चाहिए। बिल्कुल किरण जी, थैंक यू सो मच, हम भी ध्यान रखेंगे। और जो आप यहाँ पर और भी जानकारी देते हैं को बेहद पसंद आई है और बीच बीच में जो हम सॉन्ग्स प्ले करते हैं ये तो इनको बहुत ही अच्छे लगे। थैंक यू किरण जी और सारे लिसनर्स को भी हमारी ओर से बहुत बहुत दिल से शुक्रिया।

0: तो आंचल गीत बड़ा ही प्यारा सुनवाया तुमने। और हम देखते हैं जब भी नमस्कार उदयपुर में, तो ये जो चंक होता है ना हमारा संडे स्पॉटलाइट में, कि हमारे लिसनर्स हमें मैसेज करते हैं, अपने जो विचार है हमसे साझा करते हैं, और हम उन्हीं के विचार हमारे सारे लिसनर्स को सुनवाते हैं। तो आज जो भी लिसनर्स हमसे जुड़े हैं, जिन्होंने हमें मैसेज किए हैं, तो उनको तहे दिल से शुक्रिया। और जब हम देखते हैं घड़ी भी इशारा करती है आंचल, लेकिन पहले मैं एक छोटी सी एक बात कहूँगी कि सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है पर नजरिए का नहीं।
1: बिल्कुल, मुस्कुराहट का रंग हमेशा खूबसूरत होता है, इसलिए उदासी छोड़िए और मुस्कुराइए। इसी के साथ दीजिए इजाजत कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर से। कार्यक्रम में आज मैं थी आंचल और मेरे साथ थी
0: परवीन।
1: नमस्कार
0: नमस्कार।

मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन का कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी उदयपुर है, मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत की पहली प्रस्तुति जगजीत सिंह की आवाज़ में।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

पंकज उदास की गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी उदयपुर है, मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 10 बजे हैं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत पुरानी फिल्मों से। पुरानी फिल्मों में सबसे पहले हमने ली है फिल्म पारस का ये गीत, आवाज़ है मुकेश और लता की।

लता मंगेशकर और मुकेश के युगल स्वर में अभी आप सुन रहे थे पारस फिल्म का ये गीत। अगला गीत हमने चुना है फिल्म जीने की राह से, आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की।

0: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
1: कहाँ से पता चलेगा?
0: उद्गम से,
2: RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
0: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
7: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
6: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
7: तो फिर सही नंबर,
6: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
7: आपने तो बचा लिया दीदी।
6: काम से नहीं।
5: RBI कहता है
8: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

श्रोता सुन रहे फिल्म संगीत पुरानी फिल्मों से आकाशवाणी उदयपुर पर मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर।

मृग तृष्णा फिल्म से अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। अगला गीत हमने चुना है फिल्म काला पत्थर से। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी और उषा मंगेशकर की।

इतना उकसाया, दिल रो के रुक ना पाया, तुमने इतना उकसाया।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

फिल्म संगीत पुरानी फिल्मों से आप सुन रहे आकाशवाणी उदयपुर के साथ, जिसे आपने ट्यून किया है मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर।

उमराव जान फिल्म से अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले को। फिल्म संगीत आप सुन रहे पुरानी फिल्मों से। फिल्म संगीत का आखिरी गीत हमने चुना है फिल्म द बर्निंग ट्रेन से। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों की। इस गीत के साथ दीजिए इजाज़त आंचल को। नमस्कार।

दोस्तों, पुरानी फिल्मों से गीत अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी उदयपुर है। इस वक्त 11 बज चुके हैं। आइए अब आपको सुन

राम राम सा खमागणी। देखो भाई, राजस्थानी लोकगीतारा कार्यक्रम गोखड़ा ने लेने एक बार फिर आई यहाँ आप सब लोगा री सेवा में। तो भाई अनी कार्यक्रम रो जो मकसद है वो बस अत्रो है कि आप सब लोगा ने अपने राजस्थान री लोक संस्कृतियों जोड़ने राखनो, प्यारा प्यारा राजस्थानी लोकगीत जो है भी आप सब लोगा तक पहुँचावना और घरी हरी जो है वाता आप सब लोगों करनी। तो भाई उदयपुर बार जो गर्मी रो मौसम चल रही हो और थोड़ा ही दिना बाद मौसम भी पलटी लेवेगा सा और अबे सब लोगों ने जो है वो इंतजार है वर्का रो। तो भाई वर्का भी अपना टाइम हुई आवेगा, लेकिन बार जो चल रही है गर्मी और जो तपन उमस भरी है वणु भी वंश ने आपने चालनो है। तो शुरू करा आज रहा राजस्थानी लोक गीतारा कार्यक्रम गोखड़ा ने होना यो लोकगीत।

वो या एक तरह री पेरोडी ही अणमे नराई हरा अपना राजस्थानी लोकगीत जो है वी जोड़िया लगा हा और अतरा बखूबी तरीकाओं गाय लगो हो कि कई करा और कई बताऊँ आप लोगों ने। तो भाई देखो जिस तरह आपनों जमानो बदल रही है वस्तर ही आपना जो पारंपरिक राजस्थानी लोकगीत है वी नया तरीकाओं आप सब लोग हमें पेश करिया जा रहा है और अतरी खूबसूरत तरीकाओं पेश करिया जा रहा है कि सबरे मन ने भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और मन ने भी खूब भावा लाग रहा है। तो भाई असी तरीका हूँ राजस्थानी लोकगीत और भी आपने होना उन पहले एक चीज़ और आपने कहा कि भाई जो गर्मी रो यो सीज़न चल रही है खूब खतरनाक जो गर्मी पड़ रही है वन में अबार आप देख रहा हो कि अपने उदयपुर की जो झीला है फतेह सागर वहीगी या पिछोला गणगौर घाट वहीगी वोटे नरा ही लोग सुबह सुबह हापड़वा वाते जावे है सा तो भी ऊपर कूदे और पानी में खूब मौज मस्ती भी करे लेकिन आपने यो सब भी करनो है पर लारे लारे नरी सावधानियां बरतनी है और ऐसा नरा ही आपने अबार जानकारी आई रही है और नरो यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई कोई लोग जो है वोटे डूब गयो और पानी में डूबवाऊँ असो जो है दुर्घटना वही रही है तो अना सब चीज़ारो आपने ध्यान रखना है। गंगूकूड में जा दुर्घटना भी वनने भी आप ही ध्यान में रखा सा तो भाई जो भी गहराई वाली जगह है जटे आप जा रहा हो तेरवा वाते जा रहा हो पानी में और गर्मी राहत पावा वाते जा रहा हो तो भाई जो सावधानी है तरवाऊँ पहला अगर आपने तरता नहीं आवे तो आपने सब तरीकाओं जो सावधानी है वह आपने लारे रखनी पड़ेगा सा तो सबरी निगरानी में ही आप पानी रे महीने उतरो ताकि सुरक्षित रहे ओला। तो भाई यही सब चीज़ें आपने करनी है और अणी व्यवहारी जो है दुर्घटनाओं आपा वन सकांगा सा। तो कार्यक्रम में होना सा एक और राजस्थानी लोकगीत।

0: भाई राजस्थानी लोक गीतारो कार्यक्रम गोखड़ा चाल रियो है और अबे इन कार्यक्रम लेवा एक छोटो सो कमर्शियल ब्रेक और वनडे बाद में और भी प्यारा प्यारा राजस्थानी लोकगीत वेगा आप सब लोग आवाते।
1: हो गया इंतजाम।
2: किसका? गुड्डी की फीस का।
3: दिखा 20,000 का लोन तुरंत।
2: पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है?
3: लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर।
2: हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
4: आरबीआई कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो भाई ब्रेक रे बाद में एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत कर रहे हैं कार्यक्रम गोखड़ा में। और जटे महावाद करी पानी री और पानी वाला जगह री और जटे गहराई ज़्यादा वे वटे आपाने वगर सुरक्षा री चीज़ा लारे नहीं जानो है। सुरक्षा री जोतरी भी ताम जाम है जी भी चीज़ा है वे सब लारे लाइन जानो है। और एक चीज़ है कि वही से कि अगर आप रखने कोई लाइफ जैकेट वे या फिर भी ट्यूब वे तैरवा वारा वना ट्यूब रे हाथे ही आपने पानी में उतरनो है सा। और जना ने तरता आवे वना ने भी बरोबर हर चीज़ रो ध्यान रखनो है। घनी ऊंचाइयों पानी रे मई नी फदकनो वही सके कि पानी रे मई ने कहीं जगह कोई चट्टान वेवे या फिर कहीं तरीका रो कोई असी पट्टी निकली लगी वेवे तो वणु आपा टकराई सका और कोई भी नुकसान वही सके जान मान री हानि वही सके तो वही चीज़ों आपा ने वंचनो है। और अंडे बाद भाई अबार तो आप गर्मी राहत वाते पानी में उतर रहा हो और जब बारिश आई जाएगा नदी नाला उफान माते वेगा और जो झरना है और जो उदयपुर की खूबसूरती है वह घनी ही निखरने आवेगा और वन में भी आप कई करोगा कि वटे भी जाओगा और वटे भी अगर सावधानी आप पे नहीं बढ़ती तो वटे भी कई तरीका और कई नुकसान हो ही सके है। तो भाई पानी वंचने रहनो है कहाँ कि आपने नहीं मालूम कि कहीं जगह कई नुकसान जो है वो अपने वाते उबो लगो है और आपा वनु चपेट में आई सका। हाँ तो भाई पानी जो है वन्य हल्का में बिल्कुल नहीं लेना। तो हुणा सा राजस्थानी लोकगीत रहन कार्यक्रम में यो लोकगीत

भाई अबे बारी है राजस्थानी लोकगीतारा कार्यक्रम गोखड़ा में। आज रो आखिरी राजस्थानी लोकगीत आप सब लोगों ने हुणावा रो, तो हुणावा सा यो राजस्थानी लोकगीत और आप सब लोगों ने क्या भाई पधारो मारे देश। भाई मानो जो राजस्थान है वो रंग रंगीलो है, अटे सब लोगारो माँ सब लोग प्यार हो स्वागत करा हाँ सा। आप हुणो सा यो राजस्थानी लोकगीत और अणि कार्यक्रमों इजाजत दो सा, राम राम सा।

दोस्तों, आज के राजस्थानी लोकगीतों के कार्यक्रम गोखड़ा में बस इतना ही। आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर के जरिए, और आपको बता दें इस वक्त 11:30 हो चुके हैं। दोस्तों, आइए अब आपकी नजर करते हैं चंद बेहतरीन गजलें। पहली गजल चित्रा सिंह और जगजीत सिंह की आवाज में।

0: दोस्तों कार्यक्रम सुगम संगीत को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
1: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
2: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
1: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
2: कहाँ से पता चलेगा?
1: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
7: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
6: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
7: तो फिर सही नंबर,
6: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
7: आपने तो बचा लिया दीदी।
6: काम से नहीं।
8: RBI कहता है
9: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में, और आइए बाप की नजर करें अगली गजल मेहदी हसन साहब की आवाज में।

दोस्तों, इस गज़ल के साथ ही आज के सुगम संगीत के इस कार्यक्रम को यहीं देते हैं विराम। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी उदयपुर है। दिन के 12 बजने को हैं। कुछ ही पलों में होगा कार्यक्रम बगिया के फूल, जिसका इंतज़ार करते हैं हमारे नन्हे नटखट और चुलबुले बाल मनुहार।

0: जय हिंद बच्चों।
1: ममता आज तो भाई तुम बड़ी सुंदर सी लग रही हो, बड़े सुंदर परिधान पहन रखे और बहुत खुश खुश भी नजर आ रही हो भाई।
0: बिल्कुल आज हाँ कोई फंक्शन है और वहाँ पर जा रही हूँ आज हमारा लंच हमारे परिवार के साथ में।
1: तो भाई ये तो बहुत अच्छी बात बताई बच्चों। ममता दीदी ने क्या बताया, सुना आपने कि भाई परिवार के साथ लंच, परिवार के साथ खाने में, परिवार के साथ घूमने में, परिवार के साथ बातें करने में बहुत मजा आता है। हम परिवार के बिना कुछ भी नहीं। कहते हैं ना ममता, यदि कोई पत्ता पेड़ से टूट कर गिर जाए तो उस पत्ता क्या होता है, सूख जाता है, लेकिन जब तक वो डाल से लगा रहता है तो हरा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम बच्चा यही कहना चाहते हैं कि परिवार में, परिवार के साथ रह के हम हमारी हर जरूरत को पूरी कर सकते हैं बहुत सी सुविधाओं और सुरक्षा के साथ में।
0: और आज है 7 जून और आज है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। और माला हर साल 7 जून को हम विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को स्वच्छ, पौष्टिक और सुरक्षित भोजन के महत्व के बारे में जागरूक करें और ताकि जो दूषित भोजन है और उससे होने वाली बीमारियां हैं वो लोगों में नहीं हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल, देखो ना ममता, गर्मी का जो सीजन है उसमें तो हम कहते हैं घर पे भी यदि हमने खाना बनाया और अगर उसको सही जगह नहीं रखा थोड़ी देर बाद वो खाना खराब हो जाता है और गलती से यदि वो खाना किसी ने खा लिया तो फिर बीमार हो जाते हैं। तो भाई गर्मी तो वो सीजन है जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा कोशिश हमें ये करनी चाहिए घर का बना खाना खाएं, ताजा खाना खाएं। भाई हम बच्चों की जो माँ है, जो हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, जो हमारे लिसनर्स हैं, उनसे भी कहना चाहेंगे कि कई बार आलस होता है, भाई आटा गूंथ के रख दिया, सब्जी की ग्रेवी बना के रख दी, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। भाई थोड़ा सा खाना बनाना है अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, प्लीज आप ताजा बनाएं, ताजा खिलाएं और स्टोर की हुई चीजें ना खिलाएं, बच्चों को भी ना खिलाएं और ना आप खाएं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि गर्मी के मौसम में हमारे छोटे छोटे बच्चों की तबीयत खराब हो जाए। फिर देखो घर में यदि ममता एक बीमार होता है तो फिर परेशानी तो
0: सबको होती है। हाँ, और बच्चे तो, बच्चों की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कम होती है तो सबसे ज्यादा चपेट में बच्चे आते हैं, बहुत जल्दी उनको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, दस्ते लग जाती है और इम्यूनिटी कम होने की वजह से वो बीमार पड़ जाते हैं। तो हम तो नहीं चाहते कि बच्चों की छुट्टियां भी खराब हो, बच्चों का सेहत भी खराब हो, तो इसलिए बच्चों आपको भी पूरा ध्यान रखना है और बच्चों के पेरेंट्स को भी गर्मी में जो खाद्य है सुरक्षित रहे और खराब नहीं हो, खराब नहीं खाएं, इसका बात का ध्यान आपको रखना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और देखो ममता गर्मी में जहां तक हो सके जूसी फूड खाना चाहिए। हम कह रहे हैं भाई लिक्विड ज्यादा से ज्यादा ले। अपने घर में लिक्विड बनाए, नींबू पानी है, छाछ है, कैरी पना है, बहुत सारी जो चीजें हैं वो, जो और तरबूज है, तरबूज
0: सारे फ्रूट

0: है
1: फ्रूट्स
0: गर्मियों के वो पानी वाले ही होते हैं बच्चों, वाटरमेलन ले लो या मेलन ले लो, तो सब में बहुत भरपूर मात्रा में जूस होता है। तो थोड़ी थोड़ी देर में आप फ्रूट्स खाते रहें सबसे अच्छा है, आप डिटॉक्स भी रहेंगे और वाटर की जो कमी है आपके शरीर में वो भी आपकी पूरी होती
1: और
0: रहेगी।
1: साथ ही साथ ममता बच्चों की स्किन भी बहुत अच्छी रहेगी, बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी। तो देखो छोटी सी चीज का अगर यदि हम ध्यान रखें तो हम सेहतमंद रहेंगे। और लेकिन ममता कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मम्मी कुछ बना के देती है, कहते हैं हम नहीं
0: मुंह बिगाड़
1: खाएंगे,
0: देते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: हमें नहीं पसंद है, तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए
0: नहीं बिल्कुल
1: बच्चों?
0: नहीं करना चाहिए, और मम्मी अच्छा बनाती है और पौष्टिक बनाती है, घर का खाना तो बहुत पौष्टिक होता है, तो आपको वो तो हमेशा खाना ही चाहिए।
1: बिल्कुल खाना चाहिए और माँ के सम्मान में सिर भी झुकाना चाहिए। आप सोच के देखो गर्मी में तपती धूप में माँ तुम्हारे लिए कितना अच्छा खाना बनाती है, खाना बना के तुम्हें ला कर देती है, और आप खाने से पहले ही कह देते हो कि मुझे नहीं खाना, ये क्या बना दिया आपने, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आपने खाना बनाने वाले का सम्मान कहाँ रखा, आप जरा सोच के देखिए ममता, गर्मी में हम खाना बनाते कितना, कितनी मेहनत होती,
0: बहुत
1: कितनी गर्मी
0: मेहनत होती
1: लगती
0: है,
1: है।
0: बहुत गर्मी होती है बच्चों, और गर्मी में खाना बनाना बहुत बड़ा काम है, और आपको माँ का सम्मान जरूर करना चाहिए, नहीं तो आप एक दिन खाना बना के देखिए तो आपको पता चल जाएगा कितनी परेशानी होती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और फिर देखो फिर बच्चे कहते नहीं हम नहीं खाएंगे, तो भाई इन पे तो ये गाना लागू होता है कि हम तो भाई जैसे हैं से
0: वैसे
1: ही रहेंगे,
0: रहेंगे।
1: लेकिन फिर भी हम आपसे कहेंगे कि नहीं थोड़ा आपको बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, मम्मी जो बना रही है वो खाना पड़ेगा और मम्मी का शुक्रिया भी अदा
0: करना
1: करना पड़ेगा। तो
0: पड़ेगा।
1: सुनाए बच्चों को प्यारा सा गीत।
0: हाँ,

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करे। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है, तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं, ओ जैसे UPI से।
3: अच्छा।
2: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
3: वो क्या है मम्मी जी?
2: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
3: आम भी ना मम्मी जी।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
5: हम दुबई जैसे हैं वैसे रहेंगे, बहुत अच्छा गाना है। और बच्चों, हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि छुट्टियां हो गई आपकी, अभी होबी क्लासेस भी आपकी चल रही होगी, बहुत सारे बच्चे हैं ना हमारा, बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखते हैं छुट्टियों में,
6: और सीखने का समय भी यही है ममता।
5: तो बच्चों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम सुनवाते हैं आपको एक हॉबी रिकॉर्डिंग, जिसमें हॉबी क्लासेस के बारे में बात करेगी सरिता दीदी आपसे।
7: बच्चों, छुट्टियां चल रही है और हम सभी जानते हैं कि आप सभी छुट्टियों में घूमने जाते हैं, हॉबी क्लासेस भी जाते हैं। तो ऐसी ही आज की जो हॉबी रिकॉर्डिंग है हमारी, वो है हॉबी क्लासेस से लेकर। तो श्रेष्ठा हॉबी क्लासेस से, श्रेष्ठा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बगिया के फूल में।
8: सरिता जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस रिकॉर्डिंग के लिए याद किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
7: श्रेष्ठा जी, सबसे पहले तो हम यही पूछना चाहेंगे कि आप कितने सालों से हॉबी क्लास लगा रही हैं?
8: देखिए, मैं पिछले 23 सालों से बच्चों के लिए हॉबी क्लासेस लगा रही हूँ, ताकि बच्चे क्या थोड़े क्रिएटिव बन सके। छुट्टियाँ हो जाती है, हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं होता है, जैसे स्कूल्स रहते हैं, एग्जाम्स रहते हैं, पढ़ाई के लिए बहुत कुछ होता है, छुट्टियों में कोई भी बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है। हर जना यही चाहता है कि हम उस टाइम को

0: अच्छे से यूटिलाइज करें और कुछ क्रिएटिव बने इन छोटे,
1: बिल्कुल चाहते हैं, और ताकि बच्चे नहीं उनके पेरेंट्स और ज्यादा चाहते हैं बिल्कुल कि कुछ ना कुछ सीखा जाए,
0: बिल्कुल। और साथ में क्या होता है कि मदर्स भी थोड़ा क्रिएटिव हो जाती हैं साथ साथ कि बच्चों को कुछ कटिंग्स वगैरह करके देनी है, कुछ भी उनको वापस रिकॉल कराना है, तो मदर भी एक्टिव हो जाती है साथ साथ।
1: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात बताई है श्रेष्ठा जी आपने, और साथ ही आप हमें बताइए कि आप इस हॉबी क्लास में क्या क्या चीजें सिखाती हैं बच्चों।
0: देखिए, मैं आर्ट एंड क्राफ्ट सिखा रही हूँ जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं बच्चों के पास, जैसे डूडल आर्ट है, मंडाला आर्ट है जो कि अभी बहुत चल रहा है, और क्राफ्ट से रिलेटेड कि कुछ भी फ्लावर्स वगैरह बनाने, कटिंग्स वगैरह आपको सीखनी है तो वो भी बच्चे सीख सकते हैं। डांस में भी जैसे बॉलीवुड है, सेमी क्लासिकल है, वो मेरे उसमें रहता है, और ड्रॉइंग में स्केचिंग और शेडिंग दोनों ही रहता
1: है। बहुत बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों को आजकल इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, क्योंकि उनका एक्स्ट्रा स्किल जो है वो डेवलप हो जाता है इन चीजों से। बहुत ही अच्छा काम आप कर रही हैं बच्चों के लिए। और सबसे पहले अब आप हमें ये बताइए कि ठीक है, आप क्लासेस तो लगा ही रही हैं, लेकिन इसके पीछे क्या मोटिव है, क्या उद्देश्य है कि हमें हॉबी क्लासेस करनी चाहिए बच्चों को?
0: देखिए, उद्देश्य तो ये है कि आज का जो युग है, आधुनिक युग, उसमें टेक्नोलॉजी तो बहुत ज्यादा हो गई है,
1: बिल्कुल,
0: पर टेक्नोलॉजी का फायदा भी है और नुकसान भी हम सब जानते हैं। तो ज्यादातर बच्चों का क्या हो रहा है, स्क्रीन टाइम सबसे ज्यादा हो रहा है,
1: बिल्कुल,
0: एक मोबाइल छोड़ते हैं दूसरा मोबाइल पकड़ते हैं, फिर कभी टीवी देखते हैं। आउटिंग थोड़ी आफ्टर कोविड बंद हो गई, आप भी जानते हैं कि हम एक दूसरे के घर जाना थोड़ा कम प्रेफर करते हैं, कि कोई भी किसी को भी अगर वायरल हो रहा है तो हम नहीं जाते हैं, या अभी नौ तपा चल रहा है उसमें भी हम कम जाते हैं, बाहर जाना प्रेफर कम करते हैं। तो स्क्रीन टाइम से थोड़ा बच्चे शॉर्ट हो जाए उनका, और टीवी मोबाइल से दूर रहे, मेन तो एक्टिव हो सके, माइंड थोड़ा एक्टिव इसलिए रहे कि टीवी मोबाइल से हम कुछ सीख नहीं रहे, बिकॉज आजकल हम सिर्फ ओनली रील्स देखते हैं,
1: बिल्कुल, और बच्चों के हाथ सिर्फ चलते हैं,
0: फिंगर्स चलती है, उससे क्या होता है कि कई बच्चों का मेंटल ऑरा जो है वो काफी कुछ डिस्टर्ब हो रहा है,
1: बिल्कुल,
0: दिन भर उसमें मेमोरी कम हो रही है सबसे मेन तो बच्चों की, याद रखने की, कि हमें कुछ याद नहीं रहता है, और न्यू फ्रेंड्स हमारे बन सके, यहाँ पे बच्चे आते हैं तो एक घंटा दो घंटा तीन घंटा उनके लिए ऑप्शन होता है कि एक क्लास ज्वाइन करो दो करो तीन करो, उनके ऊपर डिपेंड है, तो दो तीन घंटे बच्चे भी बिजी रहते हैं, नए फ्रेंड्स से मिलते हैं, थोड़ा उनका सब चीजों से माइंड हट जाता है कि हमें बस अभी क्रिएटिव बनना है और कुछ अच्छे से अच्छा करके दिखाना है। और फिर हमारे उसमें ये भी रहता है कि जैसे जो बच्चा अच्छा पढ़ता है हम उनको प्राइज भी देते हैं, तो बच्चा थोड़ा मोटिवेट होता है कि हाँ मुझे आगे और अच्छा करके लेके आना है, तो नेक्स्ट डे वो और अच्छा करके लेके आते हैं।
1: बहुत बहुत ही अच्छी बात आप हमें बता रही हैं श्रेष्ठा जी, लेकिन अगर आजकल देखा जाए तो कई सारे बच्चे YouTube से भी सीखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि YouTube से सीखना और आमने सामने सीखना ज्यादा बेटर होता है?
0: नहीं, YouTube से सीखना बुरा नहीं है कि हाँ आप कहीं नहीं जाके पैसा खर्च नहीं करके आप सीख सकते हैं, बट वहाँ फ्रेंड्स नहीं मिलते हैं,
1: बिल्कुल,
0: वापस वही बात आ जाती है कि हम स्क्रीन के पास ही चले जाते हैं,
1: बिल्कुल,
0: और थोड़ी देर होती है हम उससे बोर हो जाते हैं और फिर वापस रील्स चलाना चालू कर देते हैं,
1: बिल्कुल, एक टीचर का तो डर भी रहता है बच्चों को,
0: डर रहता है वो तीन घंटे या दो घंटे यहाँ पे हमारे पास बैठा है तो उसको ना मोबाइल चलाना है, ठीक है आप एंजॉयमेंट हंसी मजाक कर सकते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट लाए हो तो सब जने शेयर करके अपना एंजॉयमेंट, मतलब एक तरह से पार्टी भी हो जाती है बच्चों की, फिर एक दूसरे का देख के सीखते हैं कि हाँ वो ये बना के लाया कल मुझे भी बना के लाना है,
1: अच्छा बनाना है इससे, कई बार
0: बिल्कुल,
1: बहुत ही अच्छी बातें आप हमें बता रही हैं, और ये तो होना भी चाहिए, बच्चों के साथ शेयरिंग केयरिंग भी बढ़ती है, गिव एंड टेक का रूल जो है वो भी बढ़ता है, सॉरी थैंक यू सारी चीजें वो
0: सारी चीजें एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं कि आज तेरा मैं ये कटिंग कर देती हूँ, मैं तेरे को ये डांस फॉर्म सिखा देती हूँ, तो ये चीजें भी बच्चों में होती है, और किस जैसे होता है कि कोई जैसे बॉलीवुड सीख रहा है दूसरा सेमी क्लासिकल सीख रहा है, तो वो उसको थोड़ी हेल्प करता है कि ला थोड़ा मैं तेरे को गाइड करता हूँ, तो ऐसे ऐसे कर, तो वो हो जाता
1: इसी
0: है,
1: इससे भी बच्चों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन जाती है,
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा, आप हर साल जो 23 सालों से जो आप हॉबी क्लासेस चला रही हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। बच्चों, अभी हमने श्रेष्ठा जी से बात की, अब उसी हॉबी क्लासेस से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो हमारे साथ हैं, अब हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले बेटा क्या नाम है आपका?
2: नाम पिंकी है।
1: पिंकी, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं?
2: मैं 6th क्लास में पढ़ती
1: हूं। अच्छा, ये आप यहाँ हॉबी क्लासेस में क्या सीख रहे हो?
2: मैं यहाँ डांस सीख रही हूँ।
1: अच्छा, डांस का कौन सा फॉर्म सीख रहे हैं?
2: मैं बॉलीवुड और जेंट्स डांस।
1: अच्छा, तो आपको डांस करना बहुत अच्छा लगता है क्या?
2: हाँ, मुझे डांस करना बहुत अच्छा।
1: अच्छा, तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आप बॉलीवुड जो सीख रहे हैं उसमें कौन कौन से सॉन्ग आपने सीखे?
2: गुलाबी शरारा और भी बहुत सारे।
1: अच्छा, बहुत सारे डांस सीख रहे हो, तो मजा आ रहा है आपको हॉबी क्लासेस में आके?
2: बहुत मजा,
1: एंजॉय कर रहे हो ना? और बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए हैं आपने?
2: हाँ।
1: ओके, फ्रेंड्स के नाम बताना चाहोगे?
2: प्रिया, रिया, आया।
1: ओके, बहुत अच्छी बात है भाई, फ्रेंड्स तो बनाने ही चाहिए। क्या नाम है बेटा आपका?
3: मेरा नाम प्रिया है।

0: प्रिया आप क्या सीख रहे हो अभी क्लासेस में?
1: मैं मंडाला आर्ट और स्केचिंग सीख।
0: अच्छा मंडाला आर्ट अच्छी लगती है आपको?
1: हाँ।
0: वो बहुत ज्यादा बारीक होती है ना बनाने में।
1: हाँ।
0: तो कैसे सिखा रहे हैं आपके टीचर्स यहाँ पर?
1: बहुत अच्छे तरीके से सिखा रहे हैं।
0: अच्छी तरीके से सिखा रहे हैं। तो आपने कुछ बनाई है मंडाला आर्ट?
1: हाँ।
0: अच्छा ओके। तो और किस किस में आपको इंटरेस्ट है?
1: मेरे को सिंगिंग में इंटरेस्ट है, ड्राइंग में इंटरेस्ट है और डांस में इंटरेस्ट है।
0: अच्छा ओके वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और मंडाला आर्ट तो आप सीख रहे हो, सिंगिंग भी आप कुछ करते हैं क्या? कुछ सुनाओगे हमको गाके?
1: इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात बताइए कि भगवान हमें इतनी शक्ति देंगे कि हम कभी भी कमजोर नहीं होते हैं। बेटा आपका क्या नाम है?
2: मेरा नाम तश्वी है।
0: तश्वी आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
2: मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ।
0: अच्छा अभी यहाँ हॉबी क्लासेस में आप क्या क्या सीख रहे हैं?
2: मैं आर्ट एंड क्राफ्ट और ड्राइंग सीख रही
0: हूँ। अच्छा आर्ट एंड क्राफ्ट और ड्राइंग सीख रहे हो, तो आर्ट एंड क्राफ्ट में आपने क्या क्या बनाया है?
2: मैंने बर्थडे कार्ड्स, फ्लावर्स और बहुत सारी चीजें बनाई।
0: अच्छा बर्थडे कार्ड्स एंड फ्लावर्स, आपने बहुत सारी चीजें बनाई हैं। तो कैसा लगता है आपको आर्ट एंड क्राफ्ट करना?
2: मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा बहुत अच्छा लगता है, और साथ में पढ़ाई के साथ भी आप आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं?
2: हाँ।
0: अच्छा तो बहुत अच्छी बात है। और टीचर्स कैसा सिखा रही हैं आपको? नई नई चीजें सीखने को मिल रही है। अच्छा ड्राइंग में क्या क्या पसंद है आपको?
2: ड्राइंग में शेडिंग, स्केचिंग और बहुत सारी।
0: तो क्या क्या फिगर्स आपने अभी तक बनाए हैं ड्राइंग में?
2: मैंने फेस, आई, बहुत सारी। मैंने कार्टून कैरेक्टर्स, महाराणा प्रताप की ड्राइंग और बहुत सारे लैंडस्केप बनाए।
0: क्या नाम है बेटा आपका?
3: मेरा नाम तनीषा है।
0: तनीषा आप क्या सीख रहे हैं हॉबी क्लासेस में?
3: मैं यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट सीख रही हूँ।
0: अच्छा आर्ट एंड क्राफ्ट कैसा लगता है आपको?
3: बहुत अच्छा लगता है करने में।
0: तो छुट्टियों में यूँ नहीं लगता है, वापिस मैं बिजी हो गई हूँ पढ़ाई से लेकर?
3: हाँ टेंथ है तो,
0: टेंथ है तो इसलिए ऐसा लगता है ना।
3: हाँ।
0: पर हॉबी क्लासेस अगर हम करते तो हमारा माइंड क्या बहुत क्रिएटिव हो जाता है ना।
3: Exactly।
0: और पढ़ाई में बहुत अच्छे से मन लगता है। क्योंकि कहते भी है ना कि हम अपने मनपसंद का कोई काम करें तो फिर हमको ज्यादा एनर्जी मिल जाती है। तो आर्ट एंड क्राफ्ट में आप क्या क्या सीख रही हैं?
3: मैं अभी हैम्पर्स बनाना सीख रही हूँ, बुके बनाना सीख रही हूँ, क्राफ्ट्स के कार्ड्स बनाना सीख रही हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है हैम्पर्स, क्योंकि आजकल तो टाइम जो देखा जाए ना तो वो हैम्पर्स का बहुत ज्यादा हो गया है ना।
3: हाँ।
0: तो बहुत अच्छी बात आपने हमको बताई है। और क्या क्या सीखना चाहते हो? मतलब ठीक है ये तो अभी आपकी हॉबी
3: है। मेरा एक साइड भी है कि मुझे डांसिंग में भी कुछ करना है।
0: ओके।
3: तो मैं डांस भी सीखती हूँ इधर।
0: अच्छा तो बहुत अच्छी बात है, हम तो यही चाहेंगे कि आप डांस में बहुत अच्छा करें और आप जो भी सीख रहे हैं उनमें बहुत अच्छा करें। तो क्या नाम है बेटा आपका?
4: मेरा नाम दिया है।
0: आप यहाँ हॉबी क्लासेस में क्या सीख रहे हैं?
4: मैं यहाँ हॉबी क्लासेस में ड्राइंग सीख रही हूँ अभी।
0: अच्छा ड्राइंग सीख रही है, तो ड्राइंग में आप क्या क्या बनाना सीख रहे हो?
4: स्केचिंग है, शेडिंग है, पोर्ट्रेट्स है, ये सब सीख रही हूँ।
0: अच्छा तो आपने कभी तक किसी की शेडिंग या पोर्ट्रेट बनाया है?
4: हाँ मैंने गॉड्स की स्केचिंग और पोर्ट्रेट बनाती हूँ मोस्टली। तो अभी तक गणेश जी की बनाई है, उसके बाद दूसरे गॉड्स की भी बनाई है, शिव जी पार्वती की बनाई है।
0: अच्छा बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है। और क्या क्या करना आपको पसंद है? जैसे ठीक है आप शेडिंग स्केचिंग तो आप सीख रहे हैं, उसके अलावा आपको और क्या क्या पसंद है?
4: मुझे डांस पसंद है।
0: अच्छा वैसे भी अच्छा है, डांस से सारी एक्सरसाइज हो जाती है ना।
4: हाँ।
0: बहुत अच्छी बात बताइए। क्या नाम है बेटा आपका?
5: अनाया।
0: अनाया आप क्या सीख रहे हो हॉबी क्लासेस में?
5: ड्राइंग।
0: अच्छा ड्राइंग में आप क्या क्या बनाया है आपने?
5: डॉग।
0: हाँ।
5: हर्ट। एप्पल। बनाना। फ्रूट्स।
0: अच्छा सारे फ्रूट्स बनाना सीख रहे हो। अच्छा फ्रूट्स खाना अच्छा होता है ना? अच्छा फ्रूट खाने से हम क्या रहते हैं?
5: हेल्दी।
0: वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बताई। चलते चलते बच्चों श्रेष्ठा जी हमारे साथ कुछ लाइनें शेयर करना चाहती है। श्रेष्ठा जी क्या कहना चाहती हैं?
6: बस सब बच्चों को यही कहना चाहूंगी कि क्या खूब कहा है किसी ने, क्या खूब कहा है किसी ने, अपनी जिंदगी के चित्रकार खुद ही बने, जो रंग मन को भाए वही भरे।
0: बिल्कुल क्या बात कही है आपने, बहुत ही अच्छी बात बताई है हमारे बच्चों को। आपका और आपकी हॉबी क्लासेस में आने वाले बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।
6: धन्यवाद आपका।
7: तो बच्चों अभी आप सुन रहे थे हॉबी रिकॉर्डिंग और हॉबी क्लासेस के बारे में सरिता दीदी बता रही थी। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं वाला और सुनवाते हैं बच्चों को प्यारा सा गीत।

0: छुट्टी है भाई, छुट्टी है
1: भाई, बिल्कुल छुट्टियों का सीजन चल रहा है ममता। छुट्टियों में बच्चों को मजा करने देना चाहिए। मैं पेरेंट्स से कहना चाहूंगी कि बिल्कुल सुबह शाम उनको मौज मस्ती करने दीजिए, प्लीज उनको रोकिए मत, टोकिए मत, वो कुछ करना चाहते हैं खेलने दीजिए, उनकी पसंद का खाना बनाइए, क्योंकि बच्चे साल भर बहुत मशरूफ रहते हैं अपनी पढ़ाई में, क्यों ममता?
0: बिल्कुल। और माला आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं बच्चों को 8 जून जो होता है वो राष्ट्रीय बेस्ट फ्रेंड डे यानी सबसे अच्छे दोस्त दिवस हम 8 जून को मनाते हैं। और हमारे जो प्यारे दोस्त होते हैं वो हमारा हमेशा साथ देते हैं और हम जब मुसीबत में होते हैं तब भी वो साथ देते हैं, तो हमारे दोस्त की बहुत ज़्यादा अहमियत है हमारे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, दोस्त एक मेडिसिन होते हैं, जिस तरह औषधि हमें बीमार नहीं होने देती, और जब भी हम थोड़ा सा बीमार होते हैं जैसे ही लेते ठीक हो जाते हैं, दोस्त हमारे जीवन में औषधि का काम करते हैं। जब भी हम तनाव में होते हैं, परेशानी में होते हैं, वो हमारी परेशानी चुटकी बजा के हल कर देते हैं।
0: और मुझे जब सबसे अच्छे दोस्त की जब बात आ रही है तो मुझे कहानी याद आ रही है माला, बता दूं मैं
1: हाँ
0: बच्चों को?
1: बिल्कुल बिल्कुल, सुना
0: तो
1: दो।
0: बच्चों बहुत पुरानी बात है, दो बहुत अच्छे दोस्त थे और एक बार एक जंगल से होकर गुजर रहे थे,

0: दोस्तों का नाम रामू और श्यामू था। तो रामू जो था वो उसने देखा कि दूर से एक भालू आ रहा है। तो रामू ने श्यामू को बोला कि देख भालू आ रहा है, बहुत तेज चल चल के आ रहा है। तो श्यामू जो था वो बोलता है कि मुझे तो पेड़ पे चढ़ना आता है, तुम अपना सोचो। और फटाफट दौड़ के और पेड़ के ऊपर चढ़
1: चढ़
0: गया।
1: गया।
0: जो रामू था वो देखता रह गया कि मेरा दोस्त मुझे ऐसे कैसे छोड़ के चला गया। पर उसने भी हिम्मत नहीं हारी, उसको भी बुजुर्ग की एक बात याद आ गई और वो वहां पर लेट गया जमीन पर और उसने अपनी सांस रोक
1: रोक
0: ली।
1: ली।
0: और जो भालू था वो तेज गति से आ रहा था, भालू रामू के पास आया, उसने रामू को सूंघा और आगे निकल गया। थोड़ी देर जब भालू आगे निकल गया तो श्यामू जो पेड़ पे चढ़ा था वो नीचे उतर के आया। उसने रामू को बोला कि तुझे है ना भालू ने कान में क्या कहा। तो रामू बोलता है मुझे भालू ने बोला कि ऐसे दोस्तों से दोस्ती मत रखना जो तुमको मुसीबत के समय छोड़ के भाग जाए। और
1: बिल्कुल बिल्कुल ममता,
0: बच्चों
1: दोस्त ऐसे ही बनाने चाहिए जो हमारी सही
0: मुसीबत
1: में
0: में
1: काम आए।
0: सहायता
1: बिल्कुल
0: करें।
1: बिल्कुल। और जैसे अभी हमने कहा था ना, दोस्त तो औषधि है। दोस्त तो भाई तनाव दूर करने का काम करते हैं। अच्छे दोस्त, मैं तो कहती हूँ बच्चे दोस्त कम बनाओ लेकिन
0: अच्छे
1: अच्छे बनाओ,
0: बनाओ।
1: आपको जो राहत दे। कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं ममता जो दोस्तों को,
0: और
1: हाँ
0: हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनाते हैं बच्चों को प्यारा सा दोस्ती का गीत।

0: बिल्कुल बिल्कुल दोस्त में बहुत प्यारा गीत सुनाया ममता दीदी ने,
1: हम नहीं तोड़ेंगे
0: बिल्कुल। और देखो ममता, बच्चों से कहना चाहिए जुदा होने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन अब समय हो चला है तो इजाजत ले लें।
1: हाँ,
0: तो दीजिए इजाजत

हमारे नन्हे मुन्हे नटखट और चुलबुले बाल मनुहार अभी सुन रहे थे कार्यक्रम बगिया के फूल। दोस्तों आपको बता दें इस वक्त दिन के 12:30 हुए हैं और अब आपको लिए चलते हैं फिल्मी गीतों के सफ़र पर। तो इस सफ़र का आगाज़ हम कर रहे हैं वारिस फिल्म के गीत के साथ। आवाज़ें लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह की है।

दोस्तों, फिल्मी गीतों के इस सफ़र में आप हैं आकाशवाणी उदयपुर के साथ। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको सुनवा रहे हैं हीरो फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज़।

0: हमारा दिल है।
1: दोस्तों, फिल्म गीतों के सफर के इस सेगमेंट का आखिरी नगमा आप सबके नाम कर रहे हैं। कुदरत फिल्म का ये गीत है, लता मंगेशकर की आवाज़।

0: दोस्तों, फिल्मी गीतों के सफर के इस सेगमेंट में आज बस इतना ही। अगला सेगमेंट होगा दिन में 1:45 पर। ये आकाशवाणी उदयपुर है, दिन का 1 बजने को है। कुछ ही पलों में होंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खानपान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी सोशल मीडिया संदेश में सभी से सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की अपील की है, साथ ही स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने का संकल्प लेने को कहा है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक, हर जगह सुरक्षित भोजन। केंद्र सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने

0: बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ता है। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के दौरान समुद्री यातायात में गंभीर व्यवधान के बावजूद भारत होर्मुज जलडमरू मध्य से ऊर्जा माल की आवाजाही जारी रखने में सफल रहा। मंत्रालय के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है और एलपीजी की बॉटलिंग और वितरण गतिविधियां सामान्य रूप से जारी हैं। इस बीच घरेलू रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए बढ़ाए गए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज आखिरी तारीख है। बोर्ड के सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार ये पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। इस बीच सरकार की ओर से नीट यूजी परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जा रहे हैं। ये परीक्षा 21 जून को आयोजित होगी। एनटीए ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही प्रश्न पत्र लीक और बिक्री से संबंधित अफवाहों का खंडन किया है। उम्मीदवारों और अभिभावकों को अनजान स्रोत से प्राप्त किसी भी तरह के संदेश पर भरोसा नहीं करने की सलाह दी गई है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। साइकिल चलाने से स्वास्थ्य को होने वाले फायदों का उल्लेख करते हुए श्री मांडविया ने नागरिकों से इस पहल में शामिल होने और फिट इंडिया के सपने को साकार करने का आग्रह किया।
1: साइकिलिंग करने से आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। साइकिलिंग से फ्यूल का बचत होता है। वर्तमान में ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, उसका भी समाधान है, तो क्यों न हम साइकिलिंग करें। देश के नागरिकों में अपने हेल्थ के प्रति अवेयरनेस बढ़ी है। मोदी जी ने आधा घंटा रोज फिटनेस देने के लिए कहा है, तो ये फिटनेस का डोज आधा घंटा के लिए हम हमेशा साइकिलिंग करेंगे तो मैं मानता हूँ कि हमारी कई समस्या का समाधान होगा।
0: प्रदेश में संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम के तहत कोटपुतली में पुलिस कर्मियों ने साइकिल रैली निकाली। इसके बाद पुलिस लाइन मैदान में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने योगाभ्यास कर फिट रहने का संदेश दिया। सवाई माधोपुर में दशहरा मैदान से सर्किट हाउस तक साइकिल रैली में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मौसम विभाग ने आज राज्य के 12 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान राजधानी जयपुर, बीकानेर और भरतपुर संभाग के कई जिलों में तेज हवा के साथ बरसात हो सकती है। इस बीच पश्चिमी जिले एक बार फिर तेज गर्मी की चपेट में हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और श्रीगंगानगर सहित कई अन्य स्थानों पर दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में अगले दो दिनों तक तापमान बढ़ने और गर्मी का असर बने रहने की संभावना जताई है। बीकानेर में होने वाले खेलो बीकानेर यूथ गेम्स 3.0 के लिए खिलाड़ियों के पंजीयन शुरू हो गए हैं। इसके लिए 25 जून तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए जा सकते हैं। गेम्स में 15 से अधिक खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इनमें टीम और व्यक्तिगत दोनों प्रकार की स्पर्धाएं शामिल होंगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी उदयपुर है। इस वक्त दिन का 1:05 हुए हैं। हमारी बहनों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

0: ज़िंदगी की राहों में बहुत से मुसाफिर मिलेंगे, ज़िंदगी की राहों में बहुत से मुसाफिर मिलेंगे, कुछ साथ निभाएंगे तो कुछ बहुत दूर निकलेंगे। पर जो हर हाल में थाम ले तुम्हारा हाथ, समझ लेना वो सच्चे दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ चलेंगे। जी हाँ सखियों, आपको समर्पित इन चंद पंक्तियों के साथ हम आगाज़ करते हैं आपके चहेते कार्यक्रम महिला जगत का आकाशवाणी उदयपुर से। मैं आपकी रेडियो सखी प्रीति भटनागर और मेरे साथ हैं
1: पूनम मुथा।
0: तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: और पूनम बताओ कैसी हो?
1: बहुत ही अच्छी हूँ। और आज तो हम खास क्या बातचीत करने वाले हैं हमारे श्रोता बहन से?
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो सखियों, जैसा कि अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है और जहाँ तक कि सवाल आता है कि हम हैं महिलाएं और महिलाएं हैं तो महिलाओं का कहना चाहिए कि सोचना बिल्कुल स्वाभाविक सा है कि इस गर्मियों के मौसम में जो है किस तरह से क्या बनाएं, क्या खिलाएं, किस तरह से अपने परिवार का ध्यान रखें। और वैसे भी पूनम, आज का जो दिन है उस दिन तो हम, मुझे नहीं लगता है कि इस चीज़ को

0: तो सखियों, जैसा कि अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है, और जहाँ तक कि सवाल आता है कि हम हैं महिलाएं, और महिलाएं हैं तो महिलाओं का कहना चाहिए कि सोचना बिल्कुल स्वाभाविक सा है कि इस गर्मियों के मौसम में जो है किस तरह से क्या बनाएं, क्या खिलाएं, किस तरह से अपने परिवार का ध्यान रखें। और वैसे भी पूनम, आज का जो दिन है उस दिन तो हम, मुझे नहीं लगता है कि इस चीज़ को छोड़ सकते थे खाने पीने से रिलेटेड,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: है ना? तो आज क्या खास दिन है पूनम?
1: बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं के हाथों में हुनर का तो जादू है। अब खुद की पहचान बनानी है, स्वाद भी होगा, शुद्धता भी होगी, और गृहिणियों ने अब अपना किस्मत खुद सजानी है।
0: बिल्कुल
1: तो हम गृहिणियों की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की। तो जो खाद्य सुरक्षा दिवस है, जो कि हर साल 7 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, ताकि सुरक्षित भोजन के महत्व और खाद्य जनित रोगों की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। और ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित और विश्व संगठन, स्वास्थ्य संगठन और FAO के संयुक्त नेतृत्व में मनाया जाने वाला दिवस इस बात पर भी जोर देता है कि खाद्य सुरक्षा उत्पाद जो है वो उपभोक्ताओं तक ले जाना सभी की जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल सही। इसका जो प्रस्ताव पास हुआ था वो 2018 में हुआ था सखियों, और उसके बाद यह पहली बार 2019 में मनाया गया था। इसका उद्देश्य, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, असुरक्षित भोजन से होने वाले जोखिमों को रोकना, उनके लक्षणों की पहचान करना और खाद्य सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है एवं कार्यवाही के लिए प्रेरित करना है। वैसे भी हमने देखा है ना पूनम कि गर्मियों का सीजन तो चल ही रहा है, लोग जब कभी भी क्या होता है कि बाहर घूमने के लिए निकलते हैं,
1: बिल्कुल
0: है ना, और खाने पीने का कहते हैं ना, कहीं भी कुछ भी खा लिया इच्छा हो रही होती है, तो ऐसे के अंदर जो है उनको बीमारियां वगैरह होना बहुत लाजमी सी बात होती है। तो ऐसे में जो है आज हम विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के जरिए जो है उन तक ये संदेश पहुंचाना चाहेंगे।
1: बिल्कुल प्रीति। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का 2026 का जो विषय है, जिसको हम थीम की बात करेंगे, तो बोझ से समाधान तक, हर जगह सुरक्षित भोजन, मतलब कि असुरक्षित भोजन से उत्पन्न वैश्विक स्वास्थ्य बोझ को समझने और बीमारी की रोकथाम के लिए विज्ञान आधारित समाधान लागू करने पर भी केंद्रित है। तो अगर हम देखते हैं, प्रतिवर्ष 6 करोड़ खाद्य जनित रोगों के मामले सामने आते हैं, और इस अभियान का उद्देश्य भी आपूर्ति श्रृंखला से हर चरण में, खेत से लेकर मेज तक, और खाद्य सुरक्षा उपायों को मजबूत करना होता है। तो जैसा कि हम अगर बात करें, तो खाद्य पदार्थों के सुरक्षित प्रबंधन के बारे में भी जन जागरूकता बढ़ाना है। इसके बाद सरकारों, व्यवसायों और उपभोक्ताओं को मजबूत खाद्य सुरक्षा उपायों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। और इसके अलावा कोडेक्स एलमेंट्रियस मानकों और राष्ट्रीय खाद्य नियंत्रण प्रणालियों को उसके कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। इस तरह की बात हमको आगे करनी है।
0: बिल्कुल, यह वार्षिक अभियान जो है सखियों, हर साल 7 जून को विश्व स्वास्थ्य संगठन और खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा संयुक्त रूप से मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जो है वैश्विक भूख से निपटना और खेतों से लेकर हमारी थाली तक हर स्तर पर भोजन बनाए रखने का संदेश देना है, क्योंकि स्वच्छ और पौष्टिक भोजन अच्छे स्वास्थ्य और मानव जीवन की बुनियादी आवश्यकता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि सभी के लिए सुरक्षित और पर्याप्त भोजन सुनिश्चित करता है, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है। फिर खाद्य जनित बीमारियों के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान को रोकता है, और सतत कृषि और सार्वजनिक स्वास्थ्य का समर्थन भी करता है। और अगर हम बात करें, तो खाद्य पदार्थों में संदूषण, स्वच्छता और उनके प्रबंधन संबंधी प्रथाओं के बारे में वैश्विक जागरूकता को बढ़ावा देना है।
0: बिल्कुल, क्योंकि सखियों दूषित भोजन से जो है कई प्रकार की बीमारियां होती है, तो उनसे बचाना और मानव स्वास्थ्य, साथ ही साथ कृषि और सतत विकास को इसके जरिए जो है हम बढ़ावा दे सकते हैं। तो
1: तो
0: आज जो इस दिवस हम मनाने जा रहे हैं उसके बारे में काफी सारी जानकारी हमने ली है। तुम कुछ कहना चाह रही हो पूनम? बिल्कुल
1: बिल्कुल, अगर हम बात करें, तो खाद्य सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है, और हम कह सकते हैं कि आज सुरक्षित भोजन तो कल स्वस्थ जीवन है। और खेत से लेकर थाली तक, हर कदम पर सुरक्षा सुनिश्चित करें। सुरक्षित भोजन पद्धतियों से अपने परिवार की रक्षा करें, संक्रमण को रोकें, स्वास्थ्य को बढ़ावा दें। तो हम आप श्रोता बहनों को यही बोलना चाहेंगे कि जैसे कि अभी गर्मी है, और गर्मी के बाद अभी बारिश भी चालू होने वाली है, तो धीरे धीरे हमारा जो स्वास्थ्य है, मतलब हम जो खाएंगे उसी से हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन की समस्या भी आमजन को होती रहती है। तो स्पेशली इन दो मौसम में खाने का ध्यान रखें, और स्वस्थ भोजन लें, पौष्टिक भोजन लें, और अपना ध्यान रखें।
0: बिल्कुल, तो काफ़ी सारी बातें हुई हैं सखियों, और वक्त हो चला है हमारे एक बहुत खूबसूरत से गीत को सुनने का।

0: और सुनो, एक और नियम है।
1: वो क्या है मम्मी जी?
0: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
1: आम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: तो सखियों, एक बार फिर से चलेंगे हम अपने कार्यक्रम की ओर। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आज विश्व खाद्य दिवस है, तो खाद्य दिवस की जहां हम बात कर रहे हैं, तो महिलाओं के लिए जो एक जायज सी बात है, किचन के अंदर तो हम अपना काम करते ही करते हैं, लेकिन यहां जो है हम महिलाओं का ध्यान एक तरफ और आकृष्ट करना चाहेंगे सखियों। जैसा कि खाद्य के जरिए जो है हम लोग जो है अपनी आर्थिक उसको भी बढ़ा सकते हैं, आय को
1: बढ़ा सकते हैं।
4: जैसे तो बात करना चाहेंगे सखियों हम आज आपसे कि गृहिणियों द्वारा खाद्य प्रसंस्करण कैसे किया जा सकता है।
1: बिल्कुल, तो इसके लिए हम पारंपरिक घरेलू कौशल से लेकर एक सशक्त लघु व्यवसाय तक विकसित हो चुका है अगर हम बात करें तो। और यह कृषि उत्पादों के मूल्यवर्धन वैल्यू एडिशन जिसकी हम बात करते हैं द्वारा उनकी बर्बादी को रोकता है, शेल्फ लाइफ बढ़ाता है और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाता है। तो अगर हम बात करें कि प्राइमरी प्रोसेसिंग की, अगर पारंपरिक उत्पाद की, तो महिलाएं अचार, पापड़, बड़ी, मुरब्बा, चटनी, मसाले, गृह उद्योग, ऐसी कई चीज़ें जो आजकल महिलाएं करती हैं अपनी हॉबीज़ के अकॉर्डिंग, यह प्रक्रिया सदियों से भारतीय रसोई का हिस्सा रही है, तो उससे भी कर सकती है। अगर हम वैल्यू एडिशन की बात करें तो मौसमी फल जैसे हो गए कि जैम, जेली, स्क्वैश, बेकरी उत्पाद, कुकीज़, केक बनाना, ये सारी चीज़ें भी वो कर सकती हैं।
4: बिल्कुल, लेकिन पूनम पता है यहाँ मुझे एक जो शब्द था वो दिमाग में बैठा था कि लोगों, मतलब जो है हमारी सखियाँ जो सुन रही हैं, ये प्रसंस्करण है ना, तो उसको लेकर के भी कई बार हो जाता है कि ये क्या चीज़ है।
1: बिल्कुल,
4: तो फूड मिला के फूड प्रोसेसिंग है ना, तो ये मुझे लगता है कि सखियों के लिए बहुत आसान सा शब्द हो जाएगा। तो वैसे तो देखा जाए कि जो है हम जो है फूड प्रोसेसिंग डेली भी करते हैं, और कृषि उत्पादों को खाद्य पदार्थ के रूप में बदलना या खाद्य पदार्थों को एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, सिंपल सी बात है कि आटे के द्वारा रोटी बनाना अगर हम बात करें तो वो भी एक फूड प्रोसेसिंग का ही जरिया है। तो इसको आप ऐसे आसानी से समझ सकते हैं जैसे अनाज को पीस करके आटा बनाना और आटा वगैरह लेकर के उसके बाद में जो है दूसरी चीज़ों को मिला करके अपना खाना पकाना। तो गृहिणियों का जो प्रमुख उद्देश्य है, घर में उपलब्ध मौसमी कच्चे माल जैसे कि फल, सब्जियाँ, अनाज हैं, उनको एक तो सुरक्षित रखना, वो भी
1: जैसे कि
4: आता
1: तुम
4: है।
1: बोल रही हो कि सुखाना, जो सब्जियां हम सुखा के रखते हैं ना 12 महीनों की,
4: फिर उनको हम आगे यूज कर सकते हैं, मतलब मिला के उनकी जीवन अवधि को बढ़ा देते हैं हम लोग, है ना। तो जब सीजन नहीं होता है तब भी उस चीज को हम काम में लेते हैं। और वैसे ना पूनम, ये बहुत पुराने जमाने से होता आ रहा है,
1: पुराने जमानों से हो रहा है और अभी भी हम ये सारी चीजें करते हैं, और वो चीजें और ज्यादा अच्छी भी लगती है जो कि हम फ्रेश सब्जी खाते हैं उससे भी ज़्यादा अच्छी वो लगती है।
4: हाँ, हमारी दादी नानी जो थी वो भी जो है पहले सब्जियों वगैरह को सुखा देती थी, धूप वगैरह के अंदर भी सुखा देते थे, उनके ऊपर ऑयल वगैरह लगा के, जैसे दाल को भी जो अगर साल भर के लिए तैयार करना होता है तो उसके अंदर हम जो है उसके ऊपर तेल का लगाते हैं, लेप लगाते हैं और साथ ही साथ नमक वगैरह लगा करके छोड़ देते हैं। तो ये सब चीज़ें भी जो है सखियों खाद्य प्रसंस्करण का ही एक नमूना है। बिल्कुल।
1: तो खाद्य पदार्थ को सुखाना, डिब्बाबंदी जो चीजें होती हैं, हम डिब्बाबंद रख लेते हैं ना आजकल, जैसे मटर हो गई, फली हो गई, मिर्ची, ऐसी बहुत सारी भिंडी, ऐसे बहुत सारी सब्जियां हम सुखाते हैं और फिर बाद में बनाते हैं। फिर हम कुछ बात करें तो फर्मेंटेशन की बात कर सकते हैं। फिर ऐसी कई तकनीक हैं जिसका हम उपयोग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भर तो बनाती है, महिलाओं को स्वरोजगार प्राप्त करती, मतलब देती है, और पारिवारिक आय में महत्वपूर्ण योगदान भी दे सकती है। और अगर हम बात करें रेडी टू ईट या रेडी टू कुक की बात, तो शहरी क्षेत्रों में भारी मांग है जो कामकाजी लोगों के लिए सुविधाजनक भी होती है, तो इसमें समय की बचत भी होती है और सुविधा भी आसान होती है।
4: बिल्कुल, तो खाद्य प्रसंस्करण के लिए जो है बहुत आसान तरीके हैं, जैसा कि पूनम तुमने बताया, सबसे पहले जो है हमारे पास जो भी कच्चा माल होता है उसको हम बहुत अच्छी तरह से हमें साफ कर लेनी चाहिए। जैसे अगर दालों की बात करें तो कंकड़, मिट्टी, पत्थर वगैरह जो है उनको अच्छे से निकाल करके, या कोई फल फ्रूट की बात करें तो सड़ा गला हिस्सा जो है उसका बाहर निकाल दें, उनको बहुत अच्छे से धोना चाहिए। साथ ही साथ फिर उन उत्पादों को जो है छील कर, काट कर छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर हम रख सकते हैं ताकि सुखाने की या पकाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत इजीली हो जाए। जब बड़ा पीस होता है तो मुश्किल से सूखता है, वही छोटे पीस में हम उसको इजीली कर सकते हैं। बिल्कुल, और उसके बाद अगर हमें प्रिजर्वेशन उसका करना है तो उसके लिए भी जो है हम उसको धूप में भी सुखा सकते हैं, जैसे हम अमचूर भी बनाते हैं, है ना, कई बार लोग मेथी भी सुखाते हैं, पालक का पाउडर भी करते हैं, जैसा तुमने बताया था पापड़, वड़ी वगैरह भी बनाते हैं, अचार भी बनाते हैं। साथ ही साथ सुखाने का काम करना है, साथ में चीनी और नमक लगा करके जो है बैक्टीरिया को रोक सकते हैं हम, जो कि उसके अंदर बैक्टीरिया फैलते हैं। और खमीर उठा करके तो सखियों हम डेली अपने किचन में करते ही हैं,
1: बिल्कुल
4: है ना, बेटर ये बेटर वगैरह बनाते हैं सारा इन चीज़ों का, और ढोकला वगैरह जो बनाते हैं। और उसके अलावा जो है

0: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं, ओ जैसे UPI से।
1: अच्छा।
0: हाँ।

0: पाश्चुरीकरण के द्वारा भी जो है मतलब तरल पदार्थों को उच्च तापमान पर गर्म करके तुरंत ठंडा करते हैं, जिससे कि हानिकारक जो बैक्टीरिया होते हैं खत्म हो जाए, जो हमारे गर्मी में स्पेशली काम आ रहा है, दूध जो कि हम किचन के अंदर गर्म करते
1: हाँ
0: हैं, दिन में 3 बार गर्म करते हैं ताकि वो खराब
1: नहीं
0: नहीं
1: हो,
0: होता है।
1: बिल्कुल। तो जो प्रीति अभी तुमने बात बताई, इस पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो घर पर बने खाद्य पदार्थ, तो जो मात्रा होती है प्रिजर्वेटिव्स की मात्रा
0: हाँ
1: कम होती है,
0: बिल्कुल।
1: जो मतलब हमारे परिवार के लिए और हमारे समाज के लिए अगर हम सेल भी करते हैं तो स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है।
0: बिल्कुल।
1: और गृहिणियाँ सरकारी योजनाओं के तहत प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकती है, जैसे कि कृषि विज्ञान केंद्र हो गया, स्थानीय कौशल विकास केंद्र हो गए, वहाँ से वो प्रशिक्षण प्राप्त कर सकती है कि ये सारी चीज़ें कैसे बनाएं। और इसमें महिला सशक्तिकरण की बात होती है कि ग्रामीण और शहरी महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने में उनको सशक्त बनाती है। और
0: बिल्कुल।
1: यदि आप ऐसे व्यवसाय शुरू भी करना चाहती हैं तो आपको सबसे पहले अपना फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा कि
0: हाँ
1: किसी भी खाद्य उत्पाद को बेचने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का लाइसेंस अनिवार्य है। और अगर हम ब्रांडिंग और पैकेजिंग की बात करें तो आकर्षक और सुरक्षित पैकेजिंग उत्पादों की बाजार में मांग बढ़ाती है।
0: बिल्कुल सखियों, साथ ही साथ खाद्य प्रसंस्करण के जो कुछ लाभ भी होते हैं, जैसे कि हम बर्बादी को रोक सकते हैं, है ना।
1: बिल्कुल
0: मौसम में एक सीज़न होता है, उस सीज़न के अंदर कई बार ऐसा होता है कि एक जो चीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा उगती है ना, जो कि इतनी उसकी खपत नहीं होती है। तो ऐसे में जो है हम जो है उसको प्रसंस्करण करके, उसको जो है प्रोसेसिंग में डाल करके ख़राब होने से बचा सकते हैं और बाद में जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ उनकी जो लाइफ होती है, जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं 4 दिन में 6 दिन में, वो हम उसको लंबे समय तक यूज़ ले सकते हैं। और बात करेंगे वित्तीय लाभ की, तो कच्चे माल की तुलना में जो है प्रोसेस्ड जो हमारे उत्पाद होते हैं उनकी कीमत बाजार में काफ़ी अधिक होती है। तो मतलब हम कम पैसा लगा करके ज़्यादा आर्थिक मुनाफा ले सकते हैं काफ़ी। मतलब महिलाओं के लिए तो कहना चाहिए कि खाद्य प्रसंस्करण जो है एक तरह से बहुत ही अच्छा
1: अच्छा
0: फायदेमंद मतलब
1: फायदेमंद
0: बिजनेस हो
1: है।
0: सकता है। और जैसे कि हम बात कर रहे थे, तो महिलाएं जो हैं स्वयं सहायता समूह सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना का लाभ भी उठा सकती हैं। इसके तहत जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग शुरू करने के लिए ऋण और साथ ही साथ जो है तकनीकी प्रशिक्षण की सुविधा भी महिलाओं को मिलती है।
1: बिल्कुल, इसमें सब्सिडी और ऋण प्रदान करता है। तो श्रोताओं बहनों की मैं आपको बताऊंगी कि आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है,
0: हाँ
1: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, इसके लिए आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है अधिकतम। और आवेदन हेतु निःशुल्क सहायता होती है, ट्रेनिंग की भी सहायता, इसमें तकनीकी सहायता भी मिलती है और इसमें 35% सब्सिडी भी मिलती है। तो अगर आप इस अधिकतम जानकारी के लिए आप संपर्क करना चाहते हैं तो आप कृषि उपज मंडी में संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो PMFMERSAMB.rajasthangovernment.in पे भी संपर्क कर सकते हैं। और ये किसके लिए मिल सकती है, जैसा कि अभी हमने सारी बात करी कि फलों और सब्जियों के उत्पाद कुछ भी होगा, चाहे टमाटर सॉस बनाना हो, जैम बनाना हो, जूस बनाना हो, चिप्स बनानी हो, या कोई तेल की मशीन आपको लगानी हो, जैसे मूंगफली, सोयाबीन तेल, सूरजमुखी तेल, ऐसा हो गया, या फिर बेकरी उत्पाद हो गए, बेकरी उत्पाद के लिए हम जो भी कुकीज़ केक बनाते हैं, फिर अनाज और दालों के उत्पाद जो बनते हैं आजकल, कि हम उसकी बड़ी बनाएं, या सोयाबीन पनीर, टोफू, मूंगफली चिक्की, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। फिर पशु आहार की बात करें तो पशु आहार, मछली आहार, मतलब ये बहुत सारी चीज़ें होती है।
0: हाँ
1: इसके अलावा खाद्य उत्पाद भी होते हैं, साबुदाना, हींग, मतलब इन चीज़ों के लिए भी ऋण मिलता है। फिर दुग्ध उत्पाद की बात करें तो मिल्क, आइसक्रीम हो गया, पैक दूध हो गया, घी हो गया, छाछ हो गई, दही हो गया, इन सब के लिए भी इस योजना के तहत हम लोन ले सकते हैं, ऋण ले सकते हैं। और इसके लिए आपको आवश्यक दस्तावेज की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आपका स्वयं का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगता है, आधार और पैन कार्ड की कॉपी लगती है, आपका पते के सबूत सबूत के तौर पे उपयोगिता बिल, पानी का बिल वो लगता है, पिछले 6 महीने का आपका बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक की कॉपी लगती है। और अगर आपको CA के सहयोग से या DRP के सहयोग से लेना है तो पंजीकरण प्रमाण पत्र लगाना होता है, उद्यम आधार लगाना पड़ता है और प्रस्तावित उद्योग के लिए मशीनरी के कोटेशंस लगाने होते हैं। तो इस तरह से आप जानकारी ले सकते हैं, वेबसाइट के द्वारा भी ले सकते हैं और इस ऋण का लाभ भी ले सकते हैं।
0: तो बहुत सारी जानकारी हमने सखियों को दे दी है और काफ़ी मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज्ञानवर्धक के साथ साथ उनके लिए बहुत ही फायदेमंद भी रहने वाली है। तो सखियों, काफ़ी बातें हो चली हैं, चलेंगे संगीत की ओर और सुनेंगे एक खूबसूरत सा नगमा।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे कि महिलाओं की, जैसे कि हम महिलाओं की अभी बात कर रहे थे कि महिलाएं हर फील्ड में आत्मनिर्भर तो है, अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि वो हम घर बैठे भी कितनी सारी चीज़ें कर रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं, अपना स्वरोजगार उनको मिल रहा है, तो उसी तरह से महिलाएँ पुस्तक लेखन और साहित्य में भी योगदान दे रही है। तो नारी के योगदान का मूल्यांकन साहित्य में करना हो अथवा किसी अन्य क्षेत्र में, तो वो किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है और आज सभी क्षेत्र में नारी ने पुरुष से साझेदारी निभाई है।
1: बिल्कुल, साहित्य में भी अगर बात करते हैं ना पूनम हम, तो महिलाओं की भागीदारी जिस तेजी से हो रही है और जो नारी अभिव्यक्ति उजागर हो रही है उसमें हैरान होने जैसी कई अभिव्यक्तियां भी सामने आ रही हैं। मतलब उनका इफेक्ट इतना अच्छा जाता है, रिजल्ट जो है वो बहुत पॉजिटिव रहता है।
0: तो सदियों से हाशिए पर रहने के बावजूद भी महिला लेखिकाओं ने रूढ़ियों को तोड़ा है और अपनी लेखनी से समाज, संस्कृति और स्त्री चेतना को नई दिशा दी है और अपनी बुलंद आवाज और सशक्त भावनाओं को शायरी व कविताओं में भी पिरोया है कि कलम थामी तो गगन चूम लिया, कलम थामी तो गगन चूम लिया, हर लफ्ज़ में एक नया नूर दिया, किताबों में पिरो कर जज्बात अपने, नारी ने खुद को ही एक मुकम्मल जहां दे दिया।
1: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं। तो सखियों, आज़ादी की लड़ाई के समय से जो स्वर साहित्य में उभरा उसमें देशकालिक परिस्थितियां और देश प्रेम की स्पष्ट अभिव्यक्ति जो है दिखाई दी थी। साथ ही साथ हम बात करेंगे तो सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सरोजनी नायडू, उषा देवी मित्रा आदि कई लेखिकाओं ने अपनी अपनी अभिव्यक्ति दी थी और उनके सशक्त लेखन का योगदान जो है हिंदी साहित्य को प्राप्त हुआ है।
0: बिल्कुल, और उन्होंने अपनी रचनाओं में भक्ति प्रेम और राष्ट्र प्रेम की सशक्त अभिव्यक्ति भी की है, जैसा कि अभी तुमने बोला कि मीराबाई हो गई, महादेवी वर्मा हो गई, सुभद्रा कुमारी चौहान जैसी कई कवियत्री ने साहित्य को समृद्ध किया है। और अगर हम बात करें महिला लेखिकाओं ने साहित्य के माध्यम से समाज में महिलाओं की वास्तविक स्थिति, उनकी समस्या, उनके संघर्ष को भी उजागर किया है और उन्होंने स्त्री विमर्श को मुख्य धारा से लाकर ऐसी सोच को चुनौती दी है जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है।
1: बिल्कुल, स्वतंत्रता के बाद जो है नारी लेखन में मुक्ति के स्वर उभरे और नारियों ने अपनी पारंपरिक छवि को तोड़ा और नारी ने ही नारी की पीड़ा को शब्द दिए। महिला लेखन में राजनीतिक विचारधारा का प्रभाव कम दिखता है और आलोचना का प्रभाव भी कम है। साहित्य में नारी लेखन के सार्थक योगदान को नकारा नहीं जा सकता है।

0: अपने सीमित दायरे में अपने अनुभवों को व्यक्त करना, नारी लेखन आज से 2-4 दशक पहले से जो पारिवारिक परिस्थितियों में बदलाव आए हैं उनको भी स्पष्ट करता है।
1: बिल्कुल, और 21वीं सदी में महिला लेखन केवल घरों या पारिवारिक मुद्दों तक सीमित नहीं थी, लेकिन आज की महिला लेखिकाएं राजनीति, विज्ञान, फिक्शन और सामाजिक समस्याओं जैसी विविध विषयों पर भी पुस्तकें लिख रही है, और उनका यह प्रयोगात्मक लेखन साहित्य में नए आयाम जोड़ रहा है।
0: सही है पूनम, हिंदी साहित्य में नारी जागरण की शुरुआत भक्ति काल से ही मानी जाती है। छायावाद काल से हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श का जन्म माना जाता है। महादेवी वर्मा की जो रचना श्रृंखला की कड़ियां नारी सशक्तिकरण का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है, और खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, उनकी कविताओं में नारी की पीड़ा, संघर्ष और आत्मनिर्भरता का चित्रण भी देखने को मिलता है।
1: बिल्कुल, और ऐतिहासिक रूप से अगर पुरुष प्रधान समाज में महिला लेखिकाओं को अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए भारी सामाजिक और पारिवारिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, तो इसके बावजूद भी उनकी कलम से अपनी पहचान बनाई और साहित्य के कैनवास को विस्तृत किया है। तो महिलाओं के साहित्यिक योगदान समाज में जागरूकता लाने और लैंगिक समानता की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।
0: बिल्कुल, महादेवी वर्मा की जो हम बात कर रहे हैं तो इन्हें जो है हिंदी साहित्य की मीरा के नाम से भी पुकारा जाता है। यामा, दीपशिखा और नीरजा जैसी रचनाओं के माध्यम से इन्होंने वेदना और करुणा के उत्कृष्ट स्वर प्रदान किए थे। और अमृता प्रीतम की बात करें तो उनकी रचनाओं में महिलाओं की स्वतंत्रता, आत्मबोध और आंतरिक द्वंद्व का यथार्थ चित्रण देखने को मिलता है।
1: बिल्कुल, और अगर हम बात करें कि महिला लेखिकाओं की कहानी, उपन्यास और कविताओं ने समाज का आईना तो दिखाया, तो अगर हम बात करें मनु भंडारी जी की, तो उनके उपन्यास जैसे आपकी बंटी और महाबोध समाज और पारिवारिक संरचना में महिलाओं की स्थिति की गहराई को उजागर किया है।
0: बिल्कुल, तो कुल मिलाकर के सखियों हम ये कहना चाहेंगे कि जो है महिलाओं का जो है बहुत ही कहना चाहिए अमूल्य योगदान जो है साहित्य के अंदर है, है ना?
1: बिल्कुल, तो साहित्य के दर्पण में झांका तो रूप निखरा, हर पंक्ति में नारी का स्वाभिमान है बिखरा,
0: जुल्मों को मिटाकर जो नई इबारत लिखी वही कलम आज स्त्री की सबसे बड़ी पहचान है।
1: बिल्कुल, तो श्रोताओं बहनों, स्त्री की पहचान हमने बताई है, और
0: इस वक्त सुनने का समय हो गया है एक बहुत खूबसूरत से नगमे का।

0: बहुत ही खूबसूरत सा नगमा हम सुन रहे हैं। साथ ही साथ जैसा कि हम महिलाएं हैं सखियों, तो कहते हैं ना किचन में जाए बिना नहीं रह सकते। तो अभी जो सीजन चल रहा है
1: मैंगो का सीजन चल रहा है,
0: बिल्कुल, तो मैंगो जो है एक बहुत ही स्वादिष्ट और ठंडा समर डेजर्ट बनाता है ना,
1: बिल्कुल।
0: तो आज हम बताएंगे आपको मैंगो आइसक्रीम फलूदा के बारे में।
1: मैंगो आइसक्रीम फलूदा ना, तो इसे ताजे आम के पल्प और दूध, फलूदा, सेब, सब्जा के बीज और आम या वनीला आइसक्रीम की परतों के साथ आसानी से बना सकते हैं,
0: बिल्कुल।
1: तो इसके लिए हमें चाहिए होता है कि 2 पके हुए आम चाहिए होते हैं, 3-4 स्कूप मैंगो आइसक्रीम चाहिए होती है, 1 कप उबली हुई फलूदा सेब चाहिए होती है, 2 छोटे चम्मच पानी में भीगे हुए सब्जा के बीज और 1.5 कप ठंडा दूध, 2 छोटे चम्मच चीनी और 2 बड़े चम्मच रूह अफ़ज़ा। ऑप्शन के लिए अगर आप डालना चाहें तो गार्निश के लिए बारीक कटे हुए, आप अगर ड्राई फ्रूट्स या टूटी फ्रूटी भी डालना चाहें तो। सबसे पहले सब्जा के बीजों को 1/4 कप पानी में 15 मिनट के लिए भिगो दें ताकि वे फूल जाएं, और फलूदा सेब को पानी में उबालकर छान लें और ठंडा होने दें, और एक आम को मिक्सी में पीस कर स्मूथ पल्प प्यूरी बना लें और दूसरे आम को छोटे चौकोर में टुकड़ों से काट लें,
0: बिल्कुल। उसके बाद सखियों मैंगो मिल्क तैयार करना है। एक बाउल में ठंडा दूध लें, इसमें आम का पल्प और चीनी मिलाएं और अच्छे से फेंट लें। एक गाढ़ा और स्वादिष्ट मैंगो शेक तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो है एक लंबा और पारदर्शी ग्लास ले लें, उसमें नीचे 1 बड़ा चम्मच भीगे हुए सब्जा के बीज डालिए। अब इसमें 2-3 चम्मच उबली हुई फालूदा सेव डालिए और उसके ऊपर आम के कटे हुए टुकड़े डालें और इसमें तैयार किया हुआ मैंगो मिल्क डाल दीजिए और इसके ऊपर जो है 1 या 2 स्कूप मैंगो आइसक्रीम रखें और लास्ट में जो है आप इसके ऊपर कटे हुए काजू, बादाम, पिस्ता और टूटी फ्रूटी से सजाएं। चाहें तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा भी डाल सकते हैं और ठंडा ठंडा खाइए और अपनी फैमिली को भी खिलाइए। तो ये तो हो चली बात बहुत ही अच्छी हमारी जो है किचन से रिलेटेड। हवा में खुशबू हो ऐसा मौसम कभी कभी आता है, दोस्त ऐसा हो जो हर पल चेहरे पर मुस्कान लाता है, दिल के रिश्ते तो ऊपर वाला ही बनाता है, इसलिए हम जैसे दोस्त को कभी कोई दूर नहीं कर पाता है। बिल्कुल सखियों, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे एक बार फिर से मिलने का वादा करते हुए लेंगे हम आपसे विदा। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।

हमारी बहनों ने अभी सुना कार्यक्रम महिला जगत, ये आकाशवाणी उदयपुर है। दिन का 1:46 हुए हैं दोस्तों। आइए एक बार फिर आपको लिए चलते हैं फिल्मी गीतों के सफर में। इस सफर का आगाज जो है हम कर रहे हैं क्रांति फिल्म के गीत के साथ, लता मंगेशकर, नितिन मुकेश और साथियों की आवाज़।

0: दोस्तों, फिल्मी गीतों के इस सफ़र में आप हैं आकाशवाणी उदयपुर के साथ, और कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवा रहे हैं ज़माने को दिखाना है फिल्म का गीत, आरडी बर्मन और साथियों की आवाज़।
1: लैला मजनू, शीरी फरहा, ही रांझा,

की आग में जल मरने वालों के, मगर अफसोस आज की दुनिया में मजनू फरहा रांझा तो है, मगर लैला नहीं, शीरी नहीं, हीर नहीं। लेकिन दोस्तों आशिक फिर भी आशिक है, और वो आज की बेवफा लैला जो उसकी नजरों के सामने है, एक ही बात कहना चाहता है, बोलिए क्या।

Thank you.

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, कार्यक्रम में आइए, अब आपको सुनवाते हैं सौतन फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़।

दोस्तों, आज के फिल्मी गीतों के इस सफ़र का आखिरी नगमा आप सबके नाम कर रहे हैं। नसीब फिल्म का गीत है और आवाज़ लता मंगेशकर की।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज के फिल्मी गीतों के इस सफर को बस यहीं विराम देते हैं। ये आकाशवाणी उदयपुर है। आइए कार्यक्रम विकास चर्चा में अब आपको जानकारी देते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम योजना के बारे में। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम NMFDSC का जो निगमीकरण है वो 30 सितंबर 1994 को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत लाभ निरपेक्ष कंपनियों के रूप में किया गया था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अधिनियम 1992 में परिभाषित अल्पसंख्यकों के विकास के लिए ये निगम राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष संस्थाओं के रूप में कार्यरत है। NMDFC का मुख्य अधिदेश जो है वो अल्पसंख्यकों को स्वरोजगार या फिर आय सृजन गतिविधियों के लिए रियायती दर पर ऋण प्रदान करना है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अधिनियम 1992 के अनुसार अधिसूचित अल्पसंख्यक मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी, बाद में जनवरी 1914 में जैन समुदाय को भी अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय की सूची में शामिल कर दिया गया था। NMDFC के ऋण कार्यक्रमों के तहत कारीगरों और महिलाओं को तरहीज दी जाती है। और अगर हम बात करें NMDFC द्वारा संचालित मुख्य योजनाओं की, तो इसमें कई सारी छोटी छोटी योजनाएं शामिल हैं, जैसे कि टर्म लोन योजना, महिला समृद्धि योजना, माइक्रो फाइनेंस योजना और शिक्षा ऋण यानी एजुकेशनल लोन भी इसमें आता है। तो अगर टर्म लोन योजना की बात करें तो इसका उद्देश्य छोटे व्यवसाय, कृषि, परिवहन जैसे कि कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें स्वरोजगार के अवसर जो हैं वो लोगों को दिए जाते हैं। और इसमें आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में तो 98,000 सालाना और शहरी क्षेत्रों में 1,20,000 सालाना से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऋण की जो सीमा है वो इसके अंदर 20 लाख रुपए तक का ऋण जो है आपको दिया जाता है और ब्याज इस पर आमतौर पर 6% से 8% की दर से ब्याज लगता है। महिला समृद्धि योजना भी इसके अंदर आती है और इसके अंदर अल्पसंख्यक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना जो इसका मुख्य उद्देश्य है। महिलाओं के छोटे समूहों या व्यक्तिगत रूप से सिलाई बुनाई, हैंडीक्राफ्ट आदि के लिए इसके अंदर 1,40,000 तक का ऋण महिलाओं को दिया जाता है। माइक्रो फाइनेंस की बात करें तो इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर छोटे कारीगरों, बुनकरों और दुकानदारों को तुरंत छोटी वित्तीय सहायता इसके अंतर्गत दी जाती है। ऋण की सीमा इसमें स्वयं सहायता समूहों या फिर NGO के माध्यम से प्रति लाभार्थी 1,00,000 रुपये

0: रुपए तक का इसमें ऋण आपको मिल सकता है। एजुकेशनल लोन यानी कि शिक्षा ऋण की बात करें तो इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी छात्रों को उच्च व्यावसायिक या फिर तकनीकी शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। ऋण की सीमा इसके अंदर भारत में पढ़ने के लिए आपको 20 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा और अगर आप विदेश में पढ़ रहे हैं तो 30 लाख रुपए तक का ऋण इसमें शामिल किया गया है और इसमें ब्याज की दर जो है वो बहुत कम होती है और छात्राओं के लिए इसमें विशेष छूट दी जाती है। अब बात करें आवेदन कैसे करना है, तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को सीधे केंद्र सरकार के कार्यालय या ऑनलाइन माध्यम से नहीं जाना होता बल्कि इसे राज्य सरकारों की एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जाता है। राजस्थान में हम बात करें तो राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग या राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त विकास शहरीकरण निगम लिमिटेड में आप जाकर इसके बारे में अधिक जानकारी भी ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। आपको आपके नज़दीकी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पास जाना रहता है और कुछ मुख्य दस्तावेज जो हैं वो इसमें ज़रूरी होते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जो कि आपका माइनॉरिटी सर्टिफिकेट होता है, निवास प्रमाण पत्र और परियोजना या व्यवसाय से संबंधित दस्तावेज भी आपके पास हैं तो वो भी ज़रूरी होंगे। तो इस योजना में अधिक विस्तृत जानकारी और सटीक आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की वेबसाइट पर जाकर अधिक जानकारी ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, कार्यक्रम विकास चर्चा में आज हमने आपको जानकारी दी अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम योजना के बारे में। अब वक्त है हिंदी में समाचारों का हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: मुख्य समाचार। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी, व्यापक रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देशभर में तेज बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में पहली पारी 564 रन पर घोषित की। और अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है और ये मानना होगा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरा करने का उत्सव मनाया है।
2: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक में दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की जाएगी और द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी।
3: भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंध, औपनिवेशिक शासन का साझा अनुभव और स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक संप्रभुता, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा स्वतंत्र विदेश नीति जैसे समान लक्ष्य रहे हैं। समय के साथ दोनों देशों के संबंध राजनीति, अर्थव्यवस्था, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में और मजबूत हुए हैं। जनवरी 2001 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के स्तर पर संयुक्त आयोग की स्थापना हुई। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर साझा दृष्टिकोण को भी

0: अपनाया, जिससे विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को अधिक मजबूती मिली है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया।
2: गृहमंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
1: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम हैं।
3: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष 300 रुपए की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत 942 रुपए है। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई। दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग के प्रमुख चिंतकयाला विजय को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकूला

0: दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स को शामिल किया गया है। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक नए व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है।
1: संघर्ष के 100वें दिन भी होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बना हुआ है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार सेना ने ईरान के 2 हमलावर ड्रोन मार गिराए हैं। शुक्रवार को अमरीका ने ईरान के 4 ड्रोन नष्ट कर दिए थे और ईरान के गोरुक तथा केशम द्वीप स्थित रडार और निगरानी ठिकानों पर हमले किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने शनिवार को कुवैत और बहरीन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। अमरीकी अधिकारियों ने कहा कि अधिकांश मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। इस संकट का असर पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में भी दिखाई दे रहा है। दक्षिणी लेबनान के नबातियेह क्षेत्र के पास इसराइल के एक सैन्य अभियान के दौरान लेबनानी सेना के एक वाहन को निशाना बनाया गया जिसमें सेना के कुछ जवान घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में संघर्ष रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन अभी भी कई बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्चि में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से अपनी पहचान बनाई और 1996 में सिद्दीक शमीर के निर्देशन में फिल्म इष्टमानु नूरुवट्टम से सिने जगत में प्रवेश किया। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता सलीम कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं अभिनेता के परिवार और उनके अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। यह दिवस खाद्य सुरक्षा को एक अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में एक सशक्त अवसर प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान का आग्रह किया। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मॉनसून आगे बढ़ रहा है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देशभर में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति भी बनी हुई है। विभाग के अनुसार मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के शेष हिस्सों, दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, उत्तर बंगाल की खाड़ी और कुछ अन्य इलाकों में अगले 2-3 दिनों के दौरान मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। ये मैच कल गोवा के मडगांव में खेला गया।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत से आने वाले समय में युवाओं को फुटबॉल खेलने की प्रेरणा मिलेगी। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में छठे ओवर में एक विकेट खोकर 28 रन बना लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देशभर में तेज वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी 564 रन पर घोषित कर दी है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी उदयपुर है। इस वक्त दिन के 2:30 हुए हैं। हमारे किसान भाइयों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: राम राम रेखा भैसा, राम राम।
1: राम राम अनीता भैसा, राम राम।
0: और कृषि जगत कार्यक्रम हुआ वाला सब किसान भाई बहना ने भी अपनो राम राम सा। देखो भाई कार्यक्रम रो टेम भी हो और अपना ये देखो ये हरकू भाई नी नान जी नी सोन जी नी देखो आवड़ा री भरी दोपहरी है तो भी देखो अपने कार्यक्रम में इन्हें उपस्थित वे गया है और आवे भी क्यों नहीं। इन सब जना जाने हैं कि भाई देखो आप कार्यक्रम में जावांगा तो भात भात री जानकारी वेगा, चाहे मौसम री वो, खेती बाड़ी री वो, चिकित्सा संबंधी वो, स्वास्थ्य संबंधी वो, कहीं भी प्रकार की कोई भी बातचीत वे तो वह अपने सब जना जो है हलमल ने करा। हाँ सा
1: बिल्कुल हाँ ची बात कह रहा सा। और देखो सा आज आप ही बात करांगा कि कृषि में जो समय रो प्रबंधन वे वो आपने किस तरह करनो चाहे सा।
0: हाँ सा
1: तो देखो सा भारतीय अर्थव्यवस्था में जो कृषि ने आप ही रीढ़ री हड्डी भी माना सा और बदलता मौसम में अंडे साथ में जो सीमित संसाधन है, बाजारी जो अनिश्चितता है, वंडे वच में जो खेती रो एक लाभदायक व्यवसाय बना रहे वास्ते समय प्रबंधन सब महत्वपूर्ण साधन है सा।
0: बिल्कुल सही कह रहा हो। देखो आप किसान री बात में आज यही बात कर रहे हैं। हाँ और देखो कृषि महीने अगर समय प्रबंधन अपना किसान भाई हऊ तरीका करेगा तो देखो सही टाइम पे सही काम रो जो सिद्धांत है कृषि रे महीने सीधा तौर पे देखो फसल री पैदावार और किसान भाई रे वास्ते देखो मुनाफों जो है वो जुड़े तक वे है। कृषि में अगर टाइम रे प्रबंधन रो महत्व री बात करा तो देखो खेती रो जो सीधो संबंध है वो प्रकृति और मौसम चक्र मिल्यो तक है। उद्योगारी तरह देखो खेती महीने उत्पादन री प्रक्रिया ने अपनी मर्जियों आपा न तो रोक सका हाँ न भी ने बढ़ाई सका हाँ। और अगर कहीं भी प्रकार किसान भाई देखो कोई भी बुआई या पचे सिंचाई रे महीने थोड़ा दिन री भी अगर देरी कर देवे तो देखो वना ने भारी भारी नुकसान उठानो पड़ सके है।
1: देखो सा बात करा आपी पैदावार में बढ़ोतरी री तो सही टाइम पे आपी केदी तक की जो भी बुआई है, खाद प्रबंधन है और कटाई फसल री गुणवत्ता और मात्रा दोई में सुधार देखवा मिले सा।
0: बिल्कुल सही कह रहा। और देखो अगर समय प्रबंधन रही बात कर रहे हाँ तो देखो अणी महीने पैदावार में तो बढ़वार वे भी से लार लारे अपने किसान भाई लागत में भी कमी आवे। समय पे देखो कीड़ा है जी बीमारियाँ है वनारी अगर पहचान अपने किसान भाई कर लेवे तो महंगी जी कीटनाशक दवाया है वनारी जरूरत नहीं पड़ेगा जणियों कहिए कि वनारी लागत घटती तक की जाएगा सा।
1: बिल्कुल सा देखो बात करना मौसम

0: जो जोखिम वेवे वणियू भी बचावरी, तो जो बेमौसम वर्षा आई जा या ओलावृष्टि वे या सूखा जैसी जो प्राकृतिक आपदा वेवे, वणियू अपने फसल ने बचावा रे वास्ते भी आपी सही समय पे अगर कोई निर्णय लेनो आवश्यक वे तो आपा ले सका सा।
1: बिल्कुल, देखो रेखा भैया, कृषि में समय प्रबंधन पे आगे और आपा बातचीत भी करांगा, लेकिन आपको तो जटा पेली होना एक राजस्थानी लोकगीत।
0: हाँ सर।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: तो अनीता वैसा है तो हुने हो मनभावन राजस्थानी गीत और लारे लारे संदेश भी। अबे आपने कार्यक्रम ने और आगे बढ़ावा और आप ही बात कर रहे हैं कि भी कृषि में समय हो आप ही प्रबंधन करा तो अपनी खेती बाड़ी में कई फायदों मिली सके सा।
3: बिल्कुल। और देखो अपा कृषि में समय प्रबंधन की बात कर रहे हैं, हाँ तो कृषि चक्र और समय प्रबंधन रे वास्ते देखो सफल समय प्रबंधन रे वास्ते किसान भाइयों रे पास में एक क्रॉप कैलेंडर वेणो जरूरी है। पूरो वर्ष भर देखो वणी मैंने कृषि री जितनी भी गतिविधियाँ हैं वणा ने तीन चरणों में भी विभाजित कर सके है। अगर पहला चरण की बात करा तो देखो बुआई हूँ पहला और बुआई रो जो टेम है यो चरण पूरी फसल पर आधारित वे है और मिट्टी री तैयारी लेने जुताई बीजो उपचार और सही समय पे बुआई करनो अणि चरण रो मुख्य कार्य व्यवसा।
2: बिल्कुल सा। जिस तरह की अगर बात करा कि यदि रबी री फसल है जिस तरह गेहूं री बुआई में अगर देरी वही जावे तो सर्दी रो चक्र छोटो वही जावे और दाना भी छोटा रह जावे सा।
3: बिल्कुल। और फसलारी देखभाल और पोषण री अगर बात करा तो देखो फसल उगवारे बाद महीने टेम पे प्रबंधन री सब ज्यादा परीक्षा वेवे है। पाणादरी बात करा तो देखो फसल री जी क्रांतिक अवस्था वेवे मणि समय पानी देनो बहुत ही ज्यादा जरूरी वेवे सा।
2: देखो सा वंडे साथ में अगर आप ही बात करा खरपतवार नियंत्रण री तो बुवाई पहला 20 से 40 दिना रे भीतर जो भी खरपतवार है विन्हें निकालना जरूरी वेवे, नहीं तो वह जो मुख्य फसल वेवे वंडा सब पोषण तत्व खत्म कर देसा।
3: बिल्कुल। खाद और उर्वरक री अगर बात करा तो देखो पौधा री जरूरत रे अनुसार नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाश रो सही टाइम पे छिड़काव करनो जरूरी है। और फसलारी कटाई रे केड़े अगर वणा रे प्रबंधन री बात करा तो देखो फसल पाकवारे केड़े कटाई में देरी वेवा पे दाना खेत में पड़ सके है या पचे नमी रे कारण खराब भी वे सके है। अंडे बाद में देखो जी भी अनाज है वणा ने हऊ तरीको हुकई ने वणा रो भंडारण करनो टाइम पे वणा ने बाजार ले जानो ताकि आपने किसान भाइयों ने जो है हो बढ़िया दाम मिल सके।
2: बिल्कुल सा। देखो सा अगर खेती बाड़ी में अगर आप ही हर काम टाइम पे करांगा तो आप ही कह सका कि आप ही जो भी फसल ले रहा वह गुणवत्ता युक्त वेगा सा।
3: बिल्कुल सा। और देखो कार्यक्रम में और भी अपने किसान भाइयों लारे जानकारियां साझा करांगा लेकिन आपको तो हुना एक राजस्थानी लोकगीत।
2: हाँ सा।

0: देखो भाई रेखा वैसाई तो सुंदर सो मन भावन आप राजस्थानी गीत हुनियो और देखो अणियो पहला आपने किसान भाया लारे आप कृषि में समय प्रबंधन की बात कर रहा। हाँ और अभी देखो आप किसान भाया लारे आपने किसान भाया ने जानकारी करावा जाने तो ही से पर देखो टेम टेम पे जानकारी देनो वाणा ने सावचेत करनो भी अपनो कर्तव्य है। तो आज आप कार्यक्रम में जानकारी करावांगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना री।
1: बिल्कुल सा देखो सा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की तरफ चलाई तकी एक महत्वाकांक्षी और कल्याणकारी योजना है। अंडो मुख्य उद्देश्य देश रे छोटा और सीमांत किसान जो वे वणा ने प्रत्यक्ष रूप वित्तीय सहायता प्रदान करनो है ताकि वे कृषि जुड़िया तका जतरा भी खर्चा है और अपनी जो दैनिक आवश्यकता है विने अपने आसानियों पूरी कर सके सा।
0: बिल्कुल सही कह रहा हो। देखो योजना री अगर विशेषता री बात और लाभ री अगर बात करा तो देखो अणी योजना रे महीने जी भी पात्र किसान है मनारे परिवार ने हर वर्ष जो है 6,000 रुपया री वित्तीय सहायता दी दी जावे। या राशि अपने किसान भाई रे हिदा वनारे बैंक रे खाता रे महीने सरकार रे अणी ट्रांसफर की दी जावे। अणी वित्तीय लाभ ने देखो 3 समान किस्ता रे महीने विभाजित कीधो गयो है। अगर पहली किस्त की बात करा तो देखो अप्रैल लेने जुलाई रेवज में दी दी जावे, दूसरी किस्त अगस्त लेने नवंबर रेवज महीने और तीसरी जाहेवा दिसंबर लेने मार्च रेवज महीने दी दी जावे सा।
1: बिल्कुल सा या पूरी प्रक्रिया अगर

0: डीबीटी यानी कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण रेट माध्यम पूरी की जावे जण्यू की जो वच्चे आपी के मां बिचौलिया वे वणारी भूमिका समाप्त हुई जावे और भ्रष्टाचार पे भी पूरी तरह लगाम लागे सा।
1: बिल्कुल सही कह रहा हूँ। और अंडरलाल लारे देखो पात्रता और लाभार्थी री अगर बात करा तो देखो कौन तो अंडो लाभ उठाई सके वणारे बारे में अगर बात करा तो देखो शुरुआत में ही यह योजना केवल वणा छोटा और सीमांत किसान मयारे वास्ते ही जनारे पास में दो हेक्टेयर या पचे लगभग 5 एकड़ तकरीजा कृषि योग्य भूमि ही। लेकिन जून 2019 रे महीने सरकार जो है अंडो दायरो बढ़ाई दी दो और देश महीने सब भूमिधारक जतरा भी अपना किसान भाई है वणारे परिवार ने देखो अणि महीने जो है शामिल कर दी दो है। योजना रे महीने किसान परिवार री परिभाषा महीने देखो वनारी पति पत्नी और वनारा जत नाबालिग जी भी बच्चा है वे भी अणि महीने शामिल है।
0: बिल्कुल सा भूमि रे स्वामित्व री बात करा तो राज्य या पछे केंद्र शासित प्रदेश रे जो भू अभिलेख है वनडे आधार पे तय कियो जाएगा सा।
1: बिल्कुल योजना और पात्र अणि योजना महीने कौन कौन पात्र नहीं है अगर वनारे 12 महीने भी किसान भाई ने बतावा तो देखो समाज रा जी आर्थिक रूप संपन्न है जी सरकारी पदा पे बैठा तका लोग है वे अणि योजना रा दायरा हूँ बाने वना ने राख्यो तको है। संस्थागत भूमिधारक री अगर बात करा तो असा संगठन या संस्थान जना रे नाम पे कृषि भूमि है वे भी अणि महीने नहीं आवे सा।
0: बिल्कुल सा संवैधानिक पद धारक जो वे वर्तमान या पूर्व में जो संवैधानिक पद पर रिया तकाई व्यक्ति वे भी अणि योजना रे अंतर्गत शामिल नहीं है सा।
1: बिल्कुल सही कह रहा हो। और लाल लारे देखो सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी केंद्र या राज्य सरकार मंत्रालय कार्यालय विभाग या पचे PSU राजी वर्तमान महीने जी सेवानिवृत्त कर्मचारी है वे भी जो है अंडो लाभ नहीं ले सके है।
0: वनडे साथ में जो उच्च पेंशन भोगी या पचे असा सेवानिवृत्त जन ने मासिक पेंशन 10,000 रुपया या पचे वणियो ज्यादा है तो भी अंडे दायरा में नहीं आवे सा।
1: बिल्कुल आयकर दातारी भी बात करा तो देखो पिछला मूल्यांकन वर्ष महीने आयकर रो भुगतान करवा वाला व्यक्ति भी नहीं आवे अणि योजना रे महीने देखो ग्रामीण और भारत कृषि क्षेत्र में एक व्यापक और सकारात्मक बदलाव लायो गयो है। लागत रे महीने देखो सहायता बुवाई और सीजन महीने चाहे वह खरीफ री सीजन हो चाहे रबी री सीजन हो अणि ठीक पहला मिलवा वाली या जो राशि है वह किसाना ने बीज खाद और कीटनाशक और पाणत जैसी शुरुआती खर्चारे वहन करवा वास्ते दीदी जावे सामनारी मदद रे वास्ते मले है।
0: बिल्कुल सा। और अंडे साथ में अगर आप ही बात करा तो जो भी किसान भाई बहन है वणाने कर्ज रे जालू मुक्ति भी मिले और वणारे आत्मसम्मान आत्मनिर्भरता में भी बढ़वार देखवा अपने मिले सा।
1: बिल्कुल सही कह रहा। और देखो ई सभी जी योजना चली रखी है भारत सरकार आड़ियो अगर आपने किसान भाई है ये हुनेगा और देखो अंडो लाभ लेगा तो देखो वणाने तो फायदो ही फायदो है पैदावार में भी बढ़वार वेगा लागत में कमी भी आएगा। और अगर देखो पात्रता लाभार्थी री भी आपा बात की दी है बतायो है कि जनारे पास में कृषि योग्य भूमि है तो ये सब जना भी है अंडो जो है फायदो ले सके है। और ये सब बात अगर ध्यान रखेगा तो देखो भी फायदो ले सकेगा। और कार्यक्रम में जी बैठा तका है अपने किसान भाई बहन ये भी हूं रहा है कड़े अगर भूली चुकी गया वे नन्नी फायदो ले रहा वे तो भी ले सके है।
0: बिल्कुल सा। और किसान भाई बहन अणि बात रो ध्यान रखेगा और देखो सा अपने कार्यक्रम ने और आगे बढ़ावा और एक मन भावना स्थानीय गीत और हुणई दासा।
1: हाँ सर।

0: तो देखो भाई रेखा भाई सा, यो तो सुंदर सो मन भावन आपा राजस्थानी गीत हुणियो। और अभी देखो किसान भैया लारे अगर कई भी आपा बात साझा करा तो देखो अबार एक खेत बचाओ अभियान चाल रो है। अणि अभियान रे महीने देखो जलवायु परिवर्तन ने अबारा दौर महीने खेतरी मिट्टी ने स्वस्थ बनावा वाते संतुलित पोषक प्रबंध नितान जरूरी वेवे है। जणी महीने स्वस्थ मिट्टी, सुरक्षित पानी और जागरूक किसान ई समृद्ध अपने खेती री पहचान भी वेवे है। खेत बचाओ अभियान ने देखो सफल बनावारे वास्ते अपने किसान भैया ने रासायनिक खाद ने छोड़ने जैविक और केचुआ खाद अपनावनी चावे सा।
1: बिल्कुल सा, पानी बचावारे वास्ते भी आपने ड्रिप सिंचाई या पछे फवारे सिंचाई और पाइपलाइन रो उपयोग आपने करनो चावे सा। मिट्टी री ताकत ने बढ़ावा रे वास्ते भी आपने टाइम टाइम पे फसल चक्र ने अपनानो है और लाल लारे दलन ने भी बोवनी है सा।
0: बिल्कुल, और देखो भी जी फसल चक्र अपनाएगा तो वणे महीने जी दलहना बोएगा तो देखो अणियों भी वणारे फायदो वेगा सा। पराली जाहे विने बिल्कुल भी आपने किसान भैया ने

हमारे किसान भाई अभी सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी उदयपुर है। दिन के 3 बजने को हैं। कुछ ही पलों में होंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो बैठक की सहअध्यक्षता कर रहे हैं। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है और ये मानना होगा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है।
1: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ता है और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है। वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई। दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत अब 942 रुपए हो जाएगी। कक्षा 12वीं की परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तारीख है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला है। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। यूरोपीय संघ का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा,

0: सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलमरु मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ चुका है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्ची में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से अपनी पहचान बनाई। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया था। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मॉनसून आगे बढ़ रहा है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देशभर में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों और कई अन्य भागों में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 15वें ओवर में 2 विकेट खोए और 49 रन बनाए। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। इस समय दिन के 3:05 हुए हैं। हमारी आज की ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। सांधिकालीन सभा के कार्यक्रम लेकर शाम 5 बजे फिर आएंगे आपकी सेवा में। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार।

मीडियम वेव 266.6 छह मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 5 बज चुके हैं। हमारी सांध्यकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में लीजिए सुनते हैं युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: सूरज की किरणों ने फिर दस्तक दी है, वक्त ने एक नया पन्ना खोला है। तो आइए उम्मीदों की रोशनी के साथ आज के इस खूबसूरत कार्यक्रम का आगाज करते हैं।
1: गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवावाणी में। आज मैं हूँ आपके साथ आपका रेडियो दोस्त मोहित और मेरे साथ हैं मनस्वी।
0: दोस्तों आज का कार्यक्रम होगा जानकारी और प्रेरणा से भरपूर। न्यू गैजेट्स में जानेंगे, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी के बारे में, सेहतनामा में बात करेंगे, आर्स कॉग्स कॉट सिंड्रोम की और एकोंड्रोप्लेसिया की, फिल्मी दुनिया में चर्चा होगी एकता कपूर और अमृता राव की, साथ ही विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के महत्व को समझेंगे, MS नरसिम्हन, लियाम नीसन और बिल हेडर तथा खेल जगत के सितारे महेश भूपति और काफू पर भी चर्चा करेंगे।
1: और हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, अंत में आज का इतिहास और स्पोर्ट्स अपडेट से जुड़ी जानकारी भी हम आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का युवाणी कार्यक्रम।

0: दोस्तों, किताबें ज्ञान का खजाना होती है और समय के साथ इन्हें संभालने के तरीके भी बदल रहे हैं। अब लाइब्रेरी जो है सिर्फ किताबों की अलमारी तक नहीं सीमित नहीं रही, बल्कि आधुनिक तकनीकों की मदद से स्मार्ट और डिजिटल भी बनती जा रही है। और आज के न्यू गैजेट सेगमेंट में भी हम जानेंगे ऐसी ही तकनीकों के बारे में जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट को पूरी तरह बदल रही है।
1: बिल्कुल मोहित, सबसे पहले बात करते हैं RFID आधारित स्मार्ट लाइब्रेरी सिस्टम यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्निक, जो लाइब्रेरी में किताबों की पहचान, ट्रैकिंग और मैनेजमेंट को बेहद ही आसान बना देती है।
0: इस तकनीक में हर किताब पर एक छोटी सी RFID टैग लगाई जाती है। जब कोई पाठक किताब इशू या रिटर्न करता है तो मशीन खुद ही सेकंडों में उसकी जानकारी पढ़ लेती है। इससे एक लंबी कतारों और मैनुअल एंट्री की जरूरत काफ़ी कम हो जाती है।
1: इसके साथ ही लाइब्रेरी में सेल्फ चेकआउट कियोस्क भी लगाए जा रहे हैं, जहां पाठक स्वयं अपनी किताबें इशू और रिटर्न कर सकते हैं। इससे समय की बचत होती है और लाइब्रेरी स्टाफ पर भी काम का दबाव कम होता है।
0: बिल्कुल, और एक और ख़ास सुविधा है स्मार्ट बुक लोकेटर सिस्टम। अगर किसी बड़ी लाइब्रेरी में कोई किताब ढूंढनी हो तो यह तकनीक तुरंत बता देती है कि किताब किस रैक और किस सेल्फ पर रखी गई है।
1: सुरक्षा के लिहाज से भी यह सिस्टम काफ़ी उपयोगी है। यदि कोई किताब बिना अनुमति के लाइब्रेरी से बाहर ले जाने की कोशिश करता है तो गेट पर लगे सेंसर्स तुरंत अलर्ट दे देते हैं।
0: बिल्कुल, और आज की दुनिया में कई यूनिवर्सिटी और सार्वजनिक लाइब्रेरीज इस तकनीक का यूज़ कर रही है। इससे किताबों की गिनती, रिकॉर्ड अपडेट करना और स्टॉक वेरिफिकेशन जैसे काम भी बहुत तेज़ी से हो जाते हैं।
1: यानी RFID आधारित स्मार्ट लाइब्रेरी सिस्टम न केवल लाइब्रेरी प्रबंधन को आधुनिक बना रहे हैं, बल्कि पाठकों को भी तेज़, सुरक्षित और बेहतर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।
0: तो दोस्तों,

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों अब सेहतनामा में जानेंगे दो दुर्लभ अनुवांशिक स्थिति आर स्कोक स्टॉक सिंड्रोम और अकोडोप्लासिया के बारे में। ये दोनों जन्म से जुड़ी स्थितियां हैं जो शरीर के विकास और वृद्धि को प्रभावित कर सकती है। इनके बारे में समय पर जानकारी होने से बेहतर देखभाल मिल सकती है।
3: बिल्कुल मोहित, सबसे पहले बात करते हैं आर स्कोक स्कॉट सिंड्रोम। यह एक बहुत ही दुर्लभ अनुवांशिक स्थिति है जो ज़्यादातर लड़कों में देखने को मिलती है। इससे बच्चे की शारीरिक वृद्धि, चेहरे की बनावट और हाथों पैरों के विकास पर असर पड़ सकता है।
2: ऐसे बच्चों का कद थोड़ा कम हो सकता है, आंखों के बीच की दूरी कुछ ज़्यादा दिखाई दे सकती है और हाथ पैरों की बनावट में भी कुछ अलग विशेषताएँ देखने को मिल सकती है और कुछ बच्चों को पढ़ाई या नई चीज़ें सीखने में भी थोड़ी परेशानी हो सकती है।
3: लेकिन अच्छी बात यह है कि सही देखभाल और समय पर मदद मिलने से ऐसे बच्चे सामान्य जीवन जी सकते हैं। फिजियोथेरेपी, विशेष शिक्षा और डॉक्टरों की नियमित सलाह उनके विकास में काफ़ी मददगार हो सकती है।
2: बिल्कुल, और अब बात करते हैं अकोडोप्लासिया की। यह बोनेपन का सबसे आम कारण माना जाता है। इसमें हड्डियों की बढ़त सामान्य तरीके से नहीं हो पाती जिसके कारण व्यक्ति का कद कम ही रह जाता है।
3: एकोंड्रोप्लेशिया में शरीर का ऊपरी हिस्सा सामान्य दिख सकता है लेकिन हाथ और पैर अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। कई बार सिर का आकार थोड़ा बड़ा और माथा उभरा हुआ दिखाई दे सकता है। इसकी पहचान अक्सर जन्म के समय या बचपन में ही हो जाती है।
2: और विशेषज्ञ बताते हैं कि इसका संबंध FGFR3 नामक जीन में होने वाले बदलाव से होता है। यही जीन हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है, इसलिए इसमें बदलाव आने पर हड्डियों का विकास प्रभावित हो सकता है।
3: एकोंड्रोप्लेशिया से प्रभावित लोगों को जीवन में कुछ स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं होना, कान के संक्रमण या जोड़ों पर ज़्यादा दबाव पड़ना। इसलिए नियमित जांच और डॉक्टरों की सलाह इसमें काफ़ी ज़रूरी है।
2: दोस्तों आज चिकित्सा विज्ञान में काफ़ी प्रगति हो चुकी है। समय पर पहचान, सही इलाज, संतुलित पोषण और परिवार का सहयोग मिलने पर प्रभावित व्यक्ति बेहतर और आत्मविश्वासपूर्ण जीवन जी सकता है।
3: और सबसे ज़रूरी बात, किसी भी व्यक्ति की ऊंचाई या

शारीरिक बनावट उसकी प्रतिभा तय नहीं कर सकती। सही अवसर और समर्थन मिले तो हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के सेहतनामा में बस इतना ही।

दोस्तों आज जन्मदिन है भारतीय टेलीविज़न और फिल्म जगत की दो चर्चित हस्तियों का। एक ओर है टीवी इंडस्ट्री को नई पहचान देने वाली एकता कपूर और दूसरी ओर है अपनी सादगी और शानदार अभिनय से दर्शकों का

0: जिल जीतने वाली अभिनेत्री अमृता राव।
1: कल्पनाओं को कहानियों का रूप देना कोई इनसे सीखे, जिन्होंने सपनों को पर्दे पर सजा कर करोड़ों दिलों की धड़कनों में जगह बनाई। वो केवल निर्माता नहीं थी, बल्कि भारतीय मनोरंजन जगत की एक ऐसी शिल्पकार है जिन्होंने अनगिनत किरदारों और कथाओं को अमर बना दिया। एकता कपूर वही नाम है जिन्होंने कल्पना, साहस और नवाचार के रंगों से भारतीय टेलीविजन और मनोरंजन जगत की तस्वीर बदल दी। एकता कपूर का जन्म 7 जून 1975 को हुआ था। भारतीय टेलीविजन और फिल्म उद्योग की सबसे सफल निर्माताओं में गिनी जाती हैं। वे बालाजी टेलीफिल्म्स की संस्थापक, संयुक्त प्रबंधन और निदेशक और क्रिएटिव हेड हैं।
0: एकता कपूर ने महज 17 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की थी। शुरुआती दौर में उन्हें कई असफलताओं का सामना करना पड़ता, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका पहला बड़ा शो रहा हम 5, जिससे उनकी उन्हें जो है पहचान मिली।
1: बिल्कुल मोहित, और इसके बाद साल 2000 में क्योंकि सास भी कभी बहू थी ने भारतीय टेलीविजन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिर कहानी घर घर की और कसौटी जिंदगी की जैसे लोकप्रिय धारावाहिकों ने उन्हें क्वीन ऑफ इंडियन टेलीविजन के रूप में स्थापित कर दिया।
0: एकता कपूर ने केवल टीवी तक अपन को खुद को सीमित नहीं रखा, उन्होंने बालाजी मोशन पिक्चर के जरिए कई सफल फिल्मों का निर्माण भी किया, जिसमें द डर्टी पिक्चर, लुटेरा, ड्रीम गर्ल, क्रू और द साबरमती रिपोर्ट जैसी फिल्में शामिल हैं।
1: साल 2017 में उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म ALT बालाजी भी शुरू किया। इसके अलावा उन्होंने 130 से अधिक टीवी धारावाहिकों का निर्माण किया है। पवित्र रिश्ता, बड़े अच्छे लगते हैं, ये है मोहब्बतें, नागिन और कुमकुम भाग्य जैसे कई शो आज भी दर्शकों के बीच लोकप्रिय हैं।
0: उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2020 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। वहीं 2023 में उन्हें इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड भी प्रदान किया गया, जो उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव को दर्शाता है।
1: सादगी जब मुस्कुराहट का रूप लेती है तो एक नाम अमृता राव बनकर उभरता है, जिनकी अदाकारी में अपनापन है और जिनकी शख्सियत में भारतीय संस्कृति की मधुर छाप है। उन्होंने पर्दे पर सिर्फ किरदार नहीं निभाए, बल्कि भावनाओं को जीवंत कर दर्शकों के दिलों में जगह बनाई है। अभिनेत्री अमृता राव का जन्म 7 जून 1981 को हुआ है। अमृता राव को बॉलीवुड की गर्ल नेक्स्ट डोर छवि वाली अभिनेत्रियों में गिना जाता है। उनकी सादगी और सहज अभिनय ने दर्शकों के बीच उनकी खास पहचान बनाई है।
0: उन्होंने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2002 में अब के बरस से की थी। हालांकि उन्हें असली पहचान 2003 में आई फिल्म इश्क विश्क से मिली, जिसमें उनके साथ शाहिद कपूर नजर आए थे।
1: इसके बाद उन्होंने मैं हूं ना, मस्ती, विवाह और वेलकम टू सज्जनपुर जैसी कई सफल फिल्मों में काम किया। खास तौर पर फिल्म विवाह में निभाया गया उनका पूनम का किरदार आज भी दर्शकों के बीच बसा हुआ है।
0: अमृता राव को इश्क विश्क के लिए आईफा अवार्ड मिला, जबकि वेलकम टू सज्जनपुर के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का स्टारडस्ट अवार्ड भी मिला। उन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ साथ तेलुगु सिनेमा और टेलीविजन में भी अपनी प्रतिभा दिखाई।
1: वर्ष 2016 में उन्होंने टीवी धारावाहिक मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है में काम किया। हाल के वर्षों में वे फिल्म ठाकरे और जॉली LLB 3 में भी नजर आई। अभिनय के साथ साथ वे लेखन और डिजिटल माध्यमों में भी सक्रिय हैं।
0: तो दोस्तों, आज हमने जाना एकता कपूर और अमृता राव के बारे में। एक ने भारतीय टेलीविज़न की तस्वीर बदल दी तो दूसरी ने अपनी सादगी और अभिनय से दर्शकों के दिल में खास जगह बनाई।
1: इसी के साथ हमारी ओर से एकता कपूर और अमृता राव को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं।

0: दोस्तों, अब बात करेंगे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की। यह दिवस हर साल 7 जून यानी आज के दिन मनाया जाता है ताकि लोगों को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के महत्व के बारे में जागरूक किया जा सके।
1: बिल्कुल मोहित, भोजन केवल

0: पेट भरने का साधन नहीं है बल्कि अच्छे स्वास्थ्य की भी नींव है। यदि भोजन सुरक्षित और स्वच्छ न हो तो इससे फूड पॉइजनिंग, संक्रमण और कई बीमारियां हो सकती हैं।
1: बिल्कुल, और इस दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के प्रयास से हुई थी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि खेतों से लेकर हमारी थाली तक पहुंचने वाला भोजन सुरक्षित रहे।
0: और इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2026 की थीम है फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशंस, सेफ फूड एवरीवेयर, यानी समस्या से समाधान की ओर, हर जगह सुरक्षित भोजन। यह थीम इस बात पर जोर देती है कि खाद्य सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों को समझकर उनके व्यवहारिक समाधान खोजे जाएं ताकि हर व्यक्ति तक सुरक्षित भोजन पहुंच सके।
1: बिल्कुल, और भोजन की सुरक्षा केवल किसानों, खाद्य उद्योगों या सरकारों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सबकी भी जिम्मेदारी है। घर में भोजन बनाते समय साफ सफाई का ध्यान रखना, फलों और सब्जियों को अच्छी तरह धोना तथा भोजन को सही तापमान पर रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है।
0: इसके अलावा हमें हमेशा ताज़ा और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों का ही उपयोग करना चाहिए। पैक्ड खाद्य पदार्थ खरीदते समय उनकी निर्माण और एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करनी चाहिए।
1: बिल्कुल, और दुनिया भर में हर साल लाखों लोग दूषित भोजन से होने वाली बीमारियों का शिकार होते हैं, इसीलिए खाद्य सुरक्षा केवल स्वास्थ्य का नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास का भी महत्वपूर्ण विषय है।
0: यह दिवस हमें याद दिलाता है कि विज्ञान, जागरूकता और सही आदतें ही हमारी मदद, इन सब की मदद से खाद्य जनित बीमारियों को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। सुरक्षित भोजन हर व्यक्ति का अधिकार है और इसे सुनिश्चित करने में हमें भी भूमिका निभानी है।
1: तो दोस्तों, यह दिवस हमें यह संदेश देता है कि समस्याओं की पहचान के साथ साथ उनके समाधान पर भी काम करने की ज़रूरत है ताकि हर व्यक्ति तक सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन पहुंच सके।
0: तो आइए संकल्प लें कि हम स्वयं भी सुरक्षित भोजन अपनाएंगे और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करेंगे।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, आज तीन ऐसी हस्तियों का जन्मदिन है जिन्होंने गणित, सिनेमा और कॉमेडी की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई।
4: बिल्कुल, एक है भारतीय गणितज्ञ MS नरसिम्हन, दूसरे हैं प्रसिद्ध अभिनेता लियाम नीसन और तीसरे हैं अमेरिकी अभिनेता कॉमेडियन बिल हैडर।
3: बिल्कुल, और सबसे पहले बात करते हैं MS नरसिम्हन की। 7 जून 1932 को तमिलनाडु में जन्मे नरसिम्हन भारत के महान गणितज्ञों में गिने जाते हैं। उन्होंने संख्या सिद्धांत, बीजगणितीय ज्यामिति, प्रतिनिधित्व सिद्धांत और आंशिक अवकल समीकरणों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
4: वे भारत सरकार के पद्म भूषण, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, किंग फैसल इंटरनेशनल प्राइज तथा फ्रांस के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से भी सम्मानित हुए हैं और वे रॉयल सोसाइटी के फेलो भी रहे हैं।
3: और अब बात करते हैं लियाम नीसन की, जिनका जन्म 7 जून 1952 को उत्तरी आयरलैंड में हुआ था। 4 दशक से अधिक लंबे समय में उन्होंने फिल्मी करियर में उन्होंने दुनिया भर के दर्शकों का दिल जीता।
4: फिल्म शिंडलर्स लिस्ट में ऑस्कर शिंडलर की भूमिका ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। इसके अलावा वे स्टार वॉर्स एपिसोड 1 द फैंटम मेनेस में क्वाइगन और जिन बैटमैन बिगिंस में रॉस अल गुल और टेकन श्रृंखला के दमदार एक्शन किरदारों के लिए भी जाने जाते हैं। उन्हें अकादमी अवार्ड्स, बॉफ्टा और गोल्डन ग्लोब जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों के लिए नामांकित किया जा चुका है।
3: और अब बात करते हैं बिल हैडर की। 7 जून 1978 को अमेरिका के ओकलाहोमा में जन्मे बिल हैडर एक लोकप्रिय अभिनेता, हास्य कलाकार, लेखक और निदेशक हैं।
4: वे लंबे समय तक टीवी शो सैटरडे नाइट लाइव का हिस्सा रहे और अपने मज़ेदार किरदारों तथा नकल करने की कला के लिए प्रसिद्ध हुए।
3: उन्होंने HBO के चर्चित श्रृंखला बेरी का सह निर्माण किया और मुख्य भूमिका निभाते हुए 2 एमी पुरस्कार भी जीते। इसके अलावा उन्होंने कई लोकप्रिय एनिमेटेड फिल्में और कॉमेडी प्रोजेक्ट्स में अपनी आवाज़ और अभिनय का जादू बिखेरा।
4: तो दोस्तों, MS नरसिम्हन, लियाम नीसन और बिल हैडर, इन तीनों ने अपने अपने क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियां हासिल कर दुनिया भर में सम्मान अर्जित किया। इनके जन्मदिन पर हम उन्हें श्रद्धापूर्वक याद करते हैं और हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं।

0: दोस्तों, अब बात करेंगे दो ऐसे खिलाड़ियों की जिनका भी आज जन्मदिन है और जिन्होंने अपने अपने खेल में दुनिया भर में पहचान बनाई।
1: बिल्कुल मोहित, पहले बात करते हैं महान टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति और दूसरे हैं ब्राजील के दिग्गज फुटबॉलर काफू।
0: सबसे पहले बात करते हैं महेश भूपति की। इनका जन्म 7 जून 1974 को हुआ था। वे भारत के पहले ऐसे टेनिस खिलाड़ी बने जिन्होंने 1997 में ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता का खिताब जीता।
1: डबल्स और मिक्स्ड डबल्स में उन्होंने कई ऐतिहासिक सफलताएं हासिल की। लिएंडर पेस के साथ उनकी जोड़ी ने 1999 में फ्रेंच ओपन और विंबलडन जैसे बड़े खिताब जीते तथा विश्व नंबर वन डबल्स टीम बनने का गौरव भी प्राप्त किया।
0: और उन्होंने मिक्स्ड

0: डबल्स में ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले चुनिंदा खिलाड़ियों में अपनी जगह भी बनाई। उन्हें कुल 8 ग्रैंड स्लैम मिक्स्ड डबल्स खिताब जीतने और भारत के लिए डेविस कप तथा एशियाई खेलों में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए जाना जाता है।
1: वर्ष 2001 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। खेलों के अलावा उन्होंने इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग और कई खेल प्रबंधन परियोजनाओं की भी शुरुआत की।
0: और अब बात करते हैं ब्राजील के महान फुटबॉलर काफू की। 7 जून 1970 को जन्मे काफू को फुटबॉल इतिहास के सर्वश्रेष्ठ राइट बैक खिलाड़ियों में गिना जाता है। वे ब्राजील की राष्ट्रीय टीम के लिए सर्वाधिक 142 मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं और विश्व कप इतिहास में लगातार 3 फाइनल खेलने वाले एकमात्र खिलाड़ी भी हैं।
1: काफू ने ब्राजील को 1994 और 2002 में फीफा विश्व कप जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2002 में उन्होंने टीम के कप्तान के रूप में विश्व कप ट्रॉफी उठाई। उनकी तेज रफ्तार, शानदार क्रॉस और अथक ऊर्जा ने उन्हें फुटबॉल जगत का एक आइकन बना दिया।
0: तो दोस्तों, इसी के साथ आज हम महेश भूपति और काफू को उनके जन्मदिन पर ढेरों शुभकामनाएं देते हैं।

0: दोस्तों अब समय है कार्यक्रम के खास हिस्से आज के इतिहास का, यानी 7 जून के दिन इतिहास में क्या क्या खास हुआ, आइए जानते हैं।
1: सबसे पहले बात करते हैं साल 1975 की, तो आज ही के दिन दुनिया के पहले क्रिकेट विश्व कप का शुभारंभ इंग्लैंड में हुआ था। इस टूर्नामेंट में क्रिकेट को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दी और बाद में यह खेल जगत के सबसे प्रतिष्ठित आयोजनों में शामिल हो गया।
0: बात करें साल 1968 की, तो आज के दिन डेनमार्क के बिलुंड शहर में जो है दुनिया का पहला लेगोलैंड थीम पार्क खोला गया था। आज लेगोलैंड बच्चों और परिवारों के लिए दुनिया की सबसे लोकप्रिय थीम पार्कों में गिना जाता है।
1: बात करें साल 1929 की, तो आज ही के दिन लेट रन संधि के आधिकारिक अनुमोदन के बाद वेटिकन सिटी कानूनी तौर पर एक संप्रभु और स्वतंत्र राष्ट्र बना। आज यह दुनिया का सबसे छोटा और स्वतंत्र देश माना जाता है।
0: बात करें साल 1913 की, तो आज के दिन पर्वतारोही हडसन स्टक के नेतृत्व में उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी डेनाली पर पहली सफल चढ़ाई की गई।
1: बात करें साल 1979 की, तो आज ही के दिन भारत के दूसरे उपग्रह भास्कर 1 को सोवियत संघ के भालू झील से सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। यह भारत के अंतरिक्ष अभियान का सबसे बड़ा मील का पत्थर था।
0: तो दोस्तों ये थी 7 जून से जुड़ी कुछ खास ऐतिहासिक घटनाएं।

0: तो दोस्तों बात करें आज के स्पोर्ट्स अपडेट की, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच मुल्लानपुर में चल रहे टेस्ट मैच का दूसरा दिन, आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय T20 टीम की घोषणा और भारत की ऐतिहासिक हॉकी की जीत शामिल है। मुल्लानपुर और महाराज यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा ये टेस्ट मैच भारत ने अपनी पहली पारी 8 विकेट पर 564 रन बनाकर घोषित किया।
1: तो दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही, अभी सॉन्ग के साथ आपसे लेते हैं विदा। आज मैं था आपके साथ आपका रेडियो दोस्त मोहित और मेरे साथ थी
0: मनस्वी।

युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 6 बजने को है, अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। बैठक की सहअध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के समस्त पहलुओं की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, डिजिटल प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्रों तथा दोनों देशों के बीच लोगों के संबंधों के जैसे मुद्दों पर बातचीत की। डॉ. जयशंकर और सुगियानो ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति का स्वागत किया। इससे पहले सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों के क्रय विक्रय पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों में संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। इस बीच आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 29 रूपये प्रति सिलेंडर की वृद्धि की गई है। दिल्ली में अब 14 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत 942 रूपये है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल की महिला बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने आज सिलीगुड़ी में उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा की बैठक की। अध्यक्षता करते हुए पदभार ग्रहण करने के बाद यह उत्तर बंगाल क्षेत्र की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। उपभोक्ता कार्य विभाग ने ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थन पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान ने भारत के पहली पारी में 564 रन के जवाब में 5 विकेट पर 113 रन बना लिए थे। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर थे। भारत की ओर से मानव सुथार ने 3 विकेट लिए। इससे पहले भारत ने 8 विकेट पर 564 रन बनाकर पहली पारी समाप्त घोषित कर दी थी। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश हो सकती है। हालांकि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी राजस्थान और तटीय आंध्र प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी है। इन स्थानों पर अगले 4 दिनों तक लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:05 हुए हैं। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त स्वाति, आपके लिए लेकर आपका पसंदीदा फिल्म संगीत। तो शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ। कुमार शानू और अलका याग्निक के युगल स्वर में फूल और कांटे फिल्म का ये गीत हम आपके रेडियो सेट पर पहुंचा रहे हैं। एंजॉय कीजिए इस सेगमेंट के इस पहले तराने को।

तो इस खूबसूरत गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत का आगाज हमने किया। श्रोताओं, इस फिल्म से जुड़ी कुछ बातें भी आपसे साझा करते हैं। फिल्म फूल और कांटे से ही अजय देवगन ने बतौर हीरो

तो इस खूबसूरत गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत का आगाज हमने किया। श्रोताओं, इस फिल्म से जुड़ी कुछ बातें भी आपसे साझा करते हैं। फिल्म फूल और कांटे से ही अजय देवगन ने बतौर हीरो बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। फिल्म में मधु ने भी, जो कि इस फिल्म की अभिनेत्री थी, हिंदी फिल्मों में अपनी पहली भूमिका निभाई थी। फिल्म के निर्देशक कुकू कोहली थे, जबकि संगीत प्रसिद्ध जोड़ी नदीम श्रवण ने दिया था। फिल्म के सभी गाने बहुत ही लोकप्रिय हुए थे। ये फिल्म उसी दिन रिलीज हुई थी जिस दिन लम्हे रिलीज हुई थी। बड़ी स्टार कास्ट होने के बावजूद लम्हे पर फूल और कांटे ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी बढ़त बना ली और 1991 की सबसे सफल फिल्मों में शामिल हो गई। तो कार्यक्रम फिल्म संगीत को हम आगे बढ़ाते हैं और ये अगला गीत आपके रेडियो सेट पर पहुंचाते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल स्वर में डुप्लीकेट फिल्म से, और इस गीत और फिल्म से जुड़ी बातें भी आपसे साझा करेंगे इस गीत के बाद।

0: उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल स्वर में डुप्लीकेट फिल्म का ये गीत अभी हमने आपको सुनवाया। शाहरुख खान, जूही चावला और सोनाली बेंद्रे पर यह गीत फिल्माया गया था और यह गीत 1990 के दशक के सबसे लोकप्रिय रोमांटिक गीतों में गिना जाता है। संगीत अनु मलिक ने दिया था और इस गीत के बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने और यह गाना इतना लोकप्रिय हुआ कि फिल्म की बॉक्स ऑफिस सफलता से भी अधिक इस गीत की चर्चा हुई और कई दशक आज भी डुप्लीकेट फिल्म को सबसे पहले इस गीत की वजह से याद करते हैं। फिल्म में शाहरुख खान ने डबल रोल निभाया था और एक भोले भाले बबलू और दूसरे गैंगस्टर मनु दादा का। इस गीत के लिए जावेद अख्तर को फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ गीतकार का नामांकन भी मिला था और इस गीत की चर्चा इतनी रही कि हाल ही के वर्षों में भी ये गीत नई पीढ़ी के बीच लोकप्रिय बना हुआ है और इसके रिमिक्स तथा रिक्रिएटेड संस्करण भी आए हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत इसी तरह जारी रहेगा एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
1: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में

0: रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोताओं, एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम फिल्म संगीत में। और अब कार्यक्रम का अगला गीत जो हम आपके रेडियो सेट पर पहुंचा रहे हैं वो है फिल्म हेलो ब्रदर्स से तेरी चुनरिया। ये 1999 की फिल्म हेलो ब्रदर का सबसे लोकप्रिय गीत माना जाता है और आज भी यह 90 के दशक के सबसे पसंदीदा रोमांटिक गीतों में गिना जाता है। इस गाने को कुमार शानू और अलका याग्निक ने गाया था, संगीत हिमेश रेशमिया ने दिया था और यह उनके शुरुआती और सबसे यादगार हिट गीतों में से एक माना जाता है। गीत के बोल सुधाकर शर्मा ने लिखे थे, गाने को सलमान खान और रानी मुखर्जी पर फिल्माया गया था और दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। फिल्म का संगीत एल्बम उस वर्ष के सबसे अधिक बिकने वाले एल्बमों में से शामिल था, जिसमें तेरी चुनरिया गीत की बड़ी भूमिका रही। फिल्म का निर्देशन सोहेल खान ने किया था और मुख्य भूमिकाओं में सलमान खान, अरबाज खान और रानी मुखर्जी थे। यह फिल्म कॉमेडी, रोमांस और फैंटेसी का मिश्रण थी, जिसमें सलमान खान का किरदार मरने के बाद भी कहानी में मौजूद रहता है। तो आपके रेडियो सेट पर पहुँच जाते हैं हेलो ब्रदर फिल्म का ये गीत।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ।
2: हमें मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।
3: तो श्रोताओं, हेलो ब्रदर के इस गीत के साथ, फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है।
4: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन-स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज। आकाशवाणी, आकाशवाणी।
3: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं और इस वक्त शाम के 6:30 होने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 6:40 पर आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी और 6:45 पर आप सुन सकेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: मुख्य समाचार। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी मजबूत हुई। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज आखिरी तारीख। पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 12 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। इस बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि बैठक में राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार, जहाजरानी, निवेश, स्वास्थ्य, औषधि निर्माण, उर्वरक, महत्वपूर्ण खनिज, पर्यटन, शिक्षा और सांस्कृतिक सहित द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर गहन चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने बहुपक्षीय समन्वय को आगे बढ़ाने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। इससे पहले अपने उद्घाटन भाषण में डॉ जयशंकर ने कहा कि 4 साल के अंतराल के बाद दोनों देशों के संयुक्त आयोग की ये बैठक हुई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ता है। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के दौरान समुद्री यातायात में गंभीर व्यवधान के बावजूद भारत होर्मुज जल डमरू मध्य से ऊर्जा माल की आवाजाही जारी रखने में सफल रहा। मंत्रालय के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है और एलपीजी की बॉटलिंग और वितरण गतिविधियां सामान्य रूप से जारी है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष का विषय है समस्या से समाधान तक, हर जगह सुरक्षित भोजन। ये दिवस खाद्य सुरक्षा को एक अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में एक सशक्त अवसर प्रदान करता है। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सोशल मीडिया संदेश में सभी से सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संकल्प लेने की अपील की है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लेते हुए केंद्रीय मंत्री ने साइकिल चलाने से स्वास्थ्य को होने वाले फायदों का उल्लेख किया। श्री मांडविया ने नागरिकों से इस पहल में शामिल होने और फिट इंडिया के सपने को साकार करने का आग्रह किया।
1: साइकिलिंग करने से आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। साइकिलिंग से फ्यूल का बचत होता है। वर्तमान में ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, उसका भी समाधान है, तो क्यों न हम साइकिलिंग करें। देश के नागरिकों में अपने हेल्थ के प्रति अवेयरनेस बढ़ी है। मोदी जी ने आधा घंटा रोज फिटनेस देने के लिए कहा है, तो ये फिटनेस का डोज आधा घंटा के लिए हम हमेशा साइकिलिंग करेंगे तो मैं मानता हूँ कि हमारी कई समस्या का समाधान होगा।
0: इधर प्रदेश में संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम के तहत कई कार्यक्रम हुए। राजधानी जयपुर में फिटनेस, पर्यावरण संरक्षण और सतत परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साइक्लोथॉन आयोजित की गई। इसमें बड़ी संख्या में साइक्लिस्ट, फिटनेस प्रेमी, विद्यार्थी, कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स और नागरिकों ने भाग लिया। इस आयोजन ने स्वस्थ जीवन शैली और सामुदायिक सहभागिता का संदेश दिया। इसके साथ ही सप्ताह भर चले जागरूकता अभियान का भी समापन हुआ। वहीं विद्याधर नगर स्टेडियम में साइकिल रैली निकाली गई। श्रीगंगानगर, बाड़मेर, पाली, अजमेर, सवाईमाधोपुर, कोटपुतली सहित

0: कई स्थानों पर आम नागरिकों सहित पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने साइकिल चलाकर और योगाभ्यास कर फिट रहने का संदेश दिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज आखिरी तारीख है। बोर्ड की सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार ये पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। इस बीच सरकार की ओर से नीट यूजी परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जा रहे हैं। ये परीक्षा 21 जून को आयोजित होगी। एनटीए ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही प्रश्न पत्र लीक और बिक्री से संबंधित अफवाहों का खंडन किया है। उम्मीदवारों और अभिभावकों को अनजान स्रोत से प्राप्त किसी भी तरह के संदेश पर भरोसा नहीं करने की सलाह दी गई है। राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि अच्छी शिक्षा देना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ज्ञान का पूरे समाज में प्रसार विश्वविद्यालय शिक्षा से होता है, इसीलिए इसे उत्कृष्ट बनाने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री बागड़े आज महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के 23वें स्थापना दिवस पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने गंग नहर निर्माण शताब्दी वर्ष पर जल संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान भी किया। वहीं केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने विश्वविद्यालयों में भारतीय संस्कृति से जुड़े मूल्यों पर कार्य करने की आवश्यकता जताई। प्रदेश में अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जरूरी काम करवाए जा रहे हैं। लगभग 2,500 करोड़ रुपए लागत की इस परियोजना से 300 से ज्यादा गांवों की लगभग 42,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को लिफ्ट सिंचाई प्रणाली से जल उपलब्ध होगा। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि आगामी वर्षों में ये परियोजना बांसवाड़ा जिले की कृषि अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाली मुख्य सिंचाई परियोजनाओं में शामिल होगी। इसके पूरा होने के बाद क्षेत्र के किसानों को साल भर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि इससे भूजल स्तर सुधार, जल संरक्षण और ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास को भी मजबूती मिलेगी। साथ ही ये परियोजना वागड़ क्षेत्र के जनजातीय बहुल इलाकों के सामाजिक और आर्थिक विकास में मील का पत्थर साबित होगी। जैसलमेर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की जा रही है। शहरी क्षेत्र के सूली डूंगर सनसेट पॉइंट को नगर परिषद ने मॉल रोड की तर्ज पर विकसित करने की खास योजना शुरू की है। नगर परिषद आयुक्त लजपाल सिंह सोढ़ा ने बताया कि इस प्रोजेक्ट से नगर परिषद को हर साल करीब 38.5 लाख रुपए का राजस्व भी मिलेगा।
1: सूली डूंगर का अभी जो विकास कार्य जारी है वो उसका पूरा सनसेट पॉइंट का रिनोवेशन का है। चूंकि तैयार हो जाएगा उसके बाद उसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस करवाना होगा। उसके लिए हमने एक नया PPP मॉडल तैयार किया जिसमें हम 7 साल के लाइसेंस पे एक बिडर को एक जगह देंगे ताकि वो इसमें जो 10 शॉप बनी हुई है वो और पूरा पार्क है जो सनसेट पॉइंट है उसको मेंटेन करेगा। और नगर परिषद को इसमें आय भी होगी क्योंकि हमने इसकी बिड प्राइस 20 लाख रखी थी। जो इन्वेस्टर आया है उसने बिडर ने रेट डाली 38 लाख के आसपास। तो ऑपरेशन मेंटेनेंस करेंगे वो। एक शहर में एक पर्यटक स्थल के रूप में जब पहले सूली डूंगर जाना जाता था, काफी लोग जाते थे और काफी सालों से ये बिल्कुल ही ऐसा खंडर सा पड़ा था, तो इसको एक रेनोवेट करने से आने वाले टाइम में पर्यटकों के लिए एक विकल्प के तौर पर सूली डूंगर को हम डेवलप।
0: प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। एक और कई जिलों में आंधी और बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। वहीं कई क्षेत्रों में तेज गर्मी का दौर बना हुआ है। श्रीगंगानगर में जहां एक और तेज धूप और गर्म हवाओं से आमजन बेहाल रहा, वहीं घड़साना क्षेत्र में तेज बरसात हुई और 3 GD इलाके में ओले गिरे। बालोतरा में दिनभर लू चलने से जनजीवन प्रभावित रहा। जैसलमेर में तेज गर्मी के चलते दोपहर में बाजारों में सन्नाटा पसरा नजर आया। पाली में भी लू और उमस के चलते लोग बेहाल बेहाल रहे। यहां चिकित्सा विभाग ने आमजन को ORS, नींबू पानी और छाछ जैसे पेय पदार्थों का सेवन करने और जरूरी होने पर घर से बाहर निकलते वक्त सिर ढककर निकलने

0: की सलाह दी है। इधर मौसम विभाग ने आज 12 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा कल 7 जिलों में बारिश और 2 जिलों में हीट वेव की चेतावनी है। पाली में 16वीं राज्य स्तरीय जूनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता आज संपन्न हुई। फाइनल मुकाबला अलवर और जयपुर के बीच हुआ। इसमें जयपुर की टीम ने 3-1 से जीत हासिल की। समापन समारोह में मुख्य अतिथि राजस्थान हॉकी संघ के अध्यक्ष अरुण कुमार सारस्वत ने विजेता और उप विजेता टीमों सहित उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 26 जून तक स्वीकार किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी मजबूत हुई। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज आखिरी तारीख। पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 12 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से पाली जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख विशारद जोशी ने तैयार किया है। पाली जिले की अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और गुजरात के भुज से सीधे कनेक्टिविटी मिल सकेगी। बीते दिनों रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पाली रेलवे स्टेशन से भुज दिल्ली नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्तमान में राजस्थान में 76,800 करोड़ रुपए से अधिक के रेलवे विकास कार्य प्रगति पर हैं। अमृत स्टेशन योजना के तहत 85 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। श्री वैष्णव ने बताया कि पाली, मारवाड़, सोजत रोड, फालना, सोमेसर और मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशनों का काम भी प्रगति पर है। जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत 25 मई से 5 जून तक पानी बचाने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। देवस्थान विभाग के मंत्री जोराराम कुमावत ने लाखोटिया उद्यान से इस अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान दीपदान के कार्यक्रम हुए, जल चौपाल लगाई गई, पानी को बचाने की शपथ ली गई। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों, बावड़ियों, जल स्रोतों की साफ सफाई सहित जल संग्रहण संरचनाओं की मरम्मत के काम किए गए। अभियान के दौरान जिला प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने भी विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लिया। इस अभियान का समापन विश्व पर्यावरण दिवस पर हुआ और इसी दिन से हरियालो राजस्थान 2026 की शुरुआत हुई। पर्यावरण संरक्षण को लेकर कई गतिविधियां रखी गईं, वहीं जगह जगह पौधरोपण कार्यक्रम भी हुए। नगर निगम कार्यालय और जिले की सभी नगर पालिकाओं में इन दिनों लोक कल्याण मेलों का आयोजन किया जा रहा है। 30 जून तक लगने वाले इन मेलों में स्ट्रीट वेंडर्स को PM स्वनिधि योजना से जोड़ने, ऋण सुविधा, डिजिटल भुगतान और अन्य सरकारी लाभों की जानकारी दी जा रही है। सुगम, सरल और सुरक्षित परिवहन के उद्देश्य से वाहनों के अवैध मॉडिफिकेशन और काली फिल्म लगाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी कर वाहनों की सघन जांच की जा रही है और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों का मौके पर ही चालान काटा जा रहा है। ये अभियान 30 जून तक चलेगा। जनगणना 2027 के तहत चल रहे मकान सूचीकरण और मकान गणना का काम जोरों पर है। प्रगणक घर घर जाकर 33 प्रश्नों के जरिए जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और इसे HLO ऐप में दर्ज कर रहे हैं। इससे पहले 1 मई से 14 मई तक स्वगणना का कार्य किया गया। लोगों ने स्वयं ऑनलाइन जानकारी पोर्टल पर दर्ज की। इस काम में देसूरी ब्लॉक का तिखी गांव जिले में पहले स्थान पर रहा, जहां सभी ग्रामीणों ने खुद अपनी जानकारियां दर्ज कर मिसाल कायम की। फिट इंडिया मिशन के तहत संडे

0: साइकिल कार्यक्रम के जरिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। जिला मुख्यालय पर पुलिस प्रशासन की ओर से साइकिल रैली निकाली गई। इसमें पुलिस कर्मियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रैली का उद्देश्य नियमित व्यायाम और फिटनेस के प्रति लोगों को प्रेरित करना रहा। इस दौरान साइकिलिंग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की गई। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से पिछले दिनों खांडी गांव में खेत बचाओ अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम रखा गया। पाली कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार ने किसानों को संतुलित और मृदा परीक्षण आधारित उर्वरक उपयोग के महत्व की जानकारी दी। साथ ही राज्य सरकार की विभिन्न किसान हितैषी योजनाओं के बारे में बताकर उनका अधिक से अधिक फायदा उठाने को कहा। अभियान का उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, संतुलित उर्वरक उपयोग तथा टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग की ओर से इन दिनों 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की दवा पिलाई जा रही है। सीएमएचओ डॉक्टर विकास मारवाल ने बताया कि ये दवा 29 जून तक दी जाएगी। जिले के सभी उप स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य और सामुदायिक स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी केंद्रों और जिला अस्पतालों में ये दवा उपलब्ध है। इसके साथ ही पाली जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश है प्रादेशिक समाचार। पहली आजरी खास खास खबरां। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोगरी बैठक नई दिल्ली में पूरी हुई। दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी मजबूत हुई। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा स्वस्थ भविष्य खातर सुरक्षित और स्वच्छ भोजन रिकानी सरकार री प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड री 12वीं कक्षा रा पुनर्मूल्यांकन खातर ऑनलाइन आवेदन जमा करबारी आज आखिरी तारीख। पोर्टल आधी रात तक खुलेला। और मौसम महकमो प्रदेश रा 12 जिला में आंधी और मेह बरसबारो येलो अलर्ट जारी करियो। समाचार के सागे मैं रचना पारिक और अब समाचार विगतवार। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोगरी बैठक आज नई दिल्ली में पूरी हुई। इन बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और इंडोनेशिया का विदेश मंत्री सुगियोनो करी। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर कया के हाल रा बरसा माए दोनों देशों के बीच गहरी रणनीतिक भागीदारी हुई। वना कया के बैठक माए राजनीतिक, रक्षा सुरक्षा, समुद्री व्यापार, जहाजरानी, निवेश, स्वास्थ्य, औषधि निर्माण, उर्वरक, महताऊ खनिज, पर्यटन, शिक्षा और सांस्कृतिक समेत द्विपक्षीय इमदाद रा सगड़ा पहलवा माथे गहरी चर्चा हुई। दोनों मंत्री बहुपक्षीय समन्वय ने आगे बढ़ावा और भारत आसियान संबंधा ने मजबूत करबा माथे चर्चा करी। इनसे पहली आपरा उद्घाटन भाषण में डॉक्टर जयशंकर कहा के 4 बरस रा अंतराल रे पछे दोनों देशा रा संयुक्त आयोगरी आ बैठक हुई है। केंद्र सरकार कहो के अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी की कीमतों में भारी बढ़ोतरी रे बावजूद भारत में एलपीजी गैस सबू कम कीमत में मुहैया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय एक बयान में कहो के भारतीय सिलेंडर किनी भी पड़ोसी देश के मुकाबले सस्तो है। सरकार कहो के पश्चिमी एशिया संकट रे दौरान समुद्री यातायात में देरी रे बावजूद होमोर्ज जल डमरू मध्य सू ऊर्जा माल री आवाजाही जारी राखबा में सफल रहो। मंत्रालय मुजब देश में पेट्रोलियम उत्पादारी कोई कमी नहीं है और एलपीजी री बॉटलिंग और वितरण गतिविधियां सामान्य रूपों चाल रही है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इन बरसों विषय समस्या से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन है। ओ दिन खाद्य सुरक्षा ने एक अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी का रूप में मजबूत बनावारो मौको देवे है। इन मौके केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा स्वस्थ भविष्य खातर सुरक्षित और स्वच्छ भोजन रेकानी सरकारी प्रतिबद्धता दोहराई। सोशल मीडिया पोस्ट में वना नागरिकों स्वस्थ खान पान री आदता डालबा और स्वस्थ और आत्मनिर्भर भारत बनावा माए योगदान दे बारी अरज करी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी सोशल मीडिया संदेश माए सगलाओं सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य पदार्थ कानियों

0: जाग जगाबा और स्वस्थ जीवन शैली ने अपना बारो संकल्प ले बारी अर्ज करी। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल रहा 77वां कार्यक्रम में भाग लेना। इन मौके केंद्रीय मंत्री कहा कि साइकिल चलाबासू पर्यावरण ने साख रखबा में इमदाद मिले है, वना साइकिल चलाबासू स्वास्थ्य में होबा वाला फायदारो जिक्र करता थका कहा कि लोगा ने इन पहल में शामिल होर फिट इंडिया रा सपना ने साकार करनो चाहिए।
1: साइकिलिंग करने से आपकी हेल्थ अच्छी रहे, साइकिलिंग से फ्यूल का बचत होता है, वर्तमान में ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है उसका भी समाधान है, तो क्यों न हम साइकिलिंग करें। देश के नागरिकों में अपने हेल्थ के प्रति अवेयरनेस बढ़ी है। मोदी जी ने आधा घंटा रोज फिटनेस देने के लिए कहा है, तो ये फिटनेस का डोज आधा घंटा के लिए हम हमेशा साइकिलिंग करेंगे तो मैं मानता हूँ कि हमारी कई समस्या का समाधान होगा।
0: वठी ने प्रदेश में संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम के तहत कई कार्यक्रम भीया। राजधानी जयपुर में फिटनेस पर्यावरण संरक्षण और सतत परिवहन ने बढ़ावो दीवारा लगासू साइक्लोथॉन रखी गई। इनमें बड़ी संख्या में साइकिलिस्ट, फिटनेस प्रेमी, पढ़निया, कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स और नागरिक भाग लेना। इन आयोजन में स्वस्थ जीवन शैली और सामुदायिक सहभागितारो संदेश दियो गयो। इन सागे ही सप्ताह भर चल रियो जागरूकता अभियान भी पूरो भियो। वठी ने नगर स्टेडियम में साइकिल रैली काढ़ी गई। श्रीगंगानगर, बाड़मेर, पाली, अजमेर, सवाई माधोपुर, कोटपुतली समेत कई ठोड़ा माथे लोगा समेत पुलिस अहलकार और कर्मचारी साइकिल चला लोगा ने फिट रह बारो संदेश दिया। ये समाचार आप आकाशवाणी रा जयपुर अजमेर केंद्रों सुन रिया हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई री 12वीं कक्षारा परीक्षारा नतीजा जारी हो बारे पछ है। इनसु जुड़िया मुद्दारी जांच और उत्तर पुस्तिकावा ने फेरों जांचवा खातर ऑनलाइन आवेदन जमा कर बारी आज आखिरी तारीख है। बोर्ड रा सोशल मीडिया पोस्टर मुजब ये पोर्टल आधी रात तय खुलिया रहेला। इन भी सरकारी कानून नीट यूजी परीक्षा ने साफ कोई तरीकाओं कराबा खातर सगला सुरक्षा उपाय पक्का करिया जा रिया है। ये परीक्षा 21 जून ने वेला। एनटीए सोशल मीडिया माथे चाल रही पेपर लीक और उनरी बिक्री सु जुड़ी बाता नकार दियो है, वना पढ़ानी और उनरा घराला सु इन बेबुनियाद माथा माते भरोसो नी कर बारी सलाह दी है। राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाव बागड़े कया के चोखी शिक्षा देणो मां की सबू पहली प्राथमिकता वैनी चाहिए। वे कया के ज्ञान रो पूरा समाज में प्रसार विश्वविद्यालय शिक्षा सु होवे है, इन खातर सगला ने मिलर उन्ने चोखो बनानो चाहिए। श्री बागड़े आज लोक भवन सु महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेरा 23वां स्थापना दिवस माते संबोधित करिया हा। इन मौके वना गंग नहर निर्माण शताब्दी बरस माते पानी बचाबारो संकल्प ले बारी आरज करी। केंद्रीय विधि और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विश्वविद्यालय रा स्थापना दिवस री शुभकामनावा देता थका विश्वविद्यालय भारतीय संस्कृति सु जुड़िया मूल्या माते काम कर बारी जरूरत जताई। प्रदेश में अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना ने सर्वोच्च प्राथमिकता देता थका जरूरी काम करवाया जा रहा है। करीब 2500 करोड़ रुपया की लागत इन परियोजनाओं 320 गांवों की करीब 42,000 हेक्टेयर कृषि भूमि ने लिफ्ट सिंचाई प्रणालियों पानी मुहैया वेला। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत कया के आवता बरसा माए आ परियोजना बांसवाड़ा जिला री खेतीरी माली व्यवस्था ने नई दिशा देवा वाली खास सिंचाई परियोजना माई भेली वेला। इनरो पूरो हो बारे पछे किसाना ने साल भर खेती खातर पानी मिल सकेला। वना कया के इनसु जमी माई पानी रो स्तर सुधरेला, पानी री बचत वेला और गांवाई हलकारा विकास ने मजबूती मिलेला। सागई आ परियोजना बागड़ हलका रा जनजाति बहुल इलाका रा सामाजिक और माली विकास माई मील रो पत्थर साबित वेला। जैसलमेर माए पर्यटन ने बढ़ावो दे बारी तैयारी शुरू हो चुकी है। सहरी हलकारा सूली डूंगर सनसेट पॉइंट ने नगर परिषद मॉल रोड री तर्ज माए बनावारी खास योजना शुरू की है। नगर परिषद आयुक्त लजपत लाल सिंह सोढ़ा बतायो कि इन प्रोजेक्ट सु नगर परिषद ने हर बरस करीब 38,50,000 रुपया रो राजस्व मिलेला।
2: सुली डूंगर पर अभी जो विकास कार्य जारी है वो उसका पूरा सनसेट पॉइंट का रिनोवेशन का है। चूंकि तैयार हो जाएगा उसके बाद उसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस करवाना होगा, तो उसके लिए हमने एक नया पीपीपी मॉडल तैयार किया जिसमें हम 7 साल के लाइसेंस पे एक

0: कोई जगह देंगे ताकि वो इसमें जो 10 शॉप बनी हुई है वो और पूरा पार्क है जो सनसेट पॉइंट है उसको मेंटेन करेगा। और नगर परिषद को इसमें आय भी होगी क्योंकि हमने इसकी बिड प्राइस 20 लाख रखी थी। जो इन्वेस्टर आया है उसने बिडर ने रेट डाली 38 लाख के आसपास। तो ऑपरेशन मेंटेनेंस करेंगे वो। एक शहर में एक पर्यटक स्थल के रूप में जब पहले सूर्यनगर जाना जाता था, काफी लोग जाते थे और काफी सालों से ये बिल्कुल ही वैसा खंडर सा पड़ा था, तो इसको एक रेनोवेट करने से आने वाले टाइम में पर्यटकों के लिए एक विकल्प के तौर पे सूर्यनगर को हम डेवलप।
1: प्रदेश में मौसम रो मिजाज लगातार बदल रही है। एक और कई जिला में आंधी चालबा और मेह बरस पसु लोगों ने गर्मी और उमस राहत मिली तो वठी ने कई हल्का में तेज गर्मी आप रोक कहर बरसा रही है। प्रदेश का श्रीगंगानगर बालूतरा जैसलमेर पाली माए तेज धूप और गर्म हवा चालबा सो आम जीवन बेहाल है। वठी ने घड़सामाना माए तेज बरसात रह सागे ओला पड़ बारा समाचार है। चिकित्सा महकमो तेज गर्मी रे चालता आमजनू ORS नींबू पानी छाछ सेवन करवा और घरासों से ढाकर 12 आबारी सलाह दी है। मौसम महकमो आज 12 जिला में आंधी और बारिश रो येलो अलर्ट जारी करियो है। इनरे इतर काल 7 जिला में बरसबा और 2 जिला में हीट वेव री चेतावनी दी गई है। पाली माए 16वीं राज्य स्तरीय जूनियर पुरुष हॉकी होड़ आज पूरी हुई। फाइनल मुकाबलो अलवर और जयपुर के बीच हुयो। इनमाए जयपुर की टीम 3-1 सो जीत दर्ज करी। समापन जलसा माए मुख्य अतिथि राजस्थान हॉकी संग्रह अध्यक्ष अरुण कुमार सारस्वत विजेता और उप विजेता टीमा समेत चोखो प्रदर्शन करबा वाला खिलाड़िया ने इनाम दीना। उपभोक्ता मामलात महकमारा ई जागृति मंच ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिलियो है। वो सम्मान तकनीक रे जरिए सरकारी प्रक्रिया में सुधार और डिजिटल काम खातर दियो गयो है। उपभोक्ता मामला खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय कहो के ई जागृति उपभोक्ता शिकायतारा तुरंत निपटारा माए महत्व भूमिका निभा रियो है। इन बरस 1 जनवरी ने शुरू कराया गया EI आधारित मंच माथे हाल ताई 2,29,072 उपभोक्ता मामला रो पंजीकरण करियो गयो जबकि 2,07,072 मामला रो निपटारो करियो गयो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावण वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 28 जून ने विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 135वीं कड़ी वेला। ए सारू आप ही मुफ्त नंबर 1-800-11-7800 माथे 26 जून तई राय दे सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप माए और MyGOV ओपन फोरम रे जरिए भी आपरा विचार भेजा जा सके है। और अब आखिर माए खास खबरां एकर फेरू। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में पूरी हुई। दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी मजबूत हुई। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा स्वस्थ भविष्य खातर सुरक्षित और स्वच्छ भोजन रिकानी सरकार री प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड री 12वीं कक्षा रा मूल्यांकन खातर ऑनलाइन आवेदन जमा कराबारी आज आखिरी तारीख। पोर्टल आधी रात तक खुलेला। और मौसम महकमो प्रदेश रा 12 जिला माए आंधी और मेह बरस बारो येलो अलर्ट जारी करियो। इन सागे ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भी महा को आगलो समाचार बुलेटिन कल सुमार है 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 266.6 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं शाम के 7 बज चुके हैं। लीजिए अब सुनते हैं हमारे किसान भाइयों का अपना कार्यक्रम खेती और घर।

0: राम राम अनीता भैसा, राम राम।
1: राम राम रेखा भैसा, राम राम।
0: खेती और घर कार्यक्रम होने वाला सगला किसान भाई बहना ने भी अपनो राम राम सा।
1: हाँ सा, देखो भाई कार्यक्रम रो टेम भी और सब अपने किसान भाई बहन जो है, देखो अपने टेम बेते चौपाल रे महीने उपस्थित हो गया है। और देखो भाई आवे भी क्यों नहीं आप आटे रोज रोज नवी नवी

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो देखो अनीता भाई सा यो तो उन्हें मन भावन राजस्थानी गीत और लारे लारे संदेश भी उन्हें ऐसा।
3: हाँ सा।
2: और कार्यक्रम ने आप ही आगे बढ़ावा और हगला किसान भाई बहनों आप ही मौसम की जानकारी भी करावा सा।
3: हाँ सा।
2: तो देखो सा आज राजस्थान में जो मौसम है मुख्य रूप साफ और धूप वालो रेवारो अनुमान है सा। आज रे मौसम की अगर बात करा तो तापमान अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री रेवारी संभावना है। और हवारी गति की बात करा तो दक्षिण पश्चिम दिशाओं लगभग 8-9 मील प्रति घंटा रे हिसाबू हवाएं चलेगा। और बारिश की संभावना की बात करा तो आज दिन और रात दो में बारिश हवारी संभावना नहीं है सा।
3: बिल्कुल। तो देखो भाई या तो रेखा भाई साहब मौसम री बात भी और खेती बाड़ी री अगर बात करा और किसान भाई लारे सामान्य जानकारी अगर साझा करा तो देखो अणी मौसम महीने बेल वाली जतरी भी फसला है वणा महीने किसान भाया ने नमी बनाए राखनी चावे। नहीं तो कहिए कि मिट्टी महीने अगर कम नमी वेगा तो इजी पराकण पे असर वही सके। जणू कहिए कि फसल उत्पादन में कमी भी आई सके। फलदार जी रूकड़ा है वणारे बगीचा लगावा वाते उचित वणा ने दूरी बनाई ने राखनी है। अणियों कहिए कि जी भी अपने बगीचा लगावा वास्ते जो वणा गड्ढा खोद रख्या है वणारे वास्ते और जो वणारी ऊंचाई रो भी वणा ने ध्यान राखनो है सा।
2: बिल्कुल सा। देखो सा अगर गर्मिया में गहरी जुतारी भी अपनी बात करा तो मक्का दलहनी तिलहनी और सब्जी वर्गीय जो फसल वेवे वणा में पुट्टी रेनी फार्म जड़ गांठ सूत्र कर्मी प्रबंधन रे वास्ते अपनी खेत में 15-20 दिना रे अंतराल पे गर्मिया में गहरी जुताई अपने करानी है। फलदार पौधा अमरूद अनार नींबू वर्गीय फल रे साथ में अगर बगीचो लगाव वास्ते अपने उचित दूरी 6x6 मीटर पर अपने गड्ढा खोदने खुलो छोड़ देना है सर।
3: बिल्कुल सही कह रहा। और रींगणारी अगर बात करा तो देखो रींगणारी फसल में इन्हें प्रहो प्ररो और देखो फल छेदक जी भी कीट है वनारे बचाव रे बातें जी भी ग्रसित फल है वनारा प्ररो ने भिरा करने नष्ट कर देना चाहे। यदि कीड़ारी संख्या ज़्यादा भी जावे तो देखो वनाने जो है स्पिनोसेट कीटनाशी 48 cc 1 मिलीलीटर 4 लीटर पानी की दरू जो है छिड़काव कर देना चाहे यदि आकाश साफ वे।

0: बिल्कुल सर, देखो अगर बात करें आप ही मूंगरी तो तापमान में बढ़ोतरी ने देखता था हगला किसान भाई बहना ने कहवा कि भी ग्रीष्मकालीन जो मूंग वेवे बनी में आपने सिंचाई कर देवे सा।
1: बिल्कुल, बेल वाली साग भाजा री बात करा तो देखो कुष्माण कुलरी जी भी साग भाजा है वणा में ने लाल रंग कीट अंकुरित में नई पत्तियां ने खाई ने और देखो वणा पे वणा ने नुकसान पहुंचावे अणारी रोकथाम रे वाते किसान भाया ने लई पर मेथरी 25 EC देख 0.5 जो है ML प्रति लीटर ही दरु जो है बनाने छिड़काव करना चाहे आकाश साफ वाली दशा में।
0: देखो सर बात करा आप ही पौध संरक्षण दी तो जटे मरचा भिंडी तरबूज खरबूज में पित्त शिरा विषाणु रोग रो प्रकोप दिखे वटे अपने सगला किसान भाई बहन जो है इमिडा क्लोप्रीट 8 मिलीलीटर और 15 लीटर पानी में गोल वणी ने 8 दिन रे अंतराल पे 2 बार अपने छिड़काव करनो है और अन्य पत्ती दबा रोग रे नियंत्रण वास्ते भी अपने इमिडा क्लोप्राइड रे छिड़काव ने 5 दिन रे बाद में 22 टिन रो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में गोल वणे छिड़काव करना है सर।
1: बिल्कुल, और देखो भिंडिया री अगर बात करा तो तेज अगर वायरो चल रहे हो तो देखो किसान भाई ने भिंडी और दूसरी जी भी साग भाजा है बनानी तोड़ाई कर लेनी चाहे ताकि कहीं एक ही संभावित जो भी नुकसान भी रहे वणियों बच सके। गायारी अगर बात करा तो देखो पशुओं ने स्वच्छ और ताजो पानी भरपूर मात्रा में देना चाहे जनी पशुओं ने कही है कि जी बनारे शारीरिक प्रक्रिया है वह सुचारू रूप काम करती रखे रेवे और उनालो नरोई है तो देखो बनारे जो वाड़ो है वटे भी साफ सफाई रो ध्यान रखना है चारा दाना पानी रो ध्यान रखना है हवा पानी भी बनाने पूरो भरपूर आवे रोशनदान खुला रखना है स्वच्छता रो भी विशेष रूप ध्यान रखना है सा।
0: बिल्कुल अनीता वैसा या तो अभी की दी मौसम रीन पशु री जानकारी और अभी अपने कार्यक्रम में और आगे बढ़ावा और एक राजस्थानी गीत और होना सा।
1: हाँ सा।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: सर 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: तो देखो भाई, रेखा भाई से आपा सुंदर सो मन भावन राजस्थानी गीत हुनियो और लाल लारे देखो जानकारियों भरे तक का संदेशा भी हुनिया। और कार्यक्रम में देखो अपनी भारत सरकार जो है नरी सारी योजना भी चलाई रखी है। वणा योजना रो अपना सब जो है हुनवा वाला श्रोता फायदो लेवे, तो देखो भाई वणा ने फायदो भी मिले दो पैसा रो। तो आज आप कार्यक्रम में इन्हें बात करांगा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की। और अणी कौशल योजना की अगर बात करें तो यह देखो भारत सरकार एक ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की दी गई एक महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है। अंडे उद्देश्य की अगर बात करा तो देखो ग्रामीण क्षेत्र रे जितना भी गरीब परिवार है वणारे युवाओं ने हुनरमंद बनाईने वणाने रोजगार रा अवसर देना, ताकि कहिए कि वणारी जो गरीबी है वह दूर रही सके। सा
8: बिल्कुल सा। और अणी योजना रे अगर मुख्य रूप री बात करा तो 15 से 35 वर्ष तक रा जो ग्रामीण युवा है वणा पे ध्यान केंद्रित करना है। अणी योजना रे और भी अभी मुख्य वाता बतावा कि भाई जो योजना री विशेषता है वणी में निःशुल्क प्रशिक्षण दियो जावे, ताकि अणी योजना रे तहत जो भी युवा है वे पूरी तरफ मुफ्त में कौशल विकास रो प्रशिक्षण ले सके सा।
7: बिल्कुल। और रेवा और खावारी व्यवस्था जो है ट्रेनिंग रे दौरान जितना भी युवा है वनारे रेवारी खावारी और भणईरी जो सामग्री है वनडो पूरो खर्च सरकार और ट्रेनिंग देवा वाली जी संस्था है वे उठावे। यदि ट्रेनिंग सेंटर रे घर रे भणे वेवे तो आवा जावा रो जो भत्तो यातायात भणे नहीं भी वेवे तो देखो

0: वो जो आवा जावा रो खर्चो है, यातायात रो खर्चो है, वो भी दीधो जावे सा।
1: बिल्कुल सा। और अन्य अंदर जो गारंटीड रोजगार वेवे जिन्हें आप प्लेसमेंट भी कहवा, तो योजना में सब बड़ो नियम यो है कि ट्रेनिंग पूरी करवारे बाद में कम कम 70% तक युवा ने अनिवार्य रूप नौकरी या रोजगार दिलायो जावे।
0: बिल्कुल। और यदि देखो हमारी ट्रेनिंग अगर पूरी हुई जावे तो मना ने एक प्रमाण पत्र भी दीदो जावे। ट्रेनिंग पूरी हुई खेड़े भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट दीदो जावे जो आगे देश विदेश में नौकरी पावा में मदद करे। और देखो भाई अंडे लाभ रही अगर बात करा और आवेदक री उम्र जो है वह 15 से 35 वर्ष वच में वेणी जावे। जी भी बेना है बेना दिव्यांग और विशेष रूप जी कमजोर जनजाति समूह जी भी मनक है वनारे वास्ते उम्र सीमा महीने छूट है और 45 वर्ष तक री आयु तक रा जो है अणी में लाभ ले सके सा।
1: देखो सा आवेदक ग्रामीण क्षेत्र रो निवासी वेणो चावे और वनडे पास में बीपीएल यानी गरीबी रेखा रे नीचे रो जो कार्ड वेवे वो वेणो चावे, अंत्योदय अन्न योजना रो कार्ड वेणो चावे, या पछे परिवार रो कोई भी सदस्य मनरेगा में कम कम 15 दिन काम कीधो थको वेणो चावे सा।
0: बिल्कुल। और कणी तरीका रा क्षेत्र में मिले ट्रेनिंग तो या योजना रे अणी योजना रे तहत बाजारी मांग रे अनुसार नरई सारा कोर्स बनाने कराया जावे। कृषि और संबंधित क्षेत्र में ने जैसे ट्रैक्टर और कृषि रे उपकरण री मरम्मत करनो, डेयरी और टेक्नोलॉजी में कराया जावे, फूड प्रोसेसिंग महीने कराई जावे, तकनीकी और डिजिटल महीने, कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री, मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रीशियन, सोलर पैनल और इंस्टॉलेशन ई अतरा जई काम है ई सब कराए जावे। अंडे लारे उद्योगरी अगर बात करा तो देखो सिलाई है, गारमेंट्स है, हॉस्पिटलिटी है, होटल मैनेजमेंट रो काम है, रिटेल मॉल राजी सेल्समैन है वनारे वास्ते ट्रेनिंग दी दी जावे और सुरक्षा गार्ड री भी ट्रेनिंग दी दी जावे सा।
1: देखो सा अन्न में सब लक्ष्य तो यही है कि आत्मनिर्भरता ने बढ़ानो है। जो अंडे साथ में जो स्किल है अगर वनारी भी बात करा तो हर कोर्स साथ में जो युवा है वना ने कंप्यूटर रो बुनियादी ज्ञान, अंग्रेजी बोलनो और जीवन जीने री कला भी सिखाई जावे। समाज रे हर वर्ग ने साथ लेने चालनो अणि योजना में यह सुनिश्चित कियो गयो कि समाज में सब जो कमजोर तबका है अंडो फायदो अणा सब ने मिले। और अगर अभी बात करा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और जतरा भी परिवार है वना में स्थायी आय रो साधन बन रो है। यदि घर रो एक युवा सदस्य हुनर सीखने हर महीने बंदी बंदाई पगार जिन्हें आपी सैलरी भी केवा कमावा लागे तो पूरी परिवार आर्थिक स्थिति भी उधर जावे सा।
0: बिल्कुल। और देखो भाई कृषि पे जो है निर्भरता भी कम बेई जावे। योजना रो लाभ लेवा वास्ते युवा अपने नज़दीकी ग्राम पंचायत भवन, ब्लॉक विकास खंड कार्यालय में जाइने संपर्क कर सके और सरकार रे अधिकारी जी DDU-GKY पोर्टल पे जाइने ऑनलाइन अपनो रजिस्ट्रेशन करी सके। अंडे अलावा ग्रामीण विकास आजीविका मिशन जिन्हें SRLM रे तहत काम करवा वाला जी स्वयं सहायता समूह है बनारे माध्यमों भी अंडी जानकारी और मदद ले सके सा।
1: बिल्कुल सा। तो देखो अनीता वैसा या तो आप ही जानकारी दी थी कि भाई जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है वणी में अपना जो ग्रामीण युवा है वे किस तरह जुड़ सके सा। और देखो अभी कार्यक्रम में और आगे बढ़ावा और एक राजस्थान गीत और होना मसा।
0: हाँ सा।

0: subscribe and press correct bell icon for the latest updates of Hari.
1: तो देखो अनीता भैया ये तो होने और राजस्थानी गीत और अभी आपने कार्यक्रम ने और आगे बढ़ावा और बात करा आप शीत भंडारण री उपयोगिता री।
2: हाँ सा शीत भंडारण री उपयोगिता री अगर बात करा तो देखो भाई अबार जो आधुनिक कृषि और खाद्य सुरक्षा री आधुनिक जो कृषि है वह अपने खाद्य सुरक्षा री रीट भी कही सका। और देखो अगर अंडे बारे में बतावा तो अणी महीने यो एक असो रेफ्रिजरेट गोदाम वेवे जटे तापमान और नमी ने नियंत्रित करने जल्दी खराब वेवा वाली जी चीज़ा है जिस तरह फल है साग भाजियाँ है दूध है और जी दवाया है वना ने लंबा टाइम तक ताज़ा और सुरक्षित रखियो जा सके। अपनी जा कृषि है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मैंने देखो शीत भंडारण की उपयोगिता बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि फसल की बर्बादी ओणी महीने भारी कमी आवे। भारत में इन्हें हर साल देखो कोल्ड स्टोरेज की कमी के कारण जी भी साग भाजियाँ हैं नरी सारा टनों मन फल है साग भाजियाँ हैं जिससे टमाटर आलू कांदा ये मौसमी फल साग भाजियाँ खेतू जो है बाजार पहुँचाऊँ पहले ही हट जाए।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय।

0: रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
1: तो देखो सा यो तो हुनियो मनभावन राजस्थानी गीत और लाल लारे संदेश भी हुनिया सा।
2: बिल्कुल सा।
1: और देखो सा अबे अपने कार्यक्रम ने और आगे बढ़ावा और बात करा। देखो आज अभी खूब सारा खाद्यान्न भी बात कर रहे हैं हाथरी देर और आज है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस भी।
2: बिल्कुल।
1: तो अणि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जिन्हें अभी हर साल 7 जून रे दिन पूरी दुनिया में मनावा सा। और अणि दिन ने मनावारो मुख्य उद्देश्य यो ही है कि जतरा भी व्यक्ति है वणा ने दूषित भोजन और पानी व्यवहार वाला जतरा भी खतरा है वणे प्रति जागरूक करनो है। यो सुनिश्चित भी करनो है कि हर व्यक्ति ने सुरक्षित स्वच्छ और पौष्टिक भोजन मिले।
2: बिल्कुल सा। देखो भाई संयुक्त राष्ट्र जी दो प्रमुख संस्था है जनी मैंने विश्व स्वास्थ्य संगठन और खाद्य एवं कृषि संगठन मिलने वैश्विक स्तर पर अणिदन रू नेतृत्व करे अणि दिवस जुड़ी तक की मुख्य और महत्वपूर्ण अगर जी बात है वणी मैंने देखो सब पहली अगर बात है तो बीमारियों बचाव रही है। WHO रा जितना भी आंकड़ा है बनारे अनुसार हर साल दुनिया में लगभग 10 महीनों देखो एक व्यक्ति दूषित या पचे बैक्टेरिया युक्त भोजन खावे वणी बीमार पड़ सके और असुरक्षित भोजन के कारण सैकड़ों तरीका रीवणा ने बीमारियां वे जावे सा।
1: बिल्कुल सा। बर्बादी और आर्थिक नुकसान ने रोकनो भी अंड उद्देश्य है। दूषित भोजन न केवल अपने स्वास्थ्य ने नुकसान पहुंचावे बल्कि बड़ा पैमाना पे अगर भोजन री बर्बादी रो कारण भी बनतो जाई रो है जणियो की अपनी जो अर्थव्यवस्था है वणी पे भी बुरो प्रभाव पड़ रही है सा।
2: बिल्कुल सा। आनी अंडे आनी अंडो एक उद्देश्य यो भी है कि जागरूकता ने बढ़ानो खेता में उभी तक की फसला है वणा ने लेने भंडारण परिवहन प्रसंस्करण और देखो रसोई में पाकवा तक हर स्तर पर स्वच्छता और सुरक्षा रा जतरा भी नियम है वणारो पालन भी सके अंडे वास्ते सरकार किसान और आम जनता ने जागरूक की दो जावे। और देखो अंडे अगर मूल मंत्र की भी बात करा तो अणि दिवस रो एक स्थायी और मुख्य संदेश है खाद्य सुरक्षा हर किसी का व्यवसाय है।
1: बिल्कुल सा। और अंडो मतलब यो है कि भोजन ने सुरक्षित रखवारी जो जिम्मेदारी है वह केवल सरकार या कणी एक संस्थारी नहीं है जो उत्पादक है बनारी प्रसंस्करण उद्योग वालारी व्यापारी दुकानदार और अंत में भोजन पकावा वाला और खावा वाला उपभोक्ता जनी में आप सब भी शामिल हाँ वणी में अपने सबरी बराबर भूमिका है सा।
2: बिल्कुल। देखो भोजन ने सुरक्षित और सेहतमंद वणाए राखवारे वास्ते नरी सारी जी वाता है वणा पे भी जोर देनो चाहे सबू पेरा देखो स्वच्छता राखनी है खाणो वणाती टेम परोसती टेम और खावाऊँ पेला हाथा ने जो है और बर्तना ने हऊ तरीका ढोमना चावे कच्चो और पक्को जो भोजन है विने अलग रखना चावे कच्चा जिस तरह मांस है पोल्ट्री या सब्जियारा जी पकेता का भोजन है वना ने अलग रखना चावे ताकि कही है कि जी भी कीटाणु है वे आपस में फैल नहीं सके सा।
1: बिल्कुल सा। और अच्छी तरह अपना जो भी भोजन पकाई रहा विने अच्छी तरह पकानो चावे भोजन ने विशेषकर जो कि मांस अंडा ने सही तापमान और पूरी तरह रखना चाहे ताकि वो वणवारे बाद में भी जो हानिकारक बैक्टीरिया वेवे भी वणी में नष्ट हुई जावे सा।
2: बिल्कुल। और भोजन ने सुरक्षित तापमान पे रखनो पकेता का भोजन ने लंबा टाइम तक सामान्य तापमान पे इस वने छोड़ देनो चाहे यदि रखनो है तो इन्हें फ्रिज में इन्हें कम तापमान पे सुरक्षित भी रख सका सा।
1: बिल्कुल अनिता वैसा अगर आप ये बात करें हाँ विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस री तो देखो सा यह सब जिम्मेदारी अपने स्वयं री भी है कि जत्रो भी भोजन आप ही घर परिवार में बनाई रहा तो बहुत अधिक मात्रा में नहीं बनानो है जतरा अपना परिवार सदस्य है वंडे अनुसार और वंडी जो आप ही कहवा कि भोजन और भूख रो बहुत संबंध है तो वणी भोजन और भूख ने देखता तक आपने भोजन बनानो है ताकि भोजन री बर्बादी नहीं वेवे। और यदि यो आप ही स्वयं संकल्प लांगा तो आप ही कह सका कि जो आ वाली जो पीढ़ी है वह भी भोजन री बर्बादी ने रोकवारो जो महत्व है वो समझेगा सा।
2: बिल्कुल सही कह रहा हो। देखो भाई अत्रो इस थाली में इन्हें भोजन लेनो है जत्रो वो व्यर्थ नहीं वे सके है अत्रो इस खानो है कहीं जरूरतमंद भी अगर आप मदद कर सका तो आपने मदद करनी चाहिए सा। आप तो यही संकल्प लेवा कि भाई देखो उनो उनो ही बनावनो है, फालतू में आपने नरो सारो भोजन बनाई ने पछे मने दो दो तीन तीन तक तक खाई ने बीमार पड़नो असो काम नहीं करनो है
1: सा। बिल्कुल सा, बहुत ताजा भोजन बनाई ने अगर ताजा काम में लांगा तो आप ही कह सका कि आप ही शारीरिक रूप भी जो आपने ऊर्जा मिलेगा वह अच्छी।

0: मिलेगा और शारीरिक रूप भी आप ही ऊर्जावान बनिया तक रहेंगा।
1: बिल्कुल।
0: तो भोजन ने हमेशा अपने ताजा बनानो है, ताजा खानो है और अधिक मात्रा में नहीं बनानो है, यो भी आपने ध्यान रखनो ऐसा। तो अनीता भाई साहब अपने कार्यक्रम ने और आगे बढ़ावा और एक राजस्थानी गीत और सबने सुनाई था सा।
1: हाँ सा।

किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम खेती और घर। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 8 बज चुके हैं। लीजिए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में।

आगाज़ हमने किया फिल्म थी सांवरिया के इस गीत के साथ, और अब कार्यक्रम का अगला गीत आपके रेडियो सेट पर पहुंचाएं। उससे पहले आपको बताते हैं कि सांवरिया फिल्म के गीत को संगीत से सजाया था मोंटी शर्मा ने। उदित नारायण की आवाज़ में साया फिल्म का ये गीत अब हम आपके रेडियो सेट पर पहुंचा रहे हैं। इस गीत को संगीत से सजाया है अनु मलिक ने।

0: अलका याग्निक और कुमार शानू की युगल स्वर में साजन चले ससुराल फिल्म का ये गीत आपने सुना। श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का। प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से किया जा रहा है और अब कार्यक्रम की अगली पेशकश एस जानकी और मोहम्मद अजीज के युगल स्वर में आखिरी रास्ता फिल्म से आपके रेडियो सेट पर हम पहुंचा रहे हैं। एंजॉय कीजिए इस सेगमेंट के इस नगमे को।
1: Story, but everybody will sing with me.
2: Okay.
1: Ready? Come on. One, two, three, four.

कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में खूबसूरत फिल्म का ये गीत आपने अभी सुना। श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं। फिल्म संगीत का प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से किया जा रहा है और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगला गीत अलका याग्निक और अभिजीत के युगल स्वर में फिल्म खिलाड़ी से आपके रेडियो सेट पर पहुंचाते हैं।

और इसी के साथ फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम को अब हम यही विराम देते हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 8:45 होने को है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और समाचार अंग्रेजी में प्रसारित होंगे रात्रि 9:00 हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार

0: दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
1: सुश्री पॉल ने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने इन शहरों के विकास के लिए समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन, व्यापार, चाय उद्योग और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। सुश्री पॉल ने कहा कि राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे और स्वच्छता में सुधार के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। 1 जुलाई से पार्किंग की अनुमति केवल निर्धारित क्षेत्रों में ही होगी और अवैध पार्किंग पर जुर्माना लगेगा। पदभार करने के बाद सुश्री पॉल की ये उत्तर बंगाल क्षेत्र की पहली आधिकारिक यात्रा है। बैठक में नगरपालिका मामलों, महिला बाल विकास, सामाजिक कल्याण, स्वच्छता, यातायात नियमन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। कुर्सियोंग से अशोक चौरसिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार की वर्षा की स्थिति पर नजर है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नागपुर में उन्होंने कहा कि इस वर्ष सामान्य वर्षा का अनुमान है, लेकिन एलनीनो के प्रभाव के कारण मराठवाड़ा, पश्चिम विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में कम वर्षा हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय समय पर आवश्यक सलाह दी जा रही है और फसल नुकसान को कम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने आज योगांध्र 2026 अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। 14 दिवसीय इस अभियान का

0: समापन 21 जून को अमरावती में भव्य आयोजन के साथ होगा। इस अभियान के दौरान विभिन्न योग गतिविधियों के माध्यम से 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए गांव, मंडल और जिला योग सत्र तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की और बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। इस बीच सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मानसून आज पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी से कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मानसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मानसून पहुंच गया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने कल तटीय और आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माही, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिन बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने दक्षिण कोंकण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग के कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश शुरू हो गई है। मंगलवार तक रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग जिलों के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में आज शाम बारिश हुई। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
3: न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के 564 रन के जवाब में मेहमान टीम ने दिन की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे। रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर रहे मानव सुथार ने 3 विकेट जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। अफगानिस्तान अब भी भारत से 451 रन पीछे है। वहीं कुश्ती में मंगोलिया के उलान बटोर ओपन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के आसिल एथकिन को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के येदिगे कासिम बेग को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उधर न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में आज भारतीय धावक और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 20.47 सेकंड का समय निकालते हुए रजत पदक अपने नाम किया। ये समय उनके करियर का 4था सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
0: उधर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना इटली के फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक ज्वेरेव और कोबोली ने एक एक सेट जीत लिया है। इससे पहले कल रूस की मीरा एंड्रेवा ने माया च्वालिंस्का को हरा

0: कर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाव अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए नंबर है 0112331081। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। #AskAIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलानबटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम VC प्रमोद विद द न्यूज एट 9।
2: The headlines. India and Indonesia held joint commission meeting in New Delhi. Discuss comprehensive strategic partnership across key sectors including defense, trade, energy and connectivity. West Bengal government to develop Darjeeling, Mirik, Kursiong, Kalimpong and Siliguri as Himalayan cities to boost tourism and regional economy. Southwest monsoon further advances into west central and entire northeast Bay of Bengal. Indian wrestlers win 2 gold and 2 bronze in men's freestyle category at Ulaanbaatar Open in Mongolia. And in cricket, Afghanistan trails against India by 451 runs in first innings at stumps on second day of one-off test in New Chandigarh. The 8th India-Indonesia Joint Commission meeting was held in New Delhi today. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar and his Indonesian counterpart Sugiono co-chaired the meeting. During the meeting, the two leaders reviewed the entire spectrum of bilateral relations under their comprehensive strategic partnership. More from our correspondent.
3: During the meeting, India and Indonesia discussed avenues for further strengthening cooperation in various fields including political, defense and security, maritime, trade and investment, pharma and healthcare, digital, energy, connectivity, space, education, consular and cultural domains and people-to-people exchanges. Both leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest. They also reaffirmed their commitment to closer cooperation and coordination in regional and multilateral fora. Dr. Jayashankar and Mr. Sugiono welcomed the upward and growing trajectory of bilateral relations. In his opening remarks, Dr. Jayashankar said that the joint commission between both nations is convening after a gap of 4 years and it is essential to acknowledge that significant advancements in bilateral relations have been made during this time. He said India-Indonesia celebrated the 75 years of establishment of bilateral ties last year. Saqlain Akhtar for Akashwani News, Delhi.
2: West Bengal Women and Child Development and Social Welfare.

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: मेहंदी हसन की आवाज में आपने अभी सुनी ये दिलकश गजल।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: आप भी अपने उत्पाद का विज्ञापन आकाशवाणी पर कीजिए और अपने व्यापार को आकाश की ऊंचाई तक पहुंचाइए। अधिक जानकारी के लिए नजदीक के आकाशवाणी केंद्र से संपर्क करें या हमें मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।
0: और इस गजल के साथ ही श्रोताओं, सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं। लीजिए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और आपके रेडियो सेट पर पहुंचाते हैं फिल्मी नगमे, कार्यक्रम फिल्म संगीत के माध्यम से। पहला गीत कटी पतंग फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में हम आपके रेडियो सेट पर पहुंच जा रहे हैं। एंजॉय कीजिए इस सेगमेंट के इस नगमे को।

0: 14वां अपहरण ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से किया जा रहा है और तीन गाने बैक टू बैक लगातार हमने आपके रेडियो सेट पर पहुंचाया। पहला गीत था जोशीला फिल्म से दिलकश आवाज थी किशोर कुमार की। उसके बाद भावना फिल्म का गीत आपके रेडियो सेट पर हमने पहुंचाया, दिलकश आवाज थी जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की। और आखिरी में जो गीत आपके रेडियो सेट पर पहुंचा वो था फिल्म फर्ज से दिलकश आवाज थी सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक और नगमा आपके रेडियो सेट तक पहुंचाते हैं चरस फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वर में। एंजॉय कीजिए फिल्म संगीत के सेगमेंट के इस नगमे को।
1: गुड नाइट।
2: गुड नाइट।
1: गुड नाइट।
2: अच्छा गुड नाइट।

0: और अब कार्यक्रम फिल्म संगीत की आखिरी पेशकश आपके रेडियो सेट पर हम पहुंचा रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म आन मिलो सजना से, और इस गीत के साथ ही दीजिए इजाजत आपकी रेडियो दोस्त स्वाति को इस वादे के साथ कि फिर से बहुत जल्द मुलाकात होगी, और एंजॉय कीजिए इस सेगमेंट का ये आखिरी नगमा।
1: अच्छा तो हम चलते हैं।

0: नर्सों
1: कहाँ।
2: और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये सफर बस यहीं तक। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 10 बज चुके हैं। आइए अब आपको लिए चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे रविवार ये संगीत सभा।
3: संगीत सभा में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है विद्वान श्री एम एस एन मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन।
4: दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग लिसनर्स, वेलकम टू रविवासरिया अखिल भारतीय संगीत सभा। टुनाइट वी प्रेजेंट अ वायलिन रिसाइटल इन कर्नाटक स्टाइल बाय विद्वान श्री एम एस एन मूर्ति।
3: श्री एम वी सुब्बारायडू और श्रीमती एम जलजाक्षी के पुत्र श्री एम एस एन मूर्ति संगीत के परिवेश में ही पले बढ़े हैं। आपकी माता श्रीमती एम जलजाक्षी स्वयं एक संगीत कलाकार रही हैं। आपने संगीत की शिक्षा संगीत साहित्य कला निधि गुरु श्री एनसीएच कृष्णमाचार्यलु के पास प्राप्त की। बाल कलाकार के रूप में ही आपने अनेक मंचों पर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। विद्वान श्री एम एस एन मूर्ति ने कई प्रतिष्ठित संगीतज्ञों के साथ विभिन्न मंचों पर वायलिन संगत किया। इतना ही नहीं, आपके वायलिन एकल प्रदर्शन के लिए आपको समालोचक प्रशंसा भी प्राप्त है। आपने राष्ट्रीय एकता संगीत कार्यक्रमों के तहत हिंदुस्तानी संगीत कलाकारों के साथ जुगलबंदी कार्यक्रम में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। कई प्रतिष्ठात्मक संस्थानों ने आपकी कला को निदर्शनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन माना है। आप भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के पैनलबद्ध कलाकार भी हैं। आपने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आकाशवाणी के स्टाफ कलाकार रह चुके श्री एम एस एन मूर्ति को वायोलिन में टॉप ग्रेड, कर्नाटक गायन और वायोला वादन में ए ग्रेड प्राप्त है। आपको कई प्रतिष्ठित मंचों द्वारा कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। आज के कार्यक्रम में श्री एम एस एन मूर्ति की संगत कर रहे हैं मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकट रमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री एम हरिबाबू और सहायक वायलिन पर श्री साकेत पंतुला।
4: श्री एम एस एन मूर्ति's exposure to music began early. His mother

0: एमएसएन मूर्ति की अगली प्रस्तुति है अमृत वर्षिणी राग में मुत्तुस्वामी दीक्षितार की रचना आनंद अमृत आकर्षिणी से जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री एमएसएन मूर्ति नाउ प्रेजेंट्स अ कृति ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितार इन अमृत वर्षिणी रागम आदि तालम।

रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं विद्वान श्री एमएसएन मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन। आपकी संगत कर रहे हैं मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री एम हरिबाबू और सहकार वायलिन पर श्री साकेत पंतुला। कार्यक्रम को जारी रखते हुए श्री एमएसएन मूर्ति की अगली प्रस्तुति है हर हर प्रिय राग में संत त्यागराज की रचना चक्कनि राज मार्गमु, जो कि आदि ताल में निबद्ध है। इन टुनाइट रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा यू हैव बीन लिसनिंग टू अ वायलिन रिसाइटल इन कर्नाटिक स्टाइल बाय विद्वान श्री एमएसएन मूर्ति। ही इज अकंपनीड

यह था तन्यावर्तनम जिसे मृदंगम पर प्रस्तुत किया विद्वान डॉक्टर वंकायला वेंकट रमण मूर्ति ने और घटम पर विद्वान श्री एम हरि बाबू ने। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति है खमास राग में धर्मपुरी सुब्बा रायर द्वारा रचित जावली मरुबारी से जो कि आदि ताल में निबद्ध है। That was Tanyavartanam on the Mridangam by Vidwan Dr. Vankaila Venkata Ramanamurthy and on the Ghatam by Vidwan Sri M. Haribabu. Sri M.S.N. Murthy concludes this evening's concert with Marubari, a javali of Dharmapuri Subbarayar. It is in Khamas Ragam Aditalam.

0: अभी तक आप रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम में विद्वान श्री एमएसएन मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन सुन रहे थे। आपकी संगत कर रहे थे मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री एम हरिबाबू, सहकार वायलिन पर श्री साकेत पंतला। इसी के साथ आज का रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विशाखापट्टनम केंद्र में ध्वन्यांकित किया गया।
1: With this we come to the end of tonight's रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा, wherein we presented a violin recital in Carnatic style by Vidwan Sri MSN Murthy. He was accompanied by Vidwan Dr. Vankaila Venkata Ramanamurthy on the Mridangam and on the Ghatam by Vidwan Sri M. Haribabu. Violin support was given by Sri Saket Pantula. This program was recorded earlier at the studios of Akashvani Vishakhapatnam.

नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमिर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे थे। अभी आप सुन रहे थे रविवार ये संगीत सभा हमारे दिल्ली केंद्र से। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर।

0: भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगी ओनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्नि मित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्चस्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। गृहमंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृहमंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से हॉर्मूज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने हॉर्मूज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मंगोलिया में उलान बतोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने आज पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल एथकिन को, वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ही संपन्न होते हैं। कल सवेरे 5:53 पर प्रातःकालीन सभा के प्रसारण लेकर हम एक बार फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।